0: Box with Ketan.
1: Kia ora, namaste, sat sri akal, assalamu alaikum, bulab ka swagat karte hain aaj ke is khoobsurat din ke khoobsurat show jiska naam hai Lunchbox Show. Well, ab tak to yaad ho gaya hoga aapko bhi, yeah, definitely kaafi returning listeners हैं मेरे. हम 104.2 FM के जरिए आप मुझे सुनते हैं, रोवा ऐप के जरिए भी सुन सकते हैं. सुनते होंगे डेफिनेटली, इतना तो एक्सपेक्ट कर ही सकता हूँ मैं, राइट? वेल यस डेफिनेटली, अगर आप बिकॉज ऑब्वियसली AM जब से बंद हुआ है तब से ऑब्वियसली पीपल है डिड स्ट्रगल, बट यस 87.7 के जरिए भी आप हमें सुन सकते हैं इफ यू आर विद इन सिटी. यानी कि अगर आप सिटी के वहाँ पे काम कर रहे हैं एंड यू नो लेट्स से ऊबर हो गया, या फिर अगर आपकी शॉप है सिटी में, या फिर ऑफिस है, एनीथिंग यू आर डूइंग और इवन यू आर ट्रैवलिंग विद इन सिटी, तो आप ट्यून इन कर सकते हैं रेडियो पे 87.7 के उस पे, एंड देन डेफिनेटली फ्रॉम देयर यू कैन लिसन टू अस. रोवा ऐप भी है जहाँ पे आप सुन सकते हैं, डाउनलोड कर लीजिए प्ले स्टोर ऐप स्टोर से और फिर यस मजा आएगा वहां पे, बिकॉज आज के दिन बहुत अच्छी बात करनी है. पर यस एज यू ऑल नो द फीफा अपडेट आखिरी चरण पे आ चुका है, यानी कि एक दिन, बस एक और दिन, एंड यू विल हियर द विजेता ऑफ फीफा वर्ल्ड कप 2026. उसके बारे में बात होगी बाद में, लेकिन अभी के लिए एंजॉय करिए बहुत ही धीरे धीरे से मोहित चौहान की आवाज से और पावनी पंडे की आवाज में भी. जाओ क्या?

0: किस मी बेबी, किस मी बेबी, अदनान सामी की आपने आवाज सुनी है। वेल, ही इज वन ऑफ देम जो माइग्रेट हुआ है इंडिया में और आने के बाद उतनी ही और ज्यादा शोहरत मिली है। बस इन्होंने अपनी स्टोरी बताई थी कि कैसे इनका जो इनकी जो बर्थ कंट्री है वहां पे कैसे ऑलमोस्ट तो क्या मतलब हर जगह से इनका बैन ही हो गया। लाइक ही कैन नॉट गो और ही कैन नॉट ट्रैवल, लाइक इवन इफ ही वांट्स टू अप्लाई फॉर वीजा उन्होंने रिजेक्ट किया है। तो आप सर्च कर सकते हैं, नॉट नाउ ऑफ कोर्स बट एक पॉडकास्ट रिकॉर्ड किया, बहुत अच्छे से दिल से इन्होंने बात की है। वहां से पता पड़ता है कि यार बाहर से बहुत अच्छी दुनिया दिखती है लेकिन इट इज नॉट एज द सेम एज व्हाट यू थिंक। सबकी अपनी कहानी होती है, सबका अपना स्ट्रगल होता है, सबकी अपनी जो सक्सेस आपको दिखती है वो सेम हार्डवर्क से नहीं होती है। वेल, उस हार्डवर्क से याद आए, आप भी यहाँ पे आए हैं हार्डवर्क करने और आए हैं तो डेफिनेटली यू नो कुछ पलों के लिए तो डेफिनेटली आप मिस करेंगे। हो सकता है एक दिन, हो सकता है एक हफ्ता, एक महीना, एक साल या फिर एक डेकेड। जी हाँ, नई बात नहीं है, काफ़ी लोगों ने मैसेजेस भी भेजे हैं। सो आज मैसेज मांगने के बजाय लेट मी रीड आउट समथिंग एंड यू फील लाइक देन आई मीन यू आर मोस्ट वेलकम टू कॉल मी 0800-004-866 पे आप कॉल करके अपनी बातें भी शेयर कर सकते हैं। बट यस, ये यहाँ पे पहले मैं बात बता देता हूँ दैट अक्सर जब हम घर से दूर किसी नए शहर में या फिर नए स्टेट या फिर नए स्टेट बोले तो रीजन या फिर प्रोविंस या फिर यू नो एक नए देश में, तो हम घर की अच्छी बातें जो हैं बड़ा मिस करते हैं। वो माँ के हाथ का स्वादिष्ट खाना या दोस्तों के साथ शाम की गेड़ी लगाना। लेकिन सच बताऊं, कुछ हफ्ते बीतने के बाद हम घर की वो बातें सबसे ज्यादा मिस करते हैं जो हमें कभी कभी सबसे ज्यादा इरिटेट करती है। जी हाँ, मैं बात सही कह रहा हूँ, बिल्कुल एकदम सही, एकदम 100%। वेल ऑब्वियसली यू नो जब आप वहां होते हो तब उस चीज की वैल्यू नहीं होती है, बट वेन यू लीव द हाउस देन यू स्टार्ट फीलिंग लाइक यार क्या सही था यार। याद करो घर का वो जो सुबह 7 बजे का जो नजारा हुआ करता था जब मम्मी बिना पूछे आकर आपके कमरे के आपका जो कमरे का जो पंखा या फिर एसी होता है उसे बंद कर देती थी ताकि आप जल्दी उठ जाओ। डू यू रिमेम्बर? मुझे एकदम याद है, लाइक आई रिमेम्बर ईच एंड एवरीथिंग जो मेरे घर पे हुआ है। वैसे उस वक्त तो लगता था कि क्या यार थोड़ी देर और सोने देते ना, लेकिन आज नया शहर के इस यू नो भीड़ भाड़ के एरिया में और जो आप कमरे में जिस कमरे में रह रहे हैं दोपहर 12 बजे तक भी आप कभी कभी सो जाते हो, पर वो मम्मी का पंखा ऑफ करना या फिर एसी ऑफ करना या फिर आपको डांटना कि भाई जल्दी उठ, वो डेफिनेटली आप मिस करते हो गए। वेल यस, पापा का वो आइकॉनिक डायलॉग कैसे आप भूल सकते हैं, पूरा घर लाइट से चमक रहा हो तो चलेगा पर जैसे ही किसी एक खाली कमरे का बल्ब चालू रह गया तो पीछे से आवाज आती है, इलेक्ट्रिसिटी बिल क्या तेरा बाप भरेगा। मेरे को बाप नहीं आता था, मेरे को आता था तेरे दादाजी भरेंगे। ऐसा वैसे उस वक्त हम मुंह बनाते थे पर आज जब इस नए शहर में खुद अपने पैसे से बिजली का बिल या फिर कुछ और बिल्स हम भरते हैं तो हमें रियलाइज होता है कि यार सही में यार वो जो पापा बोलते थे वो गलत नहीं था। वैसे छोटी छोटी अनोइंग आदतें जो हैं वो रूटीन हो ये होती है या फिर बॉस, यही असल में घर का एक बहुत ही बढ़िया कहानी लेके आपके हर जगह, चाहे आप सेम शहर में हो या बाहर जाते हो, हर जगह वो आपको फॉलो करता है। सो यस, इस बीच में अगर आपको कुछ फील हुआ, इफ यू रिमेंबर एनीथिंग, फील फ्री टू मैसेज मी 5599 पे आप टेक्स्ट करिए और आप अपनी बात याद दिलाइए, बताइए हमें कि व्हाट वाज दैट स्पेशल मोमेंट जो आप आज के टाइम पे बहुत ही ज्यादा मिस करते हैं। 5599 से नंबर जहां पे आप मुझे मैसेज भेजिए। लंच बॉक्स विद केतन, मुझे पसंद है लड़का। हम
1: ड्राइविंग यू होम, The Drive Show with Sandy and Rusby.
2: तो फिर सरिता के चप्पल का साइज क्या था?
3: तो उसने सरिता ने जाके मैडम को बोल दिया कि हाँ जी मेरे को जहाज मारा किसी ने,
4: वो भी आई लव यू वाला।
3: मैडम ने पकड़ लिया भी, हाँ भी किसने बनाया, वो एक लड़की थी वो बोलती जहाज तो दिलजीत बना रहा था बेटा।
4: अच्छा आप दिलजीत? तो
3: आए आए बताओगे यार।
1: Drive Show with Sandy and Rusbe, brought to you by Beds R Us. Sleep easy for less at Beds R Us Manuko and Pukekohe. Sleepyhead Sleep Easy Queen Beds from only $7.99. On sale now. And Jimmy Taylor and team from West City Auto Group, the home of GWM Havel and Omura Jaku.
4: Jen didn't think she needed a DVS system.
5: Oh, I've got insulation in that.
4: But Jen had forgotten about the mould on her walls and curtains.
5: Ah, yeah.
4: So Jen got DVS home ventilation, and its fresh air in, stale air out technology went to work, making her rooms drier, healthier, plus mould and mildew free. Say yes to DVS. Your healthy home isn't complete without it.
6: The heart of a healthy home, DVS.
7: Sona Sansar Papa Toto ke gehno ke saath aap bhi chamak jayenge.
8: Churi, kangan, payal, bali, jhumke aur chokar. ये सोना वही सोना संसार है जहां दिल्ली से लेकर दुबई तक के सभी गोल्ड ज्वेलरी डिजाइन्स मिलते हैं, समझे?
7: सोना संसार पापा ट्विटर, जहां था वहां अभी भी है. शॉप इनसाइड विद आजा डिजाइन स्टूडियो, कॉर्नर ऑफ ग्रेट साउथ रोड एंड ईस्ट तमाकी लाइट्स, पापा ट्विटर.
9: सोना संसार, 138 ग्रेट साउथ रोड, पापा ट्विटर. सोना संसार, यू आर नेवर टू ओल्ड फॉर गोल्ड.
10: G'day Kiwis, Kogan Mobile here. I'll be honest, we're Australian. Sorry about that. But it's about time you got a taste of Aussie-style pricing. Right now, get a yearly prepay plan from just $160. Crikey! I know what you're thinking. And no, I'm not joking. And no, it's not too good to be true. Because it is true. Kogan Mobile. True Aussie value. Terms and conditions apply.
11: The King Living Winter Sale ends soon. Save up to 50% on Australian-designed, award-winning furniture. Come home to the future of furniture. Come home to King. Sale ends soon. Shop online or visit a King Living showroom today.
12: Head into Bunnings today and grab the Surf Professional 9kg laundry powder for just $39. Available in Sun Fresh and Rose Fresh. Don't miss this great value. Stock is limited. Shop online or in-store at your local Bunnings warehouse.

0: The Meat Box delivers restaurant quality meat right to your door. And in July, all purchases go in the draw to win free meat for a year. That's a prize worth over $5,000. T's and C's apply.
1: TheMeatBox.co.nz. Fresh meat delivered fresh to your door.
2: Non-stop Bollywood. Hum. Playing Bollywood's biggest hits.
3: Lunchbox with Ketan.
4: Heera ladka hai. Telescope leke dhoondega na, to bhi isse bade ladka nahi milega tujhe.
3: Hum. Office shoutout.
5: ऑफिस शाउट आउट के लिए आप मुझे मैसेज भेज दीजिए. एक मैसेज आया था लास्ट सेगमेंट जो होमसिक रेमेडीज में गया, लेकिन उन्होंने सिर्फ डॉट भेजा. सो आई थिंक मेरे को लग रहा है शायद उन्होंने लिखना चाहा, लेकिन लिखते लिखते मेरे को लग रहा है सिर्फ एक डॉट में ही बयां कर दी अपनी जुबान, जो शायद मैं नहीं समझ पा रहा. क्या लगता है आपको, किसी इंसान ने मुझे किसी शख्स ने, नॉट इंसान है, इंसान तो एक बहुत भारी वर्ड हो गया, बट यस शख्स की अगर बात करें, तो इन्होंने सिर्फ डॉट भेजा है. ये डॉट ही क्यों भेजा? डू यू थिंक इसके पीछे कुछ काला है? समझ रहे हो दया? अगर आप समझ गए तो मुझे बताइए 5599 पे. बट यस, लेट मी रिमाइंड यू, आज थर्सडे है, कल फ्राइडे है और परसों सैटरडे है.

0: बहुत ही कम सीट बची हुई है और आप अपने आप को उस कैटेगरी में नहीं खड़ा करना चाहते जहां पे कि भाई मेरे हाथ में था, कैसे मैंने मिस कर दिया। सोल्ड आउट बहुत ही जल्दी हो सकता है। नॉन स्टॉप लाफ्टर, हिलेरियस लाइव परफॉर्मेंस, इंटरैक्टिव ऑडियंस मूवमेंट, जिसके लिए आज काफी डिमांड है, और मेमोरीज यू विल चेरिश विथ योर लव्ड वन, यानी कि आप अपने बच्चों के साथ, फैमिली पूरी सब परिवार, अपने पापा मम्मी दादा दादी नाना नानी, अड़ोस पड़ोस, ताई चाऊ चाचाई, सबके साथ आप आ सकते हैं, बच्चों के साथ भी। जी हाँ, तो ये आप आइए और इन्जॉय करिए। बट यस, अभी फटाफट से ये रहे कुछ मैसेजेस। हाय केतन, मैं रोज साउथ ऑकलैंड से सीबीडी कम्यूट करता हूँ, एंड टुडे सदर्न मोटरवे पे ऐसा जाम था कि मुझे लगा मैं ऑकलैंड में नहीं मुंबई के वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पर खड़ा हूँ। मैं अपने मैनेजर को फ़ोन करके बोला, क्या हो रहा बॉस, सॉरी क्या हो रहा, थोड़ा लेट हो जाऊँगा अगर आगे से। मेरे देसी मैनेजर बोला, क्यों हो रहा, बाद में बोलना, पहले लॉग इन करो। मतलब शहर बदल गया बॉस, पर देसी मैनेजर की डेडलाइंस नहीं बदली। खैर, मेरे मैं एक्सपेक्ट तो कर रहा था होमसिक, सॉरी ऑफिस शाउट आउट की कुछ होगी, बट गुड टू नो, गुड टू नो। एक और मैसेज आया, हाय केतन, हमारे क्वीन स्ट्रीट वाले ऑफिस में अकेले इंडियन हूँ। ओह, आई एम द ओनली इंडियन, यप। एंड टुडे हाउज यू नो वी हैव प्रिपेयर्ड कढ़ाई पनीर और लच्छा पराठा। अरे वाह, वेरी नाइस यार। एंड एग्जैक्टली लाइक लंच रूम, माइक्रोवेव and everything smelling like, you know, everyone's looking at me like I'm the suspect of the thing. Thank you bro, thank you. इन्होंने क्या नाम बताया अपना, कनिका, कनिका ने ये मैसेज भेजा है, और पहले वाले ने नाम नहीं लिखा, बट काफी फनी था।
1: Top hit of the hour, brought to you by Indelible Homes, build your dreams.

वेलकम बैक, यू आर लिसनिंग टू लंच बॉक्स। आज की हिस्ट्री ऑफ न्यूजीलैंड की बात कर लेते हैं। वियतनाम वॉन में न्यूजीलैंड की पहली फायरिंग आज के दिन हुई थी, 16 जुलाई 1965 में। अगर मेन इवेंट की बात करें तो आज के दिन न्यूजीलैंड की 161 फील्ड बैटरी आर्टिलरी ने वियतनाम वॉर में अपनी पहली फायरिंग की थी और ये फायरिंग साइगोन के पास बीन हुआ बेस से की गई थी। वेल, इंपॉर्टेंट क्यों था ये? वेल, ये पहली ऐसी वॉर थी जहां न्यूजीलैंड ने अपने ट्रेडिशनल साथी ब्रिटेन के बिना लड़ाई की और इस वॉर में न्यूजीलैंड ने यूएस और ऑस्ट्रेलिया के साथ अपनी नई मिलिट्री दोस्ती निभाई। शुरुआत वैसे न्यूजीलैंड गवर्नमेंट शुरू में थोड़ी कॉशियस थी, उन्होंने कॉम्बैट ट्रूप्स यानी कि लड़ने वाले जो फौजी होते हैं वो भेजे और 1963 में पहले एक सर्जिकल मेडिकल टीम भेजी और 1964 में इंजीनियर्स भेजे जो रोड्स और ब्रिजेस बनाते थे और 1965 मई में फाइनली कॉम्बैट फोर्सेस भेजने का बड़ा डिसीजन लिया गया। जुलाई में इन आर्टिलरी गनर्स ने इंजीनियर की जगह ले ली और पहले अमेरिकन और बाद में ऑस्ट्रेलियन फोर्सेस के साथ मिलकर सर्व किया। वैसे इस लड़ाई में इंपैक्ट कितना हुआ, 1963 से 1975 के बीच लगभग 3000 से ज्यादा न्यूजीलैंड मिलिट्री और सिविलियंस ने वियतनाम में ड्यूटी की और इस लड़ाई में न्यूजीलैंड ने करीबन 37 लोग शहीद हुए और 187 से ज्यादा घायल हुए थे। 2 सिविलियंस की जान भी बचाई गई थी इस पूरे इंसिडेंट में।

0: सचित टंडन, परंपरा टंडन, ये हस्बैंड वाइफ है, इन्होंने ये गाना बनाया है और बहुत ही प्यारा नंबर, ऑलमोस्ट यू नो टॉप 10 में आ चुका है गाना दिलबरा। वेल जस्ट टू रिमाइंड यू, ये वही सचित टंडन है जिन्होंने बेख्याली में भी तेरा ये गाना गाया है। मैं जो तुमसे दूर हूं नॉट रहूं। एनीवेज, चलिए फिर से लेके आते हैं आपको शो की तरफ, इन्फॉर्मेशन दे देते हैं। एक नया पॉडकास्ट रिकॉर्ड हुआ है जिसमें शनील लाल यहां आए थे, रुजबे एंड सैंडी के साथ उन्होंने बात की है रिगार्डिंग LGBTQ+ राइट्स, रेसिज्म और रिप्रेजेंटेशन इसके बारे में, और कितनी इक्वालिटी मिलती है या अनइक्वालिटी है, इस पे बात की उन्होंने। काफ़ी दिल खोल के, काफ़ी डीप डाइव करके उन्होंने हर एक चीज़, हर एक एक्सपीरियंस शेयर किया है कि किस तरह से उन्होंने क्या कुछ फेस कर ये लोग करते हैं और कितनी इक्वालिटी मिलती है समाज में, क्या जगह इनकी, प्लस ऑफिस में जब वो जॉब अप्लाई करते हैं वहाँ पे जॉब मिलने के बाद वो क्या फेस करते हैं, ये हर एक चीज़ उन्होंने बहुत अच्छे से बताई है। सो यस, आप अगर ये पॉडकास्ट सुनना चाहते हैं, बहुत ही आई ओपनिंग कन्वर्सेशन हुई इनके साथ, तो आप ड्राइव लिख के हमें 5599 पे भेज दीजिए। यस, दैट्स गोना बी वेरी क्विक, सो जस्ट ड्राइव लिखिए DRIVE व्हाइल वर्किंग, व्हाइल डूइंग समथिंग एल्स, व्हाइल जस्ट ड्राइविंग ऑल्सो, दिस इज गोइंग टू बी अ वेरी गुड पॉडकास्ट। 5599 पे आप भेज दीजिए ताकि ऑडियो लिंक आप तक पहुंच जाए। साथ में BF लिख के 5599 पे आप भेज दीजिए टेक्स्ट, ताकि विजय पूजा की जो बिट्स एंड कन्वर्सेशन है उसके बारे में भी आप एंजॉय कर सके। बट यस, एट द सेम टाइम मेरा नया गाना आ चुका है सफायर 2.0, आप शेयर कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, कमेंट भी प्लीज करिए वहाँ पे। यूट्यूब पे जाइए और सफायर केतन के नाम से सर्च करिए, आपको गाना मिल जाएगा जिसमें मेरे बोल हैं, मैंने गाना गाया है और फिल्म एडिटिंग सब मैंने की है, और साथ में मनप्रीत भाई जो कि पप्पा टोए टोए वो उन्होंने गाना लिखा था, ये वही मनप्रीत है। सो यस, आप एंजॉय करिए और मुझे प्लीज प्लीज प्लीज बताइए कि गाना आपको कैसा लगा।
1: लंच बॉक्स विद केतन,
2: इसके पीछे ना 3-4 लड़कियां पड़ी हुई हैं।
1: इसके पीछे
3: द ब्रेकफास्ट शो विद वीजे एंड पूजा,
4: पूरी प्लानिंग से आए हैं, 100% तुमको सुबह यहां से ले जाएंगे।
5: Those people who live around the Hunua area, वहाँ पर 1 degree है temperature।
6: जितने भी लोग इस इलाके में हैं, enjoy करते रहे आप। West side है ना, west side of Auckland है ये। We have lots of fun basically with the cold weather।
5: कौन है?
6: Hunua और Waitakere।
5: अच्छा, Hunua west में?
6: किधर है Hunua?
3: The Breakfast Show with Vijay and Pooja।

0: PMI.co.nz or call 0800-4NZ-PMI.
1: चलिए जल्दी शॉर्ट्स के फ्लावर न्यूज पढ़ लेते हैं. सबसे पहले टेक्नोलॉजी की सबसे बड़ी खबर, एसीटी लीडर डेविड सिमर ने प्रपोजल दिया है कि न्यूजीलैंड को नई टेक्नोलॉजी जैसे एआई ड्राइवरलेस कार्स और ड्रोन्स की टेस्टिंग हब के रूप में डेवलप किया जाए ताकि कंपनीज यहां इनोवेशन को आसानी से टेस्ट कर सके. दैट्स गोना बी ट्रिकी. हेल्थ अपडेट में न्यूजीलैंड ने पहले H5N1 बर्ड फ्लू केस कंफर्म किया है और ये वायरस एक ब्राउन स्कुआ नाम के सी बर्ड में वेलिंगटन के पेटॉन बीच पर मिला. ऑफिशियल्स का कहना है कि पब्लिक के लिए रिस्क फिलहाल लो है और एग्स और पोल्ट्री खाना सेफ है. अगर आप लोटो खेलते हैं तो सुन लीजिए, पावर बॉल जैकपॉट अब बढ़कर $30 मिलियन हो चुका है जो इस साल का सबसे बड़ा जैकपॉट है. दो प्लेयर्स ने फर्स्ट डिवीजन में $500,000 यानी कि 500K जीत लिया है और लेकिन बड़ा प्राइज अब भी किसी लकी विनर का इंतजार कर रहा है. आई नो कल ही मेरे एक दोस्त ने 500K तो नहीं लेकिन 500 जरूर जीते हैं, $500. इंटरनेशनल अपडेट में वॉशिंगटन डीसी की फेमस रिफ्लेक्टिंग पूल मेंटेनेंस के लिए ड्रेन की गई है. पानी निकालने के बाद उसका बॉटम ग्रे कलर का नजारा आ रहा है. बिजनेस न्यूज में स्पेसएक्स की वैल्यूएशन में अपनी गिरावट की वजह से कुछ न्यूजीलैंड इन्वेस्टर्स को भी लॉस का सामना करना पड़ रहा है. स्पोर्ट्स में लियोन मेसी की शानदार परफॉर्मेंस की बदौलत अर्जेंटीना ने इंग्लैंड को कमबैक में हराकर फीफा वर्ल्ड कप के फाइनल में जगह अपनी पक्की कर ली है. और आखिर में माओरी ब्रॉडकास्टिंग की दुनिया से एक बहुत ही दुखद खबर, माओरी रेडियो के पायनियर हिनारे किंगी का 91 ईयर की उम्र में देहांत हो चुका है. उन्होंने माओरी रेडियो को मजबूत पहचान देने में काफी मदद और काफी योगदान

0: Bollywood.
1: World's best, hamari koi branch nahi hai.
0: Throwback.
2: वेल यस, एक सवाल है मैं आपसे करूंगा, पूछूंगा, जिसका सच मुझे आप मुझे जवाब दीजिए. 5599 में काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक है. अरे क्या था मेरा अभी दिमाग में था, हाँ याद आ गया. नहीं अरे सवाल यही था. अरे यार क्या हो गया भाई, अभी याद था मेरे को. कैसे ब्लैक आउट हो गया एकदम मेरे को. क्या था? अरे यार मेरे दिमाग से निकल गया. Damn. Oh my God. सच में मैं वो दिमाग में अभी था, मेरे दिमाग में एकदम ही ब्लैंक आउट हो चुका हूँ. एनीवेज आप मुझे बताइए, कुछ और सवाल कर लेता हूँ मैं. मेरा दिमाग पता नहीं क्या हो गया, एकदम से भी ब्लैक आउट हो गया. और मैं सच में जो मेरा सबसे इंटरेस्टिंग सवाल था वो ही मैं भूल चुका हूँ. आप में किसी को याद हो मुझे क्या पूछना था मुझे बता दो यार. 5599 पे. एनीवेज दूसरा सवाल ये कर लेता हूं कि अरे हाँ याद आ गया. यस यस फाइनली. आप अपने नाम का मतलब बताइए. जी हाँ ये मेरा सवाल था. 5599 पे आप अपना नाम लिखिए और उस नाम का मतलब क्या है वो मुझे भेजिए. 5599 पे देखते हैं यार किसका नाम जो है काफ़ी इंटरेस्टिंग मतलब रखता है. मुझसे पूछोगे तो केतन का बेसिकली नाम होता है, केतन जो नाम है उसका मतलब होता है टू थिंग्स. वन इज फ्लैग, जो लहराता हुआ फ्लैग, नॉट लाइक यू नो ऐसे लपेटा हुआ या रखा हुआ साइड में, नहीं लहराता हुआ फ्लैग, या फिर द काइट हु इज फ्लाइंग इन द स्काई. सो यस दैट इज द मीनिंग ऑफ माई नेम. तो आप भी अपने नाम का जो मतलब है मुझे 5599 पे भेज दीजिए. लेट्स सी यार कितने इंटरेस्टिंग मैसेजेस आते हैं.

0: उसने तन्हा छोड़ दिया, हवाओं की तरह मैंने भी रुख मोड़ दिया। बराबरी का खेल रहा इस दफा यारो, मैंने उसका उसने मेरा दिल तोड़ दिया, दिल तोड़ दिया।
1: लंच बॉक्स विद केतन।
2: हीरा लड़का है, टेलीस्कोप लेके ढूंढेगा ना तो भी इससे बड़ा लड़का नहीं मिलेगा तुझे।
1: हाँ।

0: जेट बीस को चाहते हो या ब्रीज मोर एज रॉक या माई एफएम के वाइब्स, मीडिया वर्क्स के पास हर प्लेटफॉर्म का मैजिक है और आउटडोर एडवर्टाइजिंग का भी। बसेस, बिलबोर्ड्स, ट्रेन स्टेशंस, स्ट्रीट फर्नीचर, डिजिटल हो या स्टैटिक, वीव गॉट द स्पॉटलाइट फॉर योर ब्रांड। कॉल मी कशिका ऑन 021-769-755. मीडिया वर्क्स, मीडिया दैट वर्क्स।
1: Hey, the boss shouted us coffees this morning from BP.
2: No way.
3: We in trouble?
1: Nah, it's BP Plus.
3: What is that?
1: A fuel card that saves a business on BP fuel. Plus, we get free coffees.
4: Sweet. Fuel you and your crew with 14 cents off every litre of eligible fuel for 6 months, plus 25 free Wild Bean Cafe coffees through BP Me. Apply for a BP Plus fuel card today at bp.co.nz. T's and C's apply. New customers only for a limited time.
5: Tired of compromising between taste and nutrition? Introducing Amma's Foods Multigrain Dosa Batter. Made with 8 super grains, it's packed with the goodness your family deserves.
6: बिजी सुबह हो या शाम का जल्दी का खाना, अम्मास फूड्स मल्टीग्रेन डोसा बैटर बनाएं। हर मील हेल्दी और डिलिशियस, हाई प्रोटीन, रिच इन फाइबर और स्वाद से भरपूर। ये है हर घर का बेस्ट चॉइस, अम्मास फूड्स मल्टीग्रेन डोसा बैटर। 100% ऑथेंटिक और माँ के प्यार जितना शुद्ध। आज ही करें ट्राई, आपके नजदीकी स्टोर में उपलब्ध है। स्वाद भी, सेहत भी।
7: प्लीज यूज योर इमेजिनेशन फॉर द फॉलोइंग एड।
8: इफ आई वन पावरबॉल, आई डू सम स्पेंडिंग। येप, आई स्पेंड सम टाइम विद एंड वी'd एंजॉय अ होल लॉट।
7: Imagine winning $30 million this Saturday. Play in store or online.
9: अपने सपनों की दुनिया बनाने, we all came here and we work hard to protect them. But when something goes wrong, like a cancer diagnosis, an accident or a heart attack, your insurance claims only succeed if your application was done right from the start. At Assure One, Nitesh Sheeta works with you to make sure details are captured, nothing is missed, nothing forgotten. Because the right advisor knows the application process, the policy wording, and knows exactly what it takes for a claim to be successful. Assure One, plan for tomorrow today. Call 0800-77-HEETA. North Henvale Advisory Limited. Trading as Assure One is a licensed financial advisor. Provider.
10: Feed the faith with the 1NZ Warriors range exclusively at Wendy's. Try the new signature burgers, salted caramel frosty and cookie dough bites. Order on the Wendy's NZ app to win weekly prizes and lunch with the players. Only at Wendy's. T's and C's apply.
11: 1921 से इंडियन फैमिलीज ने मॉरिसन्स फ्यूनरल्स पर भरोसा किया है, क्योंकि वो आपके ट्रेडिशंस को अच्छी तरह से समझते हैं। पंडित जी के साथ मिलकर हर सेरेमनी आपके तरीके से ऑर्गेनाइज करना, बड़े ग्रुप्स के लिए फ्लेक्सिबल स्पेसेस, ऑन साइट कैटरिंग विद वेजिटेरियन और एग फ्री ऑप्शंस, और आपकी परंपराओं का सम्मान करने के लिए ऑन साइट क्रेमेटोरियम, और जब भी जरूरत हो, दिन हो या रात, हमेशा फोन के दूसरी तरफ कोई ना कोई मदद के लिए तैयार रहेगा। मॉरिसन्स फ्यूनरल्स को कॉल कीजिए।
12: टाइम हो चुका है दिन के ठीक एक।
13: हम न्यूज ब्रॉट टू यू बाय लॉजिक फाइनेंस लिमिटेड, चेंजिंग लाइव्स विद लॉजिक।
14: गुड आफ्टरनून, आई एम KM एडम्स विद द लेटेस्ट एट वन। MPI is urging people to continue to stay vigilant and alert authorities if they see birds that may be infected with bird flu. The first H5N1 case has been detected, with a seabird found on Wellington's Petone Beach yesterday testing positive. The Greens say boosting union membership is one way to reduce income inequality. Their new bill would make membership the default if employees join a workplace with a union. Co-leader Marama Davidson says the strength of unions has been critical.
15: Collectivising representation of workers is the only reason why workers have minimum wages, holiday pay, sick leave.
14: New research shows the cost of renting is pushing tens of thousands of households into poverty. Around 45,000 non-beneficiary households who rent privately earn less than a full-time minimum wage. Researcher Greg Waite says two-thirds can't afford both their rent and basic living costs.
16: The houses are overexpensive and therefore the rents are overexpensive, and it's just kept getting worse.
14: And Whittaker's Chocolate has unveiled a new flavour. The brand will next week roll out a gumdrop block, inspired by the iconic Goody Goody Gumdrops ice cream. Manager Thomas Tuchel is defending his tactics after England's 2-1 loss to Argentina in the FIFA World Cup semi-final this morning. He's been criticised for defensive substitutions and sitting back after Aaron Gordon scored the game's first goal. Thomas says his team was struggling to get a hold of the ball via TVNZ+.
17: Of course we wanted to go for the second goal, but I had not the feeling that offensive substitution would help.
14: Argentina will face Spain in Monday's World Cup final. Football with High Sense, proud partner of the FIFA World Cup.
18: Sports News. Brought

0: Weather update brought to you by Go Bananas Childcare, where learning is fun. Call 0800 462626.
1: 17 डिग्रीज आज का मैक्सिमम टेम्परेचर रहने वाला है, 10 डिग्रीज आज का मिनिमम टेम्परेचर रहने वाला है, 10% चांस है बारिश के, लेकिन आज का सनसेट होगा 5:25 पे, यानी कि 5:25 पे।
0: लंच बॉक्स विद केतन।
2: ऐसा बजाऊंगा ना कि तेरे कानों में रोज मेरी आवाज गूंजेगी।
0: लंच के मंच पे।
1: नमस्ते, सत श्री अकाल, आपका स्वागत करते हैं आज के इस खूबसूरत शो लंच बॉक्स में फिर से। वेल, अगर मुझे 12 बजे सुन रहे हैं तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और अभी अगर ज्वाइन किया है जस्ट नाउ अभी के अभी, तो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन। ऐसे ही बने रहिए अंटिल 3, बहुत सारी बातें करेंगे। शुरुआत करेंगे राधे राधे मीट ब्रॉस के कंपोजिशन अरेंजमेंट से, बना ये गाना बहुत ही बढ़िया है। उसके बाद एक और गाना, एंड देन वी गोना टॉक अबाउट व्हाट यू विल बी एक्सपेक्टिंग फॉर दिस आवर। बने रही है, बहुत सारे इवेंट्स होने वाले हैं, बट यस, आप टिकट ले लीजिए, जो भी मैं बताने वाला हूँ उन सब के टिकट आप डेफिनेटली खरीद लीजिए और भूलना नहीं।
0: बचाओ क्या,
3: गोकुल की राधा चली, ओ चली ओ चली, गोकुल की राधा चली, ओ चली चली चली, गोकुल की

0: लंच बॉक्स विद केतन।
1: इसके पीछे ना तीन चार लड़कियां पड़ी हुई हैं।
0: इसके पीछे
2: हम लंच टाइम ट्रेंड लाइन के लिए आप मुझे मैसेज भेज सकते हैं 5599 पे। आप मुझे बताइए और कहानी बताइए, लाइक इफ एनीथिंग हैज हैपेंड इन द रीसेंट डेज जो आप शेयर करना चाहते हैं यहाँ पे, तो वो आप कर सकते हैं। थोड़ी देर में वैसे फ़ोन भी कर सकते हैं, फ़ोन लाइन भी ऑन हो जाएगी। वैसे कुछ मैसेजेस मिले हैं रिगार्डिंग आपके नाम का क्या मतलब है, उसके बारे में मैं पढ़ूंगा थोड़ी देर में। लेकिन यस, आप मुझे अभी भी भेज सकते हैं अगर आप मुझे बताना चाहें कि आपके नाम का मतलब क्या है, मुझे 5599 पे भेज दीजिए।
0: वो दिन जब मोहब्बत खत्म होती थी।

बीते लम्हों को अब हर पल जिए हम रिवाइंड के साथ। एक ऐसा सफर जहां हर गाना एक याद है, हर सुर एक कहानी। हम रिवाइंड, जहां संगीत सिर्फ सुनाई नहीं देता।

0: एंड फिर मिसेस सिंह से मैंने पूछा, एना अच्छा खाने के साथ किचन में रील्स और टिकटॉक कैसे बना लेती हो? बोली, बस मेरा फोकस है।
1: हाँ। अच्छा
0: बताओ, तो आड़ा फोकस फोकस साड़ा कुछ नहीं।
1: मिसेस सिंह,
2: अरे पम्मी जी, मेरा फोकस मींस मेरे घर का किचन, जिसको डिजाइन किया है फोकस किचन्स ने।
3: मॉडर्न क्लासिक शेक स्टाइल किचन्स, फोकस किचन्स, यूनिट के 33 वॉन्सली रोड, ओटाहू। कॉल 09281-3050 और विजिट focuskitchens.co.nz।
4: लंच बॉक्स विद केतन।
5: मुझे पसंद है लड़का।
4: हम लंच टाइम रेंट लाइन।
6: लंच टाइम रेंट लाइन में स्वागत है। वैसे यस, एक का मैसेज आया है, अनुराग यानी कि लव सॉन्ग। ओके ओके, मुझे लगा शायद ये बोल रहे हैं कि लव सॉन्ग चलाओ। मैंने कहा चलाया तो है लव सॉन्ग, अब समझ में। अनुराग मतलब अनु मतलब लव, राग मतलब सॉन्ग। क्या बात है यार, लाइक वेरी सोच समझ के। तो सचमुच आप लव सॉन्ग गाते हैं, लाइक गाते हैं, गुनगुनाते हैं, या सुनते हैं, या डेडिकेट करते हैं, क्या करते हैं इनमें से आप? मतलब मुझे बताइए आप 5599 पे। हरमीत ने भी मैसेज भेजा है। हरमीत का मतलब होता है हरी की मीत, यानी कि भगवान का भगत। क्या बात है यार, मतलब वेरी नाइस यार, मतलब काफ़ी सोच समझ के लोग रखते हैं। बट यहाँ पे एक सवाल मेरा ये भी है, किसी का ऐसा नाम हो जिससे आप सचमुच बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट हैं। आप मुझे नाम नहीं बताएं चलेगा कि किसने भेजा है, बट आप मुझे कोई भी नाम बता सकते हैं। फॉर एग्जांपल, आपका खुद का नहीं, किसी और का भी हो तो वो भी चलेगा। एनी पर्सन नेम जो सचमुच उसको बहुत ज़्यादा इरीटेट करता है कि यार मेरा नाम क्यों है ये, आई हेट इट, तो मुझे बताइए 5599 पे। मुझे बहुत प्राउड फील होता है केतन का नाम सुन के। आई मीन कोई मुझे बुलाता है तो। यहाँ आने के बाद मुझे पता पड़ा कि केतन इज़ एक्चुअली नॉट वेरी कॉमन नेम, जो कि ऑब्वियसली मेरे लिए ठीक है, सही है। पीपल विल नो कि हाँ केतन कौन है ऐसा। फॉर एग्जाम्पल, लंच टाइम रेंट लाइन के लिए भी एक मैसेज आया है, 4 seasons in 1 day। आई एम इन ऑकलैंड म्यूजियम एंड he has a bit of like a villain, so he's not happy with the Auckland weather because when he woke up he said that I was wearing the jacket because that's what the temperature says, but around 10 suddenly the sun came out and started heating, so I had to remove the jacket. So yes, at 12 again when I was having lunch I started feeling cold because the sun has gone. So I have to wear the jacket again, and around 1 again the rain started, so I have to go inside, or I have to cover myself under the shed so that I don't get wet. And then after that again it is sunny, and then towards the evening it became windy and of course the cold. So what he's trying to explain is that on single day I have experienced 4 season weather. क्या बात है, मतलब ये चीज़ काफ़ी फेमस है। न्यूजीलैंड इज़ वेरी फेमस फॉर सच थिंग्स, जहाँ पे आप आते तो एक ही कंट्री में, एक ही सीजन में, लेकिन एक्सपीरियंस आप सबका करते हैं, यानी कि एक टिकट पे 4 shows आपको एक साथ मिलते हैं, वो भी बिना पूछे।
4: लंच के मंच पे टॉप हिट ऑफ द आवर, ब्रॉट टू यू बाय इंडेलिबल होम्स, बिल्ड योर ड्रीम्स।

0: नॉनस्टॉप बॉलीवुड
1: जो भी करते शिद्दत के साथ करते हैं
0: हम प्लेइंग बॉलीवुड्स बिगेस्ट हिट्स।
2: चलिए अभी की लेटेस्ट खबर पढ़ लेते हैं। रात भर ठंड, अ कोल्ड नाइट। ऑकलैंड और बे ऑफ प्लेंटी जैसे ईस्टर्न कोस्ट पर आज दिन में तो अच्छी धूप और साफ आसमान देखने को मिल सकता है, लेकिन मेट सर्विस के मुताबिक थर्सडे रात यानी कि आज के दिन और फ्राइडे की शुरुआत तक ठंड जो है बहुत ही ज़्यादा हो सकती है, खासकर उन जगहों पर जहां आसमान बिल्कुल साफ रहता है। वेल, न्यूजीलैंड के ज़्यादातर हिस्सों में कल मौसम ड्राई रहेगा, हालांकि वेस्टर्न फेसिंग कोस्ट पर थोड़े बादल छाए रहेंगे और फार साउथ में हल्की बूंदाबांदी हो सकती है। वीकेंड भी ज़्यादातर जगहों पर ड्राई ही रहेगा, लेकिन सैटरडे को एक वीक वेदर फ्रंट की वजह से ठंडी साउथ वेस्टर्ली हवाएं जो हैं आपको फील होगी, जिससे संडे तक ठंड और भी बढ़ सकती है। वेल, कुछ ही दिनों पहले मातारी की वीकेंड पर देश में भारी ठंड थी, जहां लेक टेकापू में टेम्परेचर करीबन -12.5 डिग्री सेंटीग्रेड गया था और नॉर्थ आइलैंड के सेंट्रल प्लेटू में -6.2 तक चला गया था। दैट्स वेरी वेरी माइनस, यार माइनस में बहुत ही ज़्यादा नंबर है। आई हैव नेवर एक्सपीरियंस लोअर देन -6। सो यस, अगर आपने इससे ज़्यादा एक्सपीरियंस किया

0: PFSL, providing the best home loan advice for the last 20 years. Google PFSL today. Amma's Food, 100% authentic and pure as mother's love. And Indelible Homes, your building experts known for subdivisions. Visit indelblehomes.co.nz.
1: Well, FIFA World Cup 2026 Cup Final, European champion Spain or defending World and South American Championship Argentina ke beech hoga. Ye match Sunday 19 July 2026 ko New York Jersey Stadium pe hoga. Wahan ke hisab se, but yahan obviously it will be a Monday. Well, Spain ka safar. Spain ne semi-final mein favorite France ko dominantly hara kar final mein jagah hasil kar liye. Aur group stages mein thoda slow start ke baad unhone फॉर्म पकड़ी और नॉकआउट राउंड्स में आगे। ये एक्चुअली मुझे रिमाइंड कर रहा है अभी 2026 का जो वर्ल्ड कप जीता है भारत ने T20, वो सचमुच वैसे ही, उनकी भी शुरुआत ऐसी रही थी दैट दे आर नॉट परफॉर्मिंग द बेस्ट, बट बेस्ट वर्ल्ड कप लेके चले गए. सो यू नेवर नो, अर्जेंटीना कुड बी द वन हु गोना विन बैक टू बैक वर्ल्ड कप. वाओ. वेल, डिफेंडिंग चैंपियंस अर्जेंटीना अपने लगातार दूसरे और ओवरऑल सेवेंथ वर्ल्ड कप फाइनल खेल रही है. लियोन मेस्सी के जादू बरकरार है और टूर्नामेंट में 8 गोल्स उन्होंने कर लिए हैं अभी तक. उन्होंने सेमीफाइनल में इंग्लैंड को हराया और एक थ्रिलिंग कमबैक के बाद जिसमें एंजो फर्नांडिस और लुआटारो मार्टिनेज ने गोल्स दागे. साथ में वर्ल्ड कप में ये दोनों टीम सिर्फ एक बार आमने सामने आई है, 1966 में, जहां अर्जेंटीना ने 2-1 से जीत दर्ज की थी. और इनके बीच कई फ्रेंडली मैचेस हुए हैं, आखिर बार 2018 में जहां स्पेन और अर्जेंटीना का मैच हुआ था जिसमें स्पेन ने अर्जेंटीना को 6-1 से हराया था. यानी कि वर्ल्ड कप में अर्जेंटीना आगे है, बट लीग मैच में, लाइक नॉर्मल जो फेस टू फेस मैचेस होते हैं उसमें आखिरी मैच में स्पेन ने अर्जेंटीना को 6-1 से हराया था. क्या लगता है क्या होगा, कमाल इस बार फिर से दोहरा पाएगी अर्जेंटीना या फिर स्पेन ले जाएगा बड़ा वर्ल्ड कप?
2: लंच बॉक्स विद केतन.
3: हीरा लड़का है, टेलीस्कोप लेके ढूंढेगा ना तो भी इससे बड़े लड़का नहीं मिलेगा तुझे.
4: 80s के रेट्रो गाने.

0: Download Rova to listen Hum 80s Jukebox.
1: Intaha ho gayi intezaar ki.
2: होम लोन के साथ थोड़ा कैश भी पाना चाहते हैं? नया होम लोन लेना हो या मौजूदा लोन का रिव्यू करवाना हो, स्क्विरल आपको दिलाएगा एक ऐसी जबरदस्त डील कि आपकी हो जाएगी बल्ले बल्ले। जानिए पावर ऑफ द स्क्विरल इफेक्ट squirrel.co.nz।
3: करण औजला ब्रिंग्स हिज पीपॉप कल्चर वर्ल्ड टूर टू न्यूजीलैंड। ऑकलैंड स्पार्क अरेना दिस ऑगस्ट। टिकट्स एट livenation.co.nz। डोंट मिस करण औजला लाइव।
4: एंड फिर मिसेस सिंह से मैंने पूछा, इतना अच्छा खाने के साथ किचन में रील्स और टिकटॉक कैसे बना लेती हो? बोली, बस मेरा फोकस है। हाँ। अच्छा बताओ, तो आड़ा फोकस फोकस साड़ा कुछ नहीं।
5: मिसेस सिंह,
6: अरे पम्मी जी, मेरा फोकस मींस मेरे घर का किचन जिसको डिजाइन किया है फोकस किचन्स ने।
7: मॉडर्न क्लासिक शेक स्टाइल किचन्स, फोकस किचन्स, यूनिट के 33 वॉन्सली रोड, ओटाहू। कॉल 09281 3050 और विजिट focuskitchens.co.nz।
8: Fresh or quality halal meat, unbeatable prices per Ali's Farm, Auckland. Aapka trusted licensed abattoir or butcher. Limited time offer. Whole goat carcass, sirf $15 per kilo. Spring lamb carcass, $17.50 per kilo. Or 30 kilo se zyada sheep carcass, sirf $12.50 per kilo. Halal certified, processed under MPI requirements or whole carcasses mein available hai. Curry pieces cutting bhi available hai. T's and C's apply. Ali's Farm, 1319 Alfriston Road, Alfriston. Call 027-530-1175.
9: Lunchbox with Ketan.
10: इसके पीछे ना तीन चार लड़कियां पड़ी हुई हैं।
9: इसके पीछे
11: हम
9: लंच के मंच पे।
12: चलिए बॉलीवुड से खबर लेके आया हूँ। खबर से पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि रिपोर्ट्स क्या रही है। वेल, रिपोर्ट्स बोले तो रिपोर्ट कार्ड आती ना, तो उसमें वही है कि क्या रिपोर्ट्स रही है फॉर द फिल्म जो इतनी सारी फिल्में रिलीज हुई है, उसका मैं फटाफट से चेकआउट कर लेता हूं। बट यस, आपने लेटेस्ट फिल्म देखी होगी आलिया भट्ट की। काफ़ी लोग बोल रहे हैं कि आलिया भट्ट की जो फिल्म है वो कुड हैव बीन बेटर इफ ये धुरंधर की फिल्म जो है वो नहीं आती तो। बट व्हाट डू यू थिंक, इज दैट एक्चुअली ट्रू दैट बिकॉज धुरंधर ने ऐसी छाप छोड़ दी है और इस वजह से ऑडियंस जो है अब वही चीज़ एक्सपेक्ट कर रही है, समथिंग एटलीस्ट क्लोजर, और जहाँ पे नहीं मिल रही तो काफ़ी डिसअपॉइंटमेंट भी हो रही है। व्हाट डू यू थिंक? मुझे लगता है काफ़ी हद तक सही है बिकॉज बिजनेस में भी होता है। फॉर एग्जांपल, मैं अपने वीडियो की अगर बात करूँ तो मैं जब वीडियो बनाता हूँ तो इट हैज़ टू मैच विद द ट्रेंडिंग मार्केट। जी हाँ, द रीज़न इज़ बिकॉज फिर हर कोई पॉइंट आउट करता है कि यार वो उस तरह का वीडियो बनाओ ना यार, वो बहुत शानदार था, इस तरह का बना। तो एवरी वन नीज़ एन एग्जाम्पल। धुरंधर ने एग्जाम्पल सेट कर दिया, सो इट गोना बी वेरी डिफिकल्ट फॉर अदर पीपल, स्पेशली YRF। वेल यस, रिपोर्ट कार्ड तो ये है कि धमाल 4 ने 88.44 करोड़ का कलेक्शन कर दिया है। उसके बाद एल्फा ने 54.7, आई थिंक हिट हो ही जाएगी या फिर एवरेज चली जाएगी। बेबी डू डाई डू 4.94 पे अब रुक चुकी है, फ्लॉप हो चुकी है फिल्म। नागा बंधम ओके, ये 2.72 करोड़ का कलेक्शन कर चुकी है। नवचक्र ऑन 0.062 करोड़ का कलेक्शन किया है, यानी कि धुरंधर वॉज द लास्ट फिल्म, उसके बाद कोई ऐसी फिल्म नहीं आई है जिसने सचमुच मार्केट को हिला दिया। बट यस, बटवारा 1947 14 अगस्त को रिलीज होने वाली है। आवारापन भी सेम दिन 14 अगस्त को होने वाली है। ईथा देखिए, पहले तो मैं कह रहा हूँ बटवारा देखने जाइए, जहाँ पे ऑब्वियसली आप देखेंगे कि बटवारा जब हुआ था तब क्या कुछ हुआ, और उस बटवारे से अगर किसी को मिस करते हैं तो आप आवारापन 2 भी देखने चली जाइए, फिर एकदम अच्छे अच्छे। बट आई एम एक्सपेक्टिंग कि काफ़ी बढ़िया सॉन्ग आने वाले हैं आवारापन 2 के। आई एम एक्चुअली लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। बट अभी की जो लेटेस्ट खबर है बॉलीवुड से वो ये है कि YRF स्पाई यूनिवर्स कभी इंडियन सिनेमा के सबसे बड़े फ्रेंचाइजी माना जाता था, लेकिन पिछले कुछ वक्त से जैसे वॉर 2 और अब एल्फा के फ्लॉप होने के बाद इसके आगे की राह जो है उस पर सवाल उठ रहे हैं। बॉलीवुड ट्रेड एक्सपर्ट्स ने इनको वापस ट्रैक पर लाने के लिए कुछ सजेशंस दिए हैं, जैसे कि ट्रेड एक्सपर्ट्स तरण आदर्श बहुत ही बड़े फिल्म का रिव्यू देते हैं। उन्होंने बताया कि स्पाई यूनिवर्स ख़त्म नहीं हुआ है, पर इसको रिबूट की सख्त ज़रूरत है क्योंकि ऑडियंस अब पुराने स्टाइल देखकर बोर हो चुकी है। और अतुल मोहन ने पॉइंट आउट किया है कि फिल्म की स्टोरी लाइन सेम रहती है, जैसे कि ऑफकोर्स एंटी दुश्मन जो होते हैं उनसे या फिर अंधेरे में धोखा, इस तरह की कंसेप्ट हर एक में मिलता है, उसी का वो बदला लेते हैं। उन्होंने कहा है कि अलग कंट्रीज के विलन लाने चाहिए और अल्फा जैसे काफ़ी ऐसे सीन्स को अवॉइड करना चाहिए और रियल चीज़ दिखाइए, क्योंकि सिर्फ ऐसे वायरल जो अनएक्सपेक्टेड सीन्स होते हैं उसको दिखाने से मतलब नहीं है। वेल, उसके बाद विशेक चौहान ने भी सजेस्ट किया है कि YRF को 2 से 3 साल का ब्रेक लेना चाहिए और फिर पठान 2 के साथ एक मेगा मूवी बनानी चाहिए, शाहरुख खान के साथ सलमान खान और ऋतिक रोशन, आलिया भट्ट और शर्वरी सब एक साथ होना, बिल्कुल वैसे ही जैसे मार्वल अपनी एवेंजर्स मूवी के साथ करता है। अरे वाह, ये मेरे को बढ़िया अच्छा लगा सजेशन। आपको क्या लगता है, शुड YRF मेक मार्वल लुक लाइक ये जो स्पाई यूनिवर्स है वो करना चाहिए? मेरे को लगता है कहीं ना कहीं करेंगे, बिकॉज कंसेप्ट काफ़ी लिंक तो है। व्हाट डू यू थिंक?

Kia ora, namaste, welcome back. You are listening to Lunchbox. My name is Ketan. You are listening to me. We are 104.2 FM. It can be 87.7 FM. You are listening to me. Roa app is also downloaded on your phone from Play Store, App Store, se, where you can enjoy it. We can hear it anywhere, anywhere. And we can take all kinds of things we bring there. So yes, you can explore over there as well. बढ़िया एस आर में बहुत कुछ देख सुनने को मिलेगा आपको. ऑब्वियसली देयर इज अ करण औजला का पी पॉप कल्चर वर्ल्ड टूर लेके आ रहे हैं वो, और अक्की का एक एलिमेंट भी है वहाँ पे, एक परफॉर्मेंस भी है, गेस्ट अपीयरेंस भी होने वाला है या फिर पूरा शो होगा, वी डोंट नो. दैट विल बी दैट यू विल एबल टू फाइंड आउट व्हेन यू आर देयर इन द शो. वेल यस, आप ले लीजिए जो टिकट्स है, hum.roa.nz पे जाइए, वहाँ पे आपको मिल जाएगा इन्फॉर्मेशन, या फिर आप livenation.co.nz पे भी जाके पता कर सकते हैं. जैसे कि मैंने कहा था कि रोआ ऐप के जरिए भी आपको मिल सकती है इन्फॉर्मेशन. करण औजला आ रहे हैं यहाँ पे 25 अगस्त को स्पार्क एरिना में. जी हाँ, गेस्ट इक्की विल बी देयर एज वेल टुगेदर विद करण औजला. वेल यहाँ पे कंपटीशन बताया गया, यहाँ पे आपके लिए हम ये लेके आए हैं दैट जैसे ही आप करण औजला का कोई गाना सुनेंगे, जैसे ही सुनते हैं फट से आपको के ए लिखना है. कल काफ़ी एंट्रीज आई थी लेकिन उन्होंने इनिशियल्स जो है गलत लिखे, तो बेसिकली फर्स्ट लेटर ऑफ करण औजला, जी हाँ, करण का के और औजला का ए, ये लिखना, प्लस गाने का जो नाम, जो गाना चलेगा उसका नाम सही होना चाहिए. मेक श्योर आप वो सही करें और 5599 पे आप भेज दीजिए. जी हाँ, अगर जस्ट इनकेस अगर आपको गाना नहीं पता, बिकॉज होता है कभी कि गाना तो सुन लिया लेकिन समझ में नहीं आ रहा कौन सा है, तो सीधा था एक ईजी ट्रिक बताता हूँ. सॉफ्ट, किसी को बोलना मत, आप हम पे भी किसी को मत बोलना कि मैं आपको बता रहा हूँ. वेल पता है क्या, एक शज़ैम करके एक ऐप आती है, उसको डाउनलोड कर लीजिए और वहाँ पे आप यू नो जब गाना चल रहा है तो उसको टिक क्लिक कर दीजिए, तो वो गाना डिटेक्ट कर लेगा कौन सा गाना ही है बीट सुनने के बाद. तो डजेंट मैटर अगर आप पंजाबी सुनते हैं नहीं सुनते हैं, बट यस, जैसे आप सुने सही नाम अगर भेजेंगे तो ही आप एंट्री में जा पाएंगे. बिकॉज कल एंट्रीज है उसमें से हार्डली कुछ ही सही जवाब थे, बाकी सब ने हर कुछ का कुछ लिखा होगा, कोई भी गाना लिखा होगा. सो यस, दैट इज़ व्हाई आई एम हेल्पिंग यू ओवर हियर. शज़ैम, शो SHAZAM ऐसा कुछ है शायद, शज़ैम म्यूजिक डिटेक्टर ऐसा कुछ, ऑडियो डिटेक्टर ऐसा कुछ है शायद. हाँ, बट यस, आप के लिख के सही गाने का नाम और 5599 पे भेज देना ताकि आप ड्रॉ में शामिल हो जाएं और जीत जाएं डबल पास फॉर दिस वन एंड ओनली पीपॉप कल्चर वर्ल्ड टूर लेके आ रहे हैं करण औजला के शो के लिए. बचाओ क्या?

0: वेल, ऑकलैंड के कम्यूटर्स के लिए एक बहुत ही अच्छी खबर लेके आया हूँ। साउथ ऑकलैंड के दो नए रेलवे स्टेशन ड्रूरी और पायराटा 18 अगस्त 2026 से ऑफिशियली ओपन होने जा रहे हैं, ठीक एक महीने दो दिन बाद। लगभग 50 साल बाद इन दोनों एरियाज में फिर से पैसेंजर्स ट्रेन रुकेंगी। वाओ, 50 इयर्स लेटर। ये स्टेशन्स पापाकुरा और पोकेकोहे के बीच रेल नेटवर्क को और स्ट्रॉन्ग बनाएंगी, जिससे लोकल रेसिडेंट्स को ट्रैवल में ज्यादा कन्वीनियंस मिलेगी। फिलहाल एक तीसरी स्टेशन नाकोकोरुआ अभी कंस्ट्रक्शन में है और बाद में ओपन होगी। गवर्नमेंट और ऑकलैंड ट्रांसपोर्ट के उनका कहना है कि ये प्रोजेक्ट सिटी के ग्रोइंग पॉपुलेशन और फ्यूचर ट्रांसपोर्ट नीड्स को सपोर्ट करेगा, और ये अपडेट साउथ ऑकलैंड के पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए बहुत ही बड़ा माइलस्टोन माना जा रहा है। एक्चुअली इट्स गोना बी वेरी वेरी गुड, बिकॉज इतना साउथ में ट्रैवल करते हैं जो लोग, वो लिटरली दिन के 3 से 4 घंटे सिर्फ और सिर्फ ट्रैफिक पे ही बिताते हैं ऑन एन एवरेज। बहुत बड़ी बात है यार, लाइक बहुत बहुत टाइम बचेगा। द ओनली थिंग इज बस सर्विस बढ़ाओ, बढ़िया हो। व्हाट डू यू थिंक?
1: लंच बॉक्स विद केतन।
2: हीरा लड़का है, टेलीस्कोप लेके ढूंढेगा ना तो भी इससे बड़ा लड़का नहीं मिलेगा तुझे।
3: हम फिजी कीर्तन संग्रह की अपार सफलता के बाद भजन प्रेमियों के लिए पेश है हम फिजी भजन। प्रसिद्ध कलाकारों से फिजी भजन का मजा लीजिए कभी भी कहीं भी। हम फिजी भजन, दुनिया का पहला 24/7 एक्सक्लूसिव एंड फ्री फिजी भजन प्लेटफॉर्म। डाउनलोड करें रोवा ऐप या hum.rova.nz पर सुने हम फिजी भजन।

0: लंच बॉक्स विद केतन।
1: इसके पीछे ना तीन चार लड़कियां पड़ी हुई हैं।
2: इसके पीछे
3: हम
0: स्किप या रीप्ले।
4: Well, yes, गरबा नाइट विथ राज गढ़वी होने जा रहा है 1st of August 2026 को। Well, yes, one of the most liked and one of the most awaited cultural celebration इस बार भी होने वाली है और इस बार जो सेलिब्रिटी आ रहे हैं, जो परफॉर्मर आ रहे हैं, जो आपको थिरकने पे मजबूर करेंगे वो है गरबा विथ राज गढ़वी लाइव इन ऑकलैंड। Well, yes, Lotus Productions, Shri Event New Zealand, Vinay Mehta और Pranshi Group proudly आप सभी के लिए लेके आए हैं ये बहुत ही बढ़िया मेगा इवेंट जो कि होने जा रहा है 1st of August को। काफी इलेक्ट्रिफाइंग एनर्जी के साथ वाइब्रेंट रिदम्स और अनफॉर्गेटेबल नाइट विथ राज गढ़वी एंड मेस्मराइजिंग वॉइस ऑफ हिमसेल्फ आपको नाचने पे मजबूर करेंगे। द महात्मा गांधी सेंटर में होने वाला है। टिकट जल्दी से जाइए और खरीद लीजिए eventstickets.co.nz पे जाके। 0224394736 इज द नंबर जहां पे आपको स्वप्निल शाह को कॉल करना है और ये टिकट खरीद लेनी है जस्ट इन केस अगर आपको वेबसाइट पे नहीं मिलती है तो। बट यस, eventstickets.co.nz इज द वेबसाइट जहां पे आपको टिकट आसानी से मिल जाएगी।
0: Hit of the hour brought to you by Indelible Homes. Build your dreams.

वेलकम बैक, यू आर लिसनिंग टू लंच बॉक्स। वेल, जल्दी से आपको बता देता हूँ दैट ट्रिविजन इवेंट्स आप सभी के लिए लेके आए हैं। कृष्णा अभिषेक एंड राजीव ठाकुर का लाइव स्टेज परफॉर्मेंस द ग्रेट कॉमेडी नाइट होने जा रहा है 18 जुलाई को, यानी कि परसों। विक्ट्री कन्वेंशन सेंटर में होने वाला है, bookmyevent.co.nz में होगा। सो यस, काफी लिमिटेड सीट्स वहां पे अवेलेबल है, आप जल्दी से अभी जाइए और टिकट खरीद लीजिए, कभी भी सोल्ड आउट हो सकता है। अगर आपको आफ्टर पे यूज करना है वो भी आप कर सकते हैं वहां पे, और 0210432720 ये एक नंबर है जहां पे आप कॉल करके सवाल जवाब कर सकते हैं अगर आपको कुछ भी सवाल जवाब करने हैं तो। बट यस, फैमिली, परफेक्ट फैमिली एंटरटेनमेंट है ये, आप किसी भी उम्र के बच्चों को या फिर बड़ों को लेके जा सकते हैं और एंजॉय कर सकते हैं। इट गोना बी अ फैमिली एंटरटेनमेंट, फैमिली फन शो, नॉन स्टॉप लाफ्टर, हिलेरियस लाइव परफॉर्मेंस बाय वन एंड ओनली कृष्णा अभिषेक एंड राजीव ठाकुर, 18 जुलाई, विक्ट्री कन्वेंशन सेंटर में।

0: with Ketan.
1: इसके पीछे ना तीन चार लड़कियां पड़ी हुई हैं।
0: इसके पीछे
2: हम टेक टॉक।
3: वेलकम बैक। चलिए टिकटॉक की बात कर लेते हैं। काफी एक पॉपुलर गेम है, वो आने वाला है इस साल। मैं बात कर रहा हूँ GTA 6। वेल यस, क्या खास बात है उसके बारे में? व्हाट कैन यू एक्सपेक्ट फ्रॉम GTA 6 गेम? वेल, इंडस्ट्री का सबसे बड़ा धमाका यानी GTA 6 के बारे में मैं बात करूंगा। इंतजार की जो घड़ियां हैं वो खत्म होने वाली है, क्योंकि 2026 को नवंबर 19 के दिन ये गेम ऑफिशियली आपके PS5 और Xbox सीरीज XS पर दौड़ने के लिए तैयार हो जाएगा। बॉस, इस बार रॉकस्टार बिल्कुल नए अंदाज में लौट रहा है, जहां हमें पहली बार लूसिया नाम की एक फीमेल लीड के साथ जेसन के दासु जोड़ी देखने को मिलेगी। बिल्कुल मॉडर्न डे बोनी एंड क्लाइड वाला सीन। कहानी सेट है नियॉन लाइट से चमकती हुई हमारी पुरानी और सनहरे वाइस सिटी में। जी हाँ, यानी कि ये सारी चीजें हो रही है वाइस सिटी में। अगर आपने सैन एंड्रियास खेला है, GTA वाइस सिटी, तो यू वुड नो। अगर नहीं खेला तो एक बार यूट्यूब पे देख लीजिए। बट दिस गोइंग टू बी अमेजिंग। मेरे को लग रहा है ये सारे रिकॉर्ड तोड़ देगा, बिकॉज इसकी लागत भी करीबन $2 billion लगी है। $2 billion, वाओ। वेल, जहां ड्राइविंग के मजे अब एक बार एक बिल्कुल रियल होने वाला है, सन गन फाइट और यू नो रेड डेड रिडेम्पशन 2 जैसे सॉलिड टेक्टिकल्स भी आपको फील मिलेंगे। एंड आज के टाइम पे सोशल मीडिया इज ऑल्सो वेरी पॉपुलर, तो यस, उसके अंदर काफ़ी यू नो वो सीन्स भी दिखाए गए हैं। बट यस, गेम के अंदर एक आप अपना टिकटॉक स्टाइल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म भी होगा, जहां आपकी लाइव तबाही वायरल होने वाली है। तो बॉस, अगर स्टैंडर्ड एडिशन चाहिए तो $80 to $100 समवेयर अराउंड दैट ये बिकना भी शुरू हो चुका है, तो आप ऑनलाइन जाके अभी से प्री बुक कर सकते हैं। बट सबसे पता है क्रेजी बात क्या लगी मेरे को इसके अंदर? इफ यू डोंट वर्क आउट इन द गेम, देन व्हाट विल हैपन इज आपकी जो फिजिक है वो पतली या बड़ी भी हो सकती है। दैट मीन्स यू नीड टू मेंटेन विथ योर फूड, यू नीड टू मेंटेन विथ योर यू नो एक्सरसाइज, एवरीथिंग यू नीड टू डू टाइम टू टाइम, ताकि आप अपनी बॉडी को मेंटेन कर सकें। ये इससे पहले वाले किसी भी GTA गेम्स में नहीं रहा है। दैट्स गोना बी अमेजिंग यार, मतलब मजा आएगा।
0: दिल

Well, thank you so much. बहुत ही बढ़िया आज का दिन, समय, बातें और आपसे जो गुफ्तगू हुई है, बातें हुई है by messages and by calls, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया. आप बने रहिए, because coffee break के लिए Sandy will be joining shortly. मैं मिलता हूँ कल आपको same time, same जगह, 12 से 3. तब तक लिए bye bye, take care and love you.

0: अब दौड़ में आप अपनी पसंद की चीजें नहीं कर पाते। आपको फिजी कीर्तन पसंद है लेकिन पता नहीं कब और कैसे सुने। हम फिजी कीर्तन संग्रह पर आप जब चाहें तब अपने फेवरेट कीर्तन का मजा ले सकते हैं। हम फिजी कीर्तन संग्रह, दुनिया का पहला 24/7 फिजी कीर्तन प्लेटफॉर्म। डाउनलोड करें रोवा ऐप या hum.rova.nz पर सुने।
1: Don't put up with a damp, cold bathroom this winter. With a shower dome shower top, your bathroom will be warmer, drier, healthier. And now every shower dome comes with a lifetime guarantee. That'll give you the warm fuzzies. Showerdome.co.nz.
2: The Club Plus Smart Shopping Buddies are here to help you shop smarter at New World, Pack and Save and Four Square. Go to clubplus.co.nz to meet yours.
3: एंड फिर मिसेस सिंह से मैंने पूछा, इतना अच्छा खाने के साथ किचन में रील्स और टिकटॉक कैसे बना लेती हो? बोली, बस मेरा फोकस है।
4: हाँ। अच्छा
3: बताओ, तो आड़ा फोकस फोकस साड़ा कुछ नहीं।
4: मिसेस सिंह,
5: अरे पम्मी जी, मेरा फोकस मींस मेरे घर का किचन, जिसको डिजाइन किया है फोकस किचन्स ने।
6: मॉडर्न क्लासिक शेकर स्टाइल किचन्स, फोकस किचन्स, यूनिट के 33 वॉन्सली रोड, ओटाहू। कॉल 09281 3050 और विजिट focuskitchens.co.nz।
7: Fresh or quality halal meat, unbeatable prices per Ali's Farm, Auckland. Aapka trusted licensed abattoir or butcher. Limited time offer. Whole goat carcass, sirf $15 per kilo. Spring lamb carcass, $17.50 per kilo. Or 30 kilo se zyada sheep carcass, sirf $12.50 per kilo. Halal certified, processed under MPI requirements or whole carcasses mein available hai. Curry pieces cutting bhi available hai. T's and C's apply. Ali's Farm, 1319 Alfriston Road, Alfriston. Call 027-530-1175.
8: Time check. Hum News, brought to you by Logic Finance Limited, changing lives with logic.
9: Good afternoon, I'm KM Adams with the latest at 3. One person is in custody and another is seriously injured after a fight outside the Palmerston North District Court. Police were called to the altercation around 10 this morning. Reports suggest it involved several rival gang members. An investigation has been launched and further arrests aren't being ruled out. The government is asking for the public's help with reporting potentially viral birds after an avian tested positive for bird flu yesterday. MPI's Mary Van Andel.
10: Of course, we are relying on the public to make reports of three or more dead or sick birds across all of New Zealand.
9: The Child Poverty Action Group says the percentage of rental homes that are affordable in this country has fallen significantly since 2015. Researcher Greg Waite says almost every region is affected, but it's particularly bad in the middle of the North Island.
11: It's much worse in rural and regional New Zealand.
9: The Greens are confident their new union membership policy to automatically enrol new employees in a union if they join a workplace with one will have the support of Labour. Digital driver's licences are a step closer. They'll be optional and available to be carried on a mobile phone. To rugby, with shift four in the All Blacks team to play Ireland on Saturday is due out in an hour. Head coach Dave Rennie is sure to make changes. Leroy Carter is injured. Either Caleb Clark or Josh Morby set to start on the left wing. There's also a hint that lock Tupuva'i may shift to the blindside flank. And a serious injury to former AB's Lucy Dalton Papali'i in France. He's torn his Achilles tendon in pre-season training with Castres Olympique.
8: Sports News, brought to you by Sona Sansar, Papatoy and Mount Roskill. Weather update, brought to you by Go Bananas Childcare, where learning is fun. Call 0800 462626.
12: मौसम के हालचाल, मेट सर्विस के अनुसार इस समय टेम्परेचर बाहर का 15.5 डिग्रीज और आज का ओवरनाइट 10 डिग्रीज टेम्परेचर रहने वाला है। मौसम आज का ऑलमोस्ट फाइन गया, हल्के से बीच में बादल जरूर थे बट मोस्टली फाइन वेदर। सनसेट आज का 5:25 पर।
8: द बीट ऑफ बॉलीवुड,
13: वर्ल्ड्स बेस्ट, हमारी कोई ब्रांच नहीं
8: है। कॉफी ब्रेक विद सैंडी।
12: 3:02 हो चुके हैं। अ वेरी वेरी गुड आफ्टरनून टू यू। कॉफी ब्रेक आपके लिए शुरू हो चुका है। यू हमिंग अलोंग विद सैंडी। अभी से लेके 4 तक मेरा और आपका साथ रहेगा कॉफी ब्रेक में, उसके बाद कंटिन्यू रहेगा ड्राइव शो में। सो कैसे हैं आप और आपका डे आज का कैसा जा रहा है, यहाँ पर ज़रूर आप शेयर कर सकते हैं। केतन का लंच बॉक्स तो खत्म हुआ है बट केतन इज स्टिल हेयर। एंड केतन, तुम्हारा आज का डे कैसा गया है?
14: डे बढ़िया गया है, मैं अभी ब्रेनस्टॉर्म कर रहा हूँ।
12: ब्रेनस्टॉर्म कर रहे हो तुम किस चीज को लेके?
14: अपने बैंड का नाम रखने के लिए।
12: या सो इफ यू डोंट नो व्हाट केतन इज टॉकिंग अबाउट, तो आज जो केतन ने जैसी जैकेट पहनी है वैसे एग्जैक्टली जैकेट मैंने पहनी है।
14: चाहिए था यार, आपने पहले, अब लोग क्यों स्टोरी जाके देखेंगे बताओ।
12: अरे लेकिन कैसी कितनी मैचिंग है, ये तो देखना पड़ेगा ना।
14: यही तो टीजर में बताना है ना, टीजर के थ्रू।
12: यही तो हुक थी।
14: वो आपने डायरेक्ट क्लाइमेक्स ही बता दिया, बोले हीरो ने इनको मारा है, वो लड़की लेके गया।
12: अब देखो, अगर चेहरा देखना है तो जाके देखिए, जैकेट देखनी है कि कैसी जैकेट है, और अगर आपने भी ऐसी जैकेट आज के दिन मैचिंग पहनी हुई है
14: हाँ,
12: तो स्क्रीनशॉट भेजिए नीचे।
14: कहाँ नीचे?
12: अरे कमेंट सेक्शन में।
14: अच्छा, ओके ओके।
12: ये ऐसी भावनाएं समझनी चाहिए।
14: नहीं नहीं, नाइस यार, काफी।
12: तो कहाँ पे जाके देखेंगे ये स्टोरी?
14: अपने हम पे, हम के सोशल मीडिया, इंस्टा पे जाओ, फेसबुक पे जाओ। फेसबुक पे ऑटोमेटिक नहीं जाता ना, उसको मैनुअली करना पड़ता है।
12: मैनुअली करना पड़ता है,
14: राइट। तो अभी हाल फिलहाल तो इंस्टा पे जाओ, क्योंकि पिछले आधे घंटे से मैं वेट ही कर रहा हूँ अपलोड होने का।
12: अच्छा, अभी अपलोड नहीं हुई है?
14: नहीं, अब तो हो गया है, बट शुक्र है हमारा इंटरनेट तो फास्ट है यहाँ का।
12: क्योंकि
14: डेमोग्राफी देख रहा हूँ उसकी, जियोग्राफी भी, दैट किसी एक कंट्री में उसने हिट किया है,
12: एक कंट्री को में हिट हुए है वो।
14: हाँ, इस वजह से yesterday I said it was somewhere around 6K.
12: Oh.
14: अभी it is close to 12.
12: Oh wow. और वो एक कंट्री के कारण?
14: हाँ, यही होता है, like, you know, एक कंट्री की वजह से ही कहीं ना कहीं हो जाता है।
12: वो कंट्री ये नहीं है,
14: वो कंट्री इंडिया है।
12: ओके, ऐसा है।
14: मेरा तो यार देखो, इंटेंशन भी वही था, दैट ऑब्वियसली न्यूजीलैंड वाले तो देख ही लेंगे। कोशिश हम पूरी कर रहे हैं रील्स के थ्रू, हर एक या दो रील पर डे हम डाल रहे हैं,
12: क्योंकि लिरिक्स जो है वो न्यूजीलैंड के लिए है और वीडियो जो है वो प्रॉपर न्यूजीलैंड की वीडियो है।
14: हाँ, तो केटर ऑब्वियसली इंडिया को भी करो, क्योंकि मेरा मेन टारगेट ये कि एक बार यूएस में बैठे एड शेरन, यूएस नहीं यूरोप में शेर ना, इंग्लैंड का है वो, तो उस तक पहुंच जाए, और बंगाल की खाड़ी में जो बैठे हुए हैं।
12: आज तो इंग्लैंड पहुंचना मुश्किल है यार, पता, आज तो रो रहे हैं वो।
14: आज तो थोड़ा मूड ऑफ होगा उनका, कोई नहीं, कल आ जाएंगे, कल ट्राई करेंगे फिर से।
12: ये भी बात है, बट एनीवे, फुटबॉल के बारे में और भी बातें करेंगे। आई हैव सम इंटरेस्टिंग आर्टिकल्स टू शेयर, बिकॉज स्पेन वर्सेज अर्जेंटीना के बीच में मैच होने वाला है। आई एम वेरी एक्साइटेड बाय द वे। मेरी प्रेडिक्शन के जो टीम्स थी वो तो निकल गई है, फ्रांस और इंग्लैंड, बट वन नॉट फेवरेट टीम्स एनीवे। अर्जेंटीना रियली वांटेड आगे तक जाए। अब अर्जेंटीना स्पेन के बीच में पहली बार वर्ल्ड कप में फाइनल मैच होने वाला है, वैसे ये भी एक पॉइंट है, लेकिन उसके ऊपर भी बहुत सारे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं। हाँ, बोलो बोलो।
14: नहीं, मैं यहाँ पे एक पॉइंट डालूंगा, टीजर देता हूँ। बेसिकली काफी लोगों को ये पता नहीं होगा कि इससे ऑब्वियसली बहुत बार, शायद दो या तीन बार भिड़ चुकी है इंग्लैंड और अर्जेंटीना।
12: Yeah.
14: और काफी अच्छा मौका था इंग्लैंड के पास यहाँ पे बदला लेने का।
12: दोनों की हिस्ट्री है।
14: There is a big controversy.
12: Yeah.
14: जो मैं थोड़ी देर में बताऊंगा।
12: थोड़ी देर में तो बताओगे, बताओ ना अभी।
14: नहीं, मेरे को लगा आपको गाना चलाना है।
12: नहीं, तुम बताओ।
14: अच्छा,
12: कोई
14: बता
12: बात नहीं। हाँ हाँ,
14: ओके। मतलब लड़ने पे तो खत्म करो, निकल।
12: नहीं, मतलब वैसे कह रही हूँ कि बता सकते हो।
14: 1986 में मैच हुआ था बिटवीन इंग्लैंड एंड अर्जेंटीना का। उस 1996 में ऑलमोस्ट ये था कि या तो टाई होने वाला था या फिर इंग्लैंड जीतने वाली थी, लेकिन एक ऐसा गोल आया जिसमें हेड मारने के चक्कर में जो अर्जेंटीना का प्लेयर था उसका हाथ लग गया और इट वेंट टू गोल। सो गोलकीपर के अलावा कोई भी अलाउड नहीं है हाथ से करने
12: का, खेलने का। या
14: तो जब ये क्या, लेकिन जो रेफरी था वहां का उसने देखा नहीं, उसने गोल बोल दिया कि चलो गोल ही है, बट सारे टीममेट अगेंस्ट गए, ये सब गए। तो जो शायद मैराडोना एक, पता नहीं कौन था, आई डोंट नो, उनका नाम ही याद नहीं है, तो उन्होंने बोला इट्स अ हैंड ऑफ गॉड।
12: आ या,
14: तो
12: तभी या
14: ये बात बोल के उन्होंने ये टाल दी, तो इट वाज लाइक अ वेरी वेरी हार्ट,
12: इट्स वेरी फेमस, या
14: हार्ट ब्रेकिंग वाली सिचुएशन। दैट सिचुएशन, पता है, आप जब खुद हारते हो ना तो आप गुस्सा निकाल सकते हो, बट सिचुएशन आपके फेवर में नहीं होती है, किस्मत जिसको बोलते हैं, तो बहुत ही गंदा लगता है यार, बहुत ही गंदा। जैसे इंडिया का, मैं बहुत मायूस था 2023 वर्ल्ड कप
12: कि कैसे निकल गया। या ऑब्वियसली इंग्लैंड जो है वो काफ़ी लाउडली सेलिब्रेट भी करते हैं जब वो जीतते हैं, दे वेरी लाउड अबाउट इट. तो आज उनका एक्चुअली में हार्ट ब्रेक भी काफ़ी लाउड था, मतलब या बुरा लग रहा है ऐसा.
14: हार्ट ब्रेक भी लाउड होता है कैसे?
12: मतलब या
15: Football updates brought to you by PFSL, providing the best home loan advice for the last 20 years. Google PFSL today. Amma's food, 100% authentic and pure as mother's love. And Indelible Homes, your building experts known for subdivisions. Visit indelibleHomes.co.nz.

Unfiltered with Sandy and Rusby. क्योंकि दुनिया में already बहुत सारे perfect, polished, Instagram friendly stories हैं और उनका हमसे कोई लेना देना नहीं.

0: anywhere you get your podcast.
1: अरे बबीता, thank you so much for giving me Guru's number यार.
2: क्यों? क्या हुआ?
1: मुझे अर्जेंट काम से फीजी जाना था. $20,000 चाहिए थे. बैंक गई तो इतने ही डॉक्यूमेंट्स मांगे कि बस पूछो ही मत. एक हफ्ता हो गया, नो रेस्पॉन्स. फिर तुमने गुरु का नंबर दिया और बस अगले दिन पैसे मेरे अकाउंट में. गुरु तो हो जा शुरू वाला काम है.
3: गुरु कैंडोला ऑफ लॉजिक फाइनेंस, अ हाउसहोल्ड नेम इन फाइनेंस एंड इंश्योरेंस इंडस्ट्री. कॉल 0800 LOGIC G. दैट्स 0800 564 424.
4: वो इंडेलिबल होम्स वाली कहानी सुनाओ ना.
5: The story begins in 2007. Claude has a vision for a building company. It aims to become an expert in providing affordable homes with modern designs. With a 10-year master builder guarantee, awards pour in.
6: And award goes to Indelible Homes.
5: Trust of the customers builds. Indelible Homes becomes New Zealand's favorite master builder.
7: Kahani of Indelible Homes.
8: आजकल लीगल इन्फॉर्मेशन पर सब ज्ञान देते हैं, जैसे खुद कोई गूगल हो.
9: मगर सही गाइडेंस विद करेक्ट लीगल प्रोसेसेस तो एक ही है, सुपर जोड़ी ऑफ राजन आशिमा फ्रॉम लीगल एसोसिएट्स, नोटरी पब्लिक, बैरिस्टर्स एंड सॉलिसिटर्स.
10: लीगल एसोसिएट्स लॉ फर्म बेस्ड इन साउथ ऑकलैंड डील्स इन सेल एंड परचेज ऑफ बिजनेस एंड प्रॉपर्टी, लीजेस, सब डिविजन, इमिग्रेशन एंड क्रिमिनल लॉ, नोटरी सर्विसेज एंड पावर ऑफ अटर्नी. फॉर अपॉइंटमेंट्स विद राजा आशिमा कॉल ऑन 0927994 39 और विजिट legalassociates.co.nz.
11: Media voice complaints. How can I help?
12: My kids won't shut up.
11: I'm not sure that's our problem.
12: They keep reciting lines from one of your radio ads.
11: Aw, cute.
12: Yeah, well, it was cute initially, but after 27 times.
13: What do you want, son?
14: I want me some of that real southern chicken.
12: 28 times.
11: So where are you now?
12: Eating chicken.
15: Advertise with
16: Media Works.
15: New Zealand listens to us.
17: Stuck for dinner ideas? Faro Kitchen has you covered with fresh, chef-created meals that are ready in no time. Dive into rich chicken tikka with creamy, tangy sauce and aromatic spices. Or classic smoked fish pie. Tender, flaky fish, buttery bechamel and a golden kumara mash. Faro Kitchen's oven-ready meals make wholesome dinners quick and stress-free. Available online or at your local Faro store. Just pop it in the oven and relax. Faro Kitchen, dinner made deliciously.

0: 3:18 एट द मोमेंट यहाँ पे हो चुके हैं। कॉफी ब्रेक फिलहाल आप यहाँ पे सुन रहे हैं। आने वाले दिनों में ढेर सारे इवेंट्स भी हो रहे हैं जिसके बारे में आपको वैसे बता देती हूँ। जो इवेंट्स है कॉमेडी नाइट जो है इसी वीकेंड पे होने वाला है, द ग्रेट कॉमेडी नाइट 18th जुलाई को, जो कि आपके लिए विक्ट्री कन्वेंशन सेंटर में होगा शाम को। कृष्णा अभिषेक एंड राजीव ठाकुर लाइव परफॉर्म करने वाले हैं एंड नॉन स्टॉप लाफ्टर के लिए आप भी पहुंच सकते हैं। लिमिटेड नंबर ऑफ सीट्स आर अवेलेबल, सो मेक श्योर कि आप भी वहां पे जरूर जाइएगा। बुक योर टिकट्स नाउ, बुक माई इवेंट डॉट को डॉट एन जेड पे जाके। एंड रिमेंबर, माता रानी के फेस्टिवल जो है ये हम 21st ऑफ जुलाई तक सेलिब्रेट कर रहे हैं एंड 21st जुलाई तक बहुत सारे इवेंट्स जो है आपकी सुपर सिटी में हो रहे हैं। एंड यहाँ पे भी अगर आप कुछ करना चाहते हैं माता रानी के फेस्टिवल को सेलिब्रेट करने के लिए, तो वी हैव समथिंग फॉर यू जिसके बारे में इस गाने के बाद शेयर करने वाले हैं। स्टे ट्यून्ड।
1: हॉलीवुड्स मोस्ट वांटेड,
2: गुंडी खड़ जाओ या सीधा अंदर आओ,
3: मैं लाऊं अपना ए गेम।
1: ब्रॉट टू यू बाय इंडेलिबल होम्स, बिल्ड योर ड्रीम्स।

0: 3:23 at the moment यहाँ पे हो चुके हैं and you're humming along with Sandy right now and मेरे साथ actually मैं जो कि संडे को यहाँ पे शामिल होती है आपके साथ सुबह 6 से 12 के बीच में and this Sunday होने वाली है आरजू. हाय आरजू, आपकी आरजू यहाँ पे आ चुकी है. कैसी हो आरजू?
1: हेलो मिस्टर गु, आप
0: एकदम फर्स्ट क्लास. कैसा जा रहे हैं तुम्हारा तो? यू बीन वेरी बिजी ना?
1: हाँ, इट्स बीन वेरी बिजी काम में एंड आल्सो लाइक जस्ट नॉर्मल लाइफ में भी.
0: और लाइफ में बिजी हो?
1: हाँ,
0: हैप्पी बिजी.
1: हैप्पी बिजी,
0: दिस इज नाइस.
1: Yeah, so it's been nice busy. Not that abhi yeah,
0: haan, you know, काम है ये भी करना है वो भी, ऐसा वाला नहीं है. Oh, very good.
1: आपको?
0: हाँ busy. मैं तो look forward कर रही हूँ बहुत वाला happy busy रहने के लिए. वो होगा March 2027 में.
1: क्यों?
0: March 2027 is Bali and Bangkok.
1: Oh my god.
0: Yeah.
1: You and Rizvi.
0: Yeah.
1: And
0: lucky listeners.
1: Yeah.
0: So साथ में जाने वाले हैं.
1: Wow, so fun.
0: It's gonna be quite
1: Bali and Bangkok. Oh my god.
0: I know.
1: I'm jealous. मजा आएगा. I've been to Bangkok. बहुत fun है.
0: बहुत fun है ना वहाँ पे. वैसे आरजू यहाँ पे इसलिए शामिल हुई है बिकॉज माता रानी के फेस्टिवल के बारे में बात कर रहे थे जो कि एक्चुअली में आपने लॉन्ग वीकेंड तो सेलिब्रेट कर लिया गाइस, लेकिन ये 21 जुलाई तक वैसे इसकी जो सेलिब्रेशन है ये चलती है. एंड ऑन संडे आरजू गोना डू समथिंग स्पेशल राइट अराउंड दिस शी गोना डू, तो उसके बारे में वो बात करने आई है. तो क्या होने वाला है?
1: So recently I did my first ever pepeha, which is like a Maori
0: pepeha.
1: Pepeha.
0: Okay, what is it? अगर किसी को बिल्कुल नहीं पता है इसके बारे में.
1: So it is a way to introduce yourself by sharing where you come from and the people and the places that connect you. So this is like Maori traditional way में. So they introduce their mountain, their river, या फिर ocean, and then at the end, last May, they introduced their name. So they introduced from the places and the, you know, like the iwi and all that.
0: So for example, wo batate ki unki ancestral mountain kaun si thi. Fir apne local waterway, yani ki river ke baare mein batate hai. Then migrating waka and then काफी चीजें हैं एंड में देन अपने पेरेंट्स एंड फैमिली नेम.
1: यस, पेरेंट्स एंड फैमिली नेम, एंड दैट्स हाउ पीपल कनेक्ट टू लाइक फॉर एग्जांपल हम दोनों इफ वी आर स्ट्रेंजर्स आई गेस दैट्स हाउ दे कनेक्ट दैट वी आर फैमिली, यू नो, लाइक क्योंकि सेम एंसेस्टर, सेम सेम माउंटेन, सेम फैमिली एंड ऑल दैट.
0: सो
1: या सो काम में आई थिंक आई डोंट नो इफ यू हियर बट we celebrated Matsuriki last week. Wahan pe they did like a pepeha creation and I thought that was so cool ki, because pepeha obviously it's usually Maori people do it, but they all have also found ways for us non-Maori people to also create our own pepeha to introduce ourselves.
0: Okay, kaise?
1: Haan, ek website bhi hai. So aap रोवा टेक्स्ट कीजिए.
0: अगर आप रोवा मैसेज करते हैं 5599 पर आपको वो वेबसाइट मिल जाएगी जहाँ पे यू कैन क्रिएट योर ओन पपेहा. राइट,
1: सो मैंने भी अपनी पपेहा क्रिएट करके मैंने सबके सामने में आई स्पोक
0: एंड लेट्स गो फॉर इट.
1: आई गॉट गिफ्ट भी. सो ये
0: वाओ,
1: सो ये मेरी पपेहा है.
0: ओके,
1: सो आप शुरू करते हो लाइक को माउंट. ओके, आई डोंट नो माउंट, ऑब्वियसली मेरी माउंटेन तो नहीं है नेपाल में, बट यू नो माउंट एवरेस्ट एवरीवन नोस, सो मैंने वही लिखा. को माउंट एवरेस्ट ते मोंगा, को बागमती दे आवा, नो नेपाल आहो, को पुन तोकु फानो, को आरजू तोकु इंगवा.
0: So,
1: so वो हम मेरी पेपेहा है. एंड ऑब्वियसली इफ यू वुड लाइक टू क्रिएट आपकी भी पेपेहा, आपका इंट्रोडक्शन,
0: दैट विल बी सो कूल गाइस, क्योंकि आप खुद का पेपेहा क्रिएट कर रहे हो.

0: हो एंड देन व्हेन यू मीट समवन यू कैन एक्चुअली शो ऑफ
1: हां शेयर
0: यू हैव यू नो डन दिस थिंग
1: और
0: मे बी शेयर ऑन योर सोशल मीडियाज बिकॉज दिस इज ऑल अबाउट बीइंग इंक्लूसिव ओवर हियर
1: एंड लर्निंग द कल्चर
0: लर्निंग द कल्चर
1: एंड आप अपने ऑफिस में जाके शो ऑफ कर सकते हो ओह मुझे मौरी आता है यू नो
0: अरे मैं क्रिएट करने वाली हूं अभी I'm excited.
1: Yes.
0: मैं क्रिएट करूंगी अभी एंड आई विल शेयर ऑन द सोशल मीडिया
1: ठीक है
0: या फाइन आई विल शेयर दैट थैंक यू आरजू सो पपेहा इज बेसिकली व्हेन डू दे डू दिस लाइक ये जो इंट्रोडक्शन है ये किसी किसी ओकेजन पे होती है क्या
1: yeah, I think so.
0: Yeah, not so normally.
1: Yeah, and I think obviously every day में नहीं but like when you meet someone I guess new that's where they
0: introduce
1: and that's how they would I guess, so I know this or like, like who knows, so it might be the same EV.
0: I will say ki do create this, Rova likhe bheje 5599 par, you will get the link how to create it. Do create this because kya hai na, yahan pe jab aap kisi ko miloge and when you introduce yourself us way se, क्या ऑसम होने वाला है बिकॉज अभी क्या होता है ना कि किसी को मिलते हैं तो उनको हम अपनी भाषा सिखाते हैं कि ऐसे हम नमस्ते बोलते हैं ऐसे केम छु बोलते हैं ऐसे सत श्रीकाल बोलते हैं ये सब चीजें हम सिखाते हैं और गालियां बहुत सिखाते हैं हिंदी में ये गाली होती है हाउ अबाउट लर्निंग दिस कल्चर एंड देन यू टेल देम आप अपने आप को ऐसा सरप्राइज करो ना उनके सामने ऐसा इंट्रोड्यूस करो आई थिंक दिस गोना बी रियल फन
1: या वी सो स्पेशल फॉर देम
0: स्पेशल एज वेल दे गोना फील सो गुड अबाउट इट
1: क्योंकि आपको भी आई गेस व्हेन समवन लाइक अ फॉरेनर आई गेस समवन नॉन इंडियन स्पीक्स हिंदी आपको भी
0: एकदम से होता है एग्जैक्टली एंड जब आप उनके सामने इस वे से अपनी इंट्रोडक्शन दोगे उन्हीं की लैंग्वेज में पपेहा करोगे तो देन आई थिंक बहुत ही ऑसम होने वाला है बट फॉर मोर दिस काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन आरजू आपके लिए ऐसा बहुत सारा कंटेंट संडे को लेके आती है बिटवीन
1: 6 to 12
0: धन्यवाद
1: धन्यवाद

0: नॉनस्टॉप बॉलीवुड
1: जो भी करते शिद्दत के साथ करते हैं
0: हम प्लेइंग बॉलीवुड्स बिगेस्ट हिट्स
2: ड्राइविंग यू होम Drive Show with Sandy and Rusby.
3: तो फिर सरिता के चप्पल का साइज क्या था?
4: तो उसने सरिता ने जाके मैडम को बोल दिया कि हाँ जी मेरे को जहाज मारा किसी ने,
5: वो भी आई लव यू वाला।
4: मैडम ने पकड़ लिया, अभी यहाँ किसने बनाया, वो एक लड़की थी, वो बोलती जहाज तो दिलजीत बना रहा था बेटा।
5: अच्छा आप दिलजीत तो
4: आए आए बताओगे यार।
2: Drive Show with Sandy and Rusby, brought to you by Beds R Us. Sleep easy for less at Beds R Us Manukau and Pukekohe. Sleepyhead Sleep Easy Queen Beds from only $7.99. On sale now. And Jimmy Taylor and team from West City Auto Group, the home of GWM Havel and Omura Jaiku.
6: रिलायंस वेंटिलेशन सिस्टम।
7: हाय, मेरे घर में बहुत प्रॉब्लम्स हो रही है, जैसे कि क्राइंग विंडोज, सीलन आ गई है और खाने की बदबू तो जाती ही नहीं है।
6: मॉइस्चर और वेंटिलेशन का प्रॉब्लम लगता है।
7: और पता है मेरे बच्चों को एस्मा और एलर्जी भी हो गई है।
6: और दैट्स नॉट गुड। हम आपके सभी प्रॉब्लम्स रिलायंस वेंटिलेशन सिस्टम से सॉल्व कर सकते हैं। इससे आपका घर रहेगा वार्म इन विंटर एंड कूल इन समर। और हम मित्सुबिशी इलेक्ट्रिक और तोशिबा हीट पंप्स के ऑथराइज्ड डीलर्स भी हैं।
8: कॉन्टैक्ट रिलायंस वेंटिलेशन सिस्टम ऑन 0800-787-111। रिलायंस वेंटिलेशन सिस्टम्स, सॉल्विंग वेंटिलेशन प्रॉब्लम्स फॉर ओवर 18 years.
9: HBO Max is the all-killer, no filler.
10: So wait, a streaming service that's full of the good stuff and no boring filler?
9: Exactly.
10: Right, we'll see. What have they got?
9: There's HBO original series The White Lotus, House of the Dragon, Euphoria, The Last of Us, The Sopranos, hit movies like Wuthering Heights, Superman, one battle after another, and then there's Friends, The Big Bang Theory.
10: Whoa, okay, I get it. Fair call.
9: HBO Max, all killer, no filler. Stream now.
11: Spark Satellite, powered by Starlink satellite to mobile technology, is officially live. With an eligible phone and line of sight to the sky, you can now send texts and use data on select satellite ready apps while you're out exploring off the beaten path. With Spark Satellite, the best coverage just got better. Go to Spark to find out more. As awarded by Open Signal, requires eligible phone, SIM and plan. T's and C's apply.
12: अपने सपनों की दुनिया बनाने we all came here and we work hard to protect them. But when something goes wrong, like a cancer diagnosis, an accident or a heart attack, your insurance claims only succeed if your application was done right from the start. At Assure One, Nitesh Sheeta works with you to make sure details are captured, nothing is missed, nothing forgotten. Because the right advisor knows the application process, the policy wording and knows exactly what it takes for a claim to be successful. Assure One, plan for tomorrow today. Call 0800-77-HEETA. North End Vale Advisory Limited, trading as Assure One, is a licensed financial advisor.
13: Rebel's end of season sale is on now. Score up to 50% on selected Bip brand clothing, footwear and more. There's adults hoodies and sweats from $49, kids hoodies and sweats from $35. End of season sale is on now, only at Rebel Sport. See your night for T's and C's.
14: A lot of injuries happen on the weekend. So if you're out and about, or just out in the backyard, have a and ask yourself, if you get hurt, who gets harmed? Find out more at acc.co.nz.
15: Fresh or quality halal meat, unbeatable prices per Ali's Farm, Auckland. Aapka trusted licensed abattoir or butcher. Limited time offer. Whole goat carcass, sirf $15 per kilo. Spring lamb carcass, $17.50 per kilo. Or 30 kilo se zyada sheep carcass, sirf $12.50 per kilo. Halal certified, processed under MPI requirements or whole carcasses mein available hai. Curry pieces cutting bhi available hai. T's and C's apply. Ali's Farm, 1319 Alfriston Road, Alfriston. Call 027-530-1175.

0: 3:37 एट द मोमेंट यहाँ पे हो चुके हैं। यू हमिंग अलोंग विद सैंडी एंड आरजू मेरे साथ यहाँ पे है। आरजू ने थोड़ी देर पहले शेयर किया था अ टेम्पलेट जो उसने एक कीवर्ड बनाया है रोवा, जिसके ऑटो रिप्लाई में आपको रोवा ऐप एंड दिस टेम्पलेट मिल जाएगा जहाँ पे यू कैन क्रिएट योर ओन पपेहा, राइट? दिस इज अबाउट कि आप माओरी कल्चर के हिसाब से अपनी इंट्रोडक्शन कैसे बना सकते हैं। इट्स वेरी इजी, मैंने अभी अभी करके देखा है, मैं पढ़ के भी सुनाऊंगी होपफुली राइट वे से, जिसमें आपको सबसे पहले अपना नाम लिखना है और जहाँ पे आप रहते हैं वहाँ की माउंटेन। मैं जहाँ पे रहती हूँ वहाँ पे एग्जैक्टली माउंटेन नहीं है आरजू, वहाँ पे छोटे छोटे वो जो होते हैं ना स्पीड बम्प वो बहुत है, लेकिन माउंटेन्स नहीं है।
1: आप वही लिखो, स्पीड बम्प।
0: सो मैंने नॉर्थ इंडिया की फेमस माउंटेन वहां पे लिख दी है। रिवर है वहां पे जिसके ऊपर मूवी भी आई है, वो मैंने लिखा वहां पे। एंड देन कंट्री का नाम, लास्ट नेम एंड फर्स्ट नेम, और उसके हिसाब से आपका टेम्पलेट बनता है जहाँ पे आप एक मौर्य कल्चर के हिसाब से अपनी इंट्रोडक्शन दे सकते हैं। सो मेरा जो बना है वो है हसो मतम
1: नहीं हसुकी
0: क्योरा टाटुआ क्योरा ताथो को हिमालयस ते बाऊंगा को सतलुज ते अवा नो इंडिया आहो को सेखो तोकु फनाओ को सैंडी तोकु इसलिए हंस लिया आरजू बिकॉज मैंने पहले सैंडी की जगह सैंडू कर दिया था। तो क्या गुड ट्राई ना,
1: क्या बहुत अच्छा, सो गुड।
0: सो आप भी गाइस बनाइए, अगर आपका बनता है ये टेम्पलेट तो आप भी यहाँ पे भेजिए। और ऐसे अगर आपको और काम करने हैं तो आपको संडे सुनना है
1: 6 to 12
0: और बोल सकती हूँ आरजू, आरजू की हंसी नहीं बंद हो रही है यहाँ पे।
1: सैंडी ने
0: संडू नाम रख दिया इसने। या तो आप भी बनाइए और शेयर कीजिए यहाँ पे 555 पर।

0: भुलाए।
1: 1 मार्च को नजर मिलाई, 4 अप्रैल को मैं मिलने आई, 21 मई को तुमने छुआ था, 6 जून मुझे कुछ हुआ था।
2: लड़कों का क्या है, किसी भी मोड़ पे वो मुड़ जाए, अभी किसी के हैं, अभी किसी और से वो जुड़ जाए।
3: तुम्हारे मम्मी डैडी घर पर नहीं है? ग्रेट, मैं आ जाऊँ। तुम्हारी फ्रेंड अकेली घर जा रही है, बेचारी मैं छोड़ आऊँ?

0: पहले भवरे जैसे पास पास मंडरा है, फिर बिजी हूँ ये कहकर तुमको वो
1: टरका
0: समझा करो डार्लिंग, आज बहुत काम
1: मेरी
0: है
1: भी तो सुनो।
0: दूर हुआ तो क्या, दिल में तुम्हारा नाम है। जिस चेहरे पर मरते हैं वो बोरिंग हो
1: जाए,
0: कुछ ही दिन में नजरें इनकी इधर उधर
1: मंडरा,
0: सिर्फ प्यार से जिंदगी नहीं चलती।
1: इंटीरियर
0: डेकोरेशन का कोर्स क्यों नहीं करती?
1: ओके दैट्स इट।

0: ऑफ बॉलीवुड
1: वर्ल्ड्स बेस्ट हमारी कोई ब्रांच नहीं है।
2: 349 एट द मोमेंट यहाँ पे हो चुके हैं। वैसे आपको बता दूं कि डिजिटल ड्राइवर लाइसेंस के बारे में पब्लिक फीडबैक जो है ये ओपन अप हुई है। गवर्नमेंट जो है ये चाहते हैं कि आप अपने व्यू दे ऑन प्राइवेसी सिक्योरिटी एंड कितना इजी है यूज़ करना बिफोर रोलिंग आउट ऑप्शनल डिजिटल लाइसेंसेस। सो न्यूजीलैंड गवर्नमेंट जो है ये इन्वाइट करी पब्लिक फीडबैक को अपने प्रपोज्ड डिजिटल ड्राइवर लाइसेंस सिस्टम में, जहाँ पे एक अनदर मेजर स्टेप होगा सो दैट जो मोटरिस्ट है ये अपने साथ लाइसेंस स्मार्टफोन में ही कैरी कर सके इंस्टेड ऑफ रिलाइंग ऑन अ फिजिकल कार्ड। जो कंसल्टेशन है इट फॉलोज अ लेजिस्लेशन पास्ड इन मे, जो एक लीगल फ्रेमवर्क जिसके बाद बना था फॉर डिजिटल ड्राइवर लाइसेंस। जो लॉ है इज़ नाउ इन प्लेस। ऑफिशियल्स जो है ये पब्लिक इनपुट के बाद सिस्टम जो है इसको इंट्रोड्यूस करने वाले हैं। तो कंसल्टेशन है, इट विल रिमेन ओपन फॉर 4 वीक्स। सो जो सबमिशंस है ये 12 अगस्त को एक्चुअली में क्लोज हो जाएंगी। जो सिस्टम है इज़ बीइंग डेवलप्ड बाय न्यूजीलैंड ट्रांसपोर्ट एजेंसी। इन्होंने पार्टनरशिप किया है एक कंपनी के साथ जहाँ पे जो ऑर्गेनाइजेशन है ये रिप्रेजेंट कर रही है ट्रांसपोर्ट एजेंसीज को अक्रॉस ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड। सो यू कैन गो टू देयर वेबसाइट NZTA के एंड आप भी अपना जो ओपिनियन है इसके बारे में, आपको क्या लगता है कि दिस कोन बी अ गुड या फिर इसके क्या ड्रॉबैक हो सकते हैं, जो भी आपका फीडबैक है एक्चुअली में वहाँ पर आप ज़रूर प्रोवाइड कर सकते हैं सो दैट ऑफिशियल्स तक आपका जो फीडबैक है ये ज़रूर पहुँचे। पब्लिक कंसल्टेशन ओपन है अनटिल 12th of August। सो डिजिटल ड्राइवर लाइसेंस जो है ये ऑप्शनल रहने वाले हैं, कंपल्सरी नहीं रहने वाले। प्राइवेसी फोकस्ड डिज़ाइन जो है इसमें ये अलाउ करने वाला है यूजर्स टू शेयर ओनली द इंफॉर्मेशन विच इज़ रिक्वायर्ड। सो फिज़िकल ड्राइवर लाइसेंस जो है ये अभी भी एक्सेप्ट होंगे, इसके बाद भी एक्सेप्ट होंगे। सो ये काइंड ऑफ जस्ट एक ऑप्शनल ऑप्शन जो है ये आपके लिए रहने वाली है।

0: ब्रेकफास्ट शो विद वीजे एंड पूजा।
1: पूरी प्लानिंग से आए हैं, शत प्रतिशत तुमको सुबह यहाँ से ले जाएंगे।
2: Those people who live around the Hunua area, वहाँ पर 1 degree है टेम्परेचर।
3: जितने भी लोग इस इलाके में हैं, एंजॉय करते रहे आप। वेस्ट साइड है ना, वेस्ट साइड ऑफ ऑकलैंड है ये। I have lots of fun basically with the cold weather।
2: कौन है?
3: हुनुआ और वेटाकरे।
2: अच्छा, हुनुआ वेस्ट में।
3: किधर है हुनुआ?
0: The Breakfast Show with Vijay and Pooja.

0: Weather update brought to you by Go Bananas Childcare, where learning is fun. Call 0800 462626.
1: मौसम के हालचाल मेट सर्विस के अनुसार इस समय टेम्परेचर बाहर का 15.2 डिग्रीज और आज का ओवरनाइट 10 डिग्रीज टेम्परेचर रहने वाला है. मौसम वॉज ऑलमोस्ट गुड टुडे. कल का वेदर और वीकेंड का वेदर भी अच्छा खासा सनी ब्राइट रहने वाला है. सनसेट आज का 5:25 पर.
2: Drive Show with Sandy and Rusby, brought to you by Beds R Us. Sleep easy for less at Beds R Us Manugo and Pukekohe. Sleepyhead Sleep Easy Queen Beds from only $7.99. On sale now.
0: Super Se Upar, brought to you by Reliance Ventilation Systems Limited. The Drive Show with Sandy and Rusby.
3: Masti karenge, mauj katenge, garda paar denge.
1: चार बज के 3 मिनट हो चुके हैं. अ वेरी वेरी गुड आफ्टरनून टू यू. ड्राइव शो आपके लिए शुरू हो चुका है. यू हमिंग अलॉन्ग विद सैनी. रुजबे यहाँ पे नहीं है. अगले हफ्ते थोड़े टाइम के लिए वो शायद यहाँ पे शामिल हो जाएगा. विल कीप यू अपडेटेड. बट बिकॉज वो ब्रेकफास्ट शो में आपका साथ दे रहा है सुबह 6 से 10 के बीच में, सिंस विजय एंड पूजा इज अवे. सो कैसे हैं आप और आपका डे आज का कैसा जा रहा है? इट इज़ 16 जुलाई. सो अगर आज अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं, वेरी हैप्पी बर्थडे टू यू. अगर आज आपकी एनिवर्सरी है तो अ वेरी वेरी हैप्पी एनिवर्सरी टू यू एज वेल. सो अगर किसी को शाउट आउट देना है तो मैसेज अभी से कर सकते हैं. यहाँ पे 5599 इज़ द नंबर. इस आवर में आपके लिए करण औजला का गाना प्ले होने वाला है. सो स्टे ट्यून्ड. वो गाना कभी भी प्ले हो सकता है. जैसे ही करण औजला का गाना प्ले होता है आपको करना क्या है, KA गाने का नाम और अपना नाम लिख के भेजना है 5599 पर. एंड आपका नाम इस ड्रॉ में शामिल हो जाएगा जहाँ पे करण औजला के शो के लिए आपके पास डबल पास आ सकता है. सो करण औजला अपना पी पॉप कल्चर वर्ल्ड टूर लेके यहाँ पे बहुत ही जल्दी पहुँच रहे हैं. स्पार्क अरीना में इनका शो होने वाला है 25 अगस्त को. सो अगर आपने टिकट्स का वेट नहीं करना चाहते तो जल्दी से खरीद लीजिए. hum.rova.nz पे जाके आपको स्क्रॉल डाउन कीजिए टिकट की जो डिटेल्स है शो के बारे में, ये आपको पता चलेगा. अदरवाइज़ यू कैन गो टू livenation.co.nz, वहाँ पे जाके भी अपने टिकट्स आप बुक करवा पाएंगे.

0: 2027, एक कहानी जो बदलेगी आपकी जिंदगी।
1: रुजबे, टिकट्स बुक हो गए
2: तो फिर देर किस बात की? बाली बुला रहा है,
1: सनसेट, बीच क्लब और थोड़ा सा सुकून भी।
2: लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। बैंकॉक में होगा हमारा असली तशन,
1: टुक टुक स्ट्रीट फूड और रातों की रंगीन दुनिया भी।
3: एक बार तो जाने चाहिए थाईलैंड।
4: हेलो एवरीबॉडी।
0: दो शहर, एक सफर और यादें जो रहेंगी हमेशा।
5: थोड़ा घूमे आओ, अच्छा लगेगा आपको, मन बहल जाएगा आपका भी।
0: टेक्स्ट ड्राइव ऑन 5599 फॉर दी ऑल इंक्लूसिव टोल प्राइस, क्योंकि ये कहानी अब आपके साथ लिखी जाएगी। बाली एंड बैंकॉक गेटअवे विद सैंडी एंड रुजबे, ओनली ऑन हम।
6: अरे बबीता, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी गुरुज नंबर यार।
7: क्यों, क्या हुआ?
6: मुझे अर्जेंट काम से फीजी जाना था, $20,000 चाहिए थे। बैंक गई तो इतने डॉक्यूमेंट्स मांगे कि बस पूछो ही मत। एक हफ्ता हो गया, नो रेस्पॉन्स। फिर तुमने गुरु का नंबर दिया और बस अगले दिन पैसे मेरे अकाउंट में। गुरु तो हो जा शुरू वाला काम है।
0: गुरु कैंडोला ऑफ लॉजिक फाइनेंस, अ हाउसहोल्ड नेम इन फाइनेंस एंड इंश्योरेंस इंडस्ट्री। कॉल 0800 लॉजिक जी, दैट्स 0800-564-424।
8: ओ हीरो, कौन सी नई गाड़ी ले रहा है अब?
9: ब्रो, वेस्ट सिटी ओमोडा जेको गया था। फुल फिल्मी एंट्री, ओमोडा C5 फ्यूचरिस्टिक, जेको J7 एलिगेंट और ओमोडा E5 और ओमोडा 9 का क्या ही कहना।
8: डायलॉग तो सॉलिड है, ऑफर क्या मिला?
9: ओमोडा जेको की रेंज पे मिल रहा है अप टू $4,000 ऑफ।
6: जिमी टेलर और टीम के साथ पाओ अपना नेक्स्ट स्टाइल स्टेटमेंट। विजिट हेंडरसन या वेस्टगेट शोरूम और westcityautogroup.nz। टीज़ एंड सीज़ अप्लाई। What if your next holiday wasn't just a holiday,
0: but the adventure everyone talks about?
6: Imagine chasing waterfalls,
0: wandering lush rice terraces,
6: catching unforgettable sunsets,
0: and relaxing at iconic beach clubs.
6: Then racing through the buzzing streets in a tuk-tuk,
0: discovering incredible temples,
6: tasting world-famous street food.
0: Travel with Sandy and Rusby as they explore the best of Bali and Bangkok with an amazing group of listeners. Text DRIVE to 5599 for the all-inclusive tour price.
10: The Club Plus Smart Shopping Buddies are here to help you shop smarter at New World, Pack and Save and Four Square. Go to clubplus.co.nz to meet yours.
11: Discover the magic at Go Bananas Childcare, जहां आपके बच्चे सीखेंगे in a fun way. With 19 branches across Auckland and Waikato, हम हमेशा आपके पास हैं.
0: Go Bananas Childcare is now offering 30 hours for just $10 per week for all ages.
11: तो जल्दी join करें to enjoy these special offers. और सबसे खास बात, Go Bananas Childcare Beachlands is now open and offering 12 months completely free for a limited time. तो देर मत कीजिए. Call 0800-46-26-26 today.
0: Available at selected branches. T's and C's apply.
12: At Specsavers Winter Sale, get 50% off lens options when you get two pairs from the $169 range or above. So you could get your hands on our smudge-resistant lenses. Or for a change, try Light Reactive with 50% off. Hurry, sale ends August 1st at Specsavers. Conditions apply.
13: Are you ready to go home?
0: The Drive Show with Sandy and Rusby, brought to you by Beds R Us. Sleep easy for less at Beds R Us Manukau and Pukekohe. Sleepyhead Sleep Easy Queen Beds from only $7.99. On sale now.
1: Super Se Upar, brought to you by Reliance Ventilation Systems Limited.
14: 4:17 at the moment ho chuke hain Super Se Upar filhal aap yahan pe sun rahe hain. You're humming along with Sandy right now. And agar events ke baare mein baat kar rahe hain, bahut sare events hone wale hain. Garba ka festival shuru hone wala hai guys, so get ready. Apne kapde wagaira jo aapne khareed liye hain ya fir nahi khareede hain, taiyar rakhiyega, because बहुत ही जल्दी आपकी सुपर सिटी में राज गढ़वी आके लाइव परफॉर्म करने वाले हैं. लोटस प्रोडक्शंस, श्री इवेंट न्यूजीलैंड, विनय मेहता एंड प्रांशी ग्रुप आपके लिए गरबा विद राज गढ़वी लेके आ रहे हैं, जहां पे आप इलेक्ट्रिक एनर्जी एक्सपीरियंस करेंगे. एंड ये इवेंट होने वाला है 1st of August को महात्मा गांधी सेंटर में. एपिक सेलिब्रेशन होने वाली है म्यूजिक, डांस एंड ट्रेडिशन की. टिकट्स बहुत ही जल्दी जा रहे हैं, अपनी टिकट्स भी खरीद लीजिएगा जल्दी से. आपको eventstickets.co.nz पे जाके अपनी टिकट्स को बुक करना है. इट्स इवेंट्स टिकट्स, तो एस दोनों में है, इवेंट्स में भी और टिकट्स में भी. सो eventstickets.co.nz पे जाएगा एंड देन यू कैन बुक योर टिकट्स. महात्मा गांधी सेंटर में ये एकदम हाउसफुल जाने वाला है, सो मेक श्योर कि अपनी टिकट्स जो है ये आप टाइम पर ही बुक कर रहे हैं. और वैसे भी ऐसे इवेंट्स आप मिस आउट नहीं कर सकते हैं, बिकॉज़ अमेजिंग ये रहता है जहाँ पे फुल ऑन एंटरटेनमेंट भी आपके लिए होता है। एंड हमारा नया पॉडकास्ट जो है ये भी जाके ज़रूर सुनेगा। सो आई हैव ट्राइड क्रिएटिंग अ डिफरेंट चैप्टर्स एक्चुअली में इस पॉडकास्ट को लेके। यू नो बहुत इंटरेस्टिंग बातें हमने शनील लाल के साथ की है। शनील लाल जो है ये, इनके बारे में आपको एक्चुअली मैं बता देती हूँ अगर आपको नहीं पता है, ये एक एक्टिविस्ट भी है LGBTQ को लेकर भी, और भी बहुत सारे मुद्दों के ऊपर एक्चुअली में ये अपनी आवाज़ उठाते हैं पार्लियामेंट तक। एंड बहुत बार इनकी आवाज़ सुनी भी गई है। रेसिज्म के ऊपर इन्होंने बहुत बार बोला है। एंड यू नो अबाउट रिप्रेजेंटिंग कम्युनिटी, साउथ एशियन कम्युनिटी, इसके ऊपर उन्होंने बहुत ही बार स्टैंड लिया है। एंड स्पेशली LGBTQ के राइट्स के बारे में, एंड कन्वर्जन थेरेपी को इन्होंने बैन करवाया था एक्चुअली में। एंड इसके बारे में भी बहुत कुछ इन्होंने इसमें शेयर किया है। अपने आप को ये एज अ ट्रांसजेंडर आइडेंटिफाई करते हैं। एंड इस पॉडकास्ट में ना इन्होंने बहुत सारी बातें शेयर की है। पटिशन्स जो है अक्सर हमारे पास जो आती है, मतलब पटिशन्स किसी काम की होती है कि नहीं होती है, इसके बारे में इन्होंने बताया। कन्वर्जन थेरेपी क्या होता था, प्यूबर्टी ब्लॉक्स, ये तो वर्ड ही मैंने पहली बार सुना था, ये क्या होता है और इसको कैसे यहाँ पे यूज़ किया जाता था। न्यूजीलैंड में भी एक टाइम पर होमोसेक्सुअलिटी जो थी ये बैंड थी, सो उसके बारे में भी इन्होंने बात की। एंड ऑल्सो यू नो एक हमने बीच में सुना था बहुत ज़्यादा कि समवन इज़ आइडेंटिफाइंग देमसेल्फ एज अ टेबल, समवन इज़ आइडेंटिफाइंग देमसेल्फ एज अ कोई क्रिएचर, कोई एनिमल। इसके पीछे रियलिटी क्या है, इसके पीछे स्टोरी क्या है, ये भी एक्चुअली में इन्होंने शेयर की। इन्होंने वो रियलिटी इसमें बताई है जो नहीं पता थी। हम अक्सर चीज़ें पढ़ लेते हैं और उसके ऊपर हम बिलीव करना शुरू कर देते हैं, तो इन्होंने कुछ अलग रियलिटी इसमें बताई है। एंड उन्होंने ऑल्सो फोबियाज के बारे में यू नो बहुत सारी चीज़ें इन्होंने शेयर की है। आइडेंटिटी को लेके बहुत सारी चीज़ें जो है ये इन्होंने शेयर की है। थोड़ा सा बिट मैं आपको यहाँ पे सुनाती हूँ इनका।
4: Racism is a structural issue that affects people of color negatively. Then why can't you understand homophobia or sexism 100%. And transphobia is the same? Because if someone's racist to you and someone calls you the N-word, or someone tells you to go back to where you came from, or if someone tells you you don't belong here, you feel angry.
14: Yeah.
4: But why are you justified in feeling angry when someone comes at you for your identity, but you think that someone else's identity should therefore be up for debate, right?
14: Yeah.
4: So I often think, you know, if you're willing to open other people's identity and their right to exist up for debate, then you should be open to having your identities and your right to exist and your human rights up for debate. And I think if you kind of open that conversation up to the Indian community or the South Asian community, everyone goes, no, nothing's wrong with my culture, nothing's wrong with my religion, but, you know, those ones, they need to be fixed. And I often think of this as, you know, I think the real problem that we have as a society is a class issue and not an identity issue. And I think that the ruling class, who hoard more than 50% of our wealth, have turned working people against each other, and they've done it on the basis of our identity. So if a Hindu is busy blaming a Muslim for the world's problems, and the Muslim is busy blaming the gays for the problems, the gays are busy blaming the immigrants for the problem, our solidarity as a working class will never solidify, and therefore we will never kind of overthrow the ruling class. And
14: so aise bahut baatein inhone share ki hai, so isliye ye podcast sunna bahut zyada zaruri hai. Kai bar kya hota hai na, kisi aur ka point of view jana bahut zaruri hota hai, kisi aur ka perception jana bahut zaruri hota hai. Hame bachpan se jo padhte aaye hain, jo dekhte aaye hain, jo aaspaas hota hai, us way se hum grow up hote hain. And

0: पर्सन जो सबको रिप्रेजेंट करते हैं, एंड स्पेशली ट्रांसजेंडर और LGBTQ राइट्स के लिए ये बहुत ज़्यादा लड़ते भी हैं. सो मेक श्योर कि ये पॉडकास्ट आप ज़रूर सुनिएगा, इट्स अ मस्ट लिसन पॉडकास्ट. सो जब आप सुनेंगे तो प्लीज़ अपनी फीडबैक यहाँ पे आप ज़रूर शेयर करना कि आपको ये पॉडकास्ट सुनने के बाद क्या फील हुआ, आपका कोई अलग कोई परसेप्शन था वो अगर चेंज हुआ, डू शेयर द फीडबैक.
1: Hollywood's most wanted.
2: गुंडी खड़ जाओ या सीधा अंदर आओ.
3: मैं लाऊं अपना A game.
1: Brought to you by Indelible Homes. Build your dreams.

4:31 एट द मोमेंट यहाँ पे हो चुके हैं एंड काफी लोगों ने मैसेज तो कर दिया है करण औजला का गाना सुन के, बट ओनली रिक्वेस्ट मैं बोलती हूँ आपको कि काफ़ी लोगों ने टाइटल लिखा है एंड लिखा है बाय करण औजला. सो प्लीज़ जिन्होंने इस वे से मैसेजेस यहाँ पे किए हैं आप के ए कीवर्ड के साथ अपना मैसेज दोबारा से ज़रूर भेजिए, अदरवाइज़ आपकी एंट्रीज जो है ये हमारे पास यहाँ पे फिल्टर नहीं हो पाएगी. फिर और भी बातें करेंगे और भी इवेंट्स जो आपके सुपर सिटी में होने वाले हैं इसके बारे में भी आपको बताऊंगी. लेकिन उससे पहले बाली एंड बैंकॉक अगर आप जाना चाहते हैं मेरे और रुजबे के साथ, विच इज़ March 2027 ईस्टर वीकेंड पे हम ये ट्रिप करने वाले हैं. सन टूअर्स ने इसका अरेंजमेंट किया है पूरा का पूरा एंड उन्होंने क्या किया है, एक पैकेज डील बेसिकली उन्होंने बनाई है जहाँ पे फ्लाइट टिकट्स है, अकोमोडेशन है 5-star में, तीनों टाइम का खाना है, एक्टिविटीज़ है वहाँ पे. बेसिकली आपको सिर्फ अपने शॉपिंग के लिए पैसे लेके जाने हैं, रेस्ट एवरीथिंग इज सॉर्टेड. अगर आपको शॉपिंग करनी है तो बाकी सब कुछ एक्चुअली में सॉर्टेड रहने वाला है इसी पैकेज में. एंड वो एक्चुअली में इसी सैटरडे को एक यू नो कैचअप भी करने वाले हैं एक रेस्टोरेंट में जहाँ पे चाय एंड स्नैक्स विल बी अवेलेबल. तो उन्होंने इनवाइट किया है कि अगर आपके कोई क्वेश्चंस है तो आप वहीं पे एक्चुअली में उनसे लाइव पूछ सकते हैं सो दैट आपके क्वेश्चंस को वो आंसर करें एंड देन यू कैन सी अपने पैकेजेस को आपको कैसे अगर ख़रीदना है तो उसकी पैकेज डील आपको कैसे करनी है वो सब कुछ आप उनके साथ एक्चुअली में सॉर्टेड कर सकते हैं. सो टू कॉन्टैक्ट सन टूअर्स आप क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली उन्हें कॉल भी कर सकते हैं बट मेरे को लगता है बेस्ट तरीका आपके लिए रहेगा कि आप ड्राइव लिख के भेजिए 5599 पर. सो वहाँ पे एक फॉर्म आपको मिलेगा जो आपको एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट का फॉर्म फिल करना है, उसमें आपका नंबर चला जाएगा तो आपको वो टेक्स्ट कर देंगे. आपको एक तो अटेंडरी भी भेज देंगे पूरी की पूरी प्राइसेस के साथ एंड देन आपको वो टेक्स्ट भी कर देंगे सो दैट आप कैचअप कर सके इस सैटरडे को जहाँ पे यू कैन जस्ट गो एंड हैव अ चैट विद हिम कि इस पैकेज में और क्या क्या हो सकता है. यू नो एक इन्फॉर्मेशन जो है आपको इन फ्रंट होके वहाँ पर मिल जाएगी. सो वो भी आप उनके साथ एक्चुअली में इसी सैटरडे को कर सकते हैं. बट टू फिल योर एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट कि आप इंटरेस्टेड है इसमें, आपको ड्राइव लिख के भेजना है 5599 पर एंड फिल द फॉर्म जो आपको ऑटो रिप्लाई में मिलेगा.

बीते लम्हों को अब हर पल जिए हम रिवाइंड के साथ। एक ऐसा सफर जहां हर गाना एक याद है, हर सुर एक कहानी। हम रिवाइंड, जहां संगीत सिर्फ सुनाई नहीं देता, महसूस

0: Rewind. Sif Rovapar.
1: Accurate traffic.
2: Showered dome, shower tops.
3: Showers overnight for Auckland, a low of 10. On the northern, it's heavy between Esmond and the Harbour Bridge. The northwestern is slow heading west around Rosebank. The southern, slow northbound from Highbrook Drive to Green Lane. The other direction, Grafton to Prince's Street. The southwestern, there's debris in the southbound lanes at Mangere Bridge just before the Nielsen Street on-ramp, so extra care required if you're travelling there.
2: Eliminate shower steam by simply fitting a shower dome. Showerdome.co.nz.
4: Discover the magic at Go Bananas Chaike. जहां आपके बच्चे सीखेंगे इन अ फन वे विद 19 ब्रांचेस अक्रॉस ऑकलैंड एंड वाइकाटो हम हमेशा आपके पास हैं
5: गो बनानास चाइल्ड केयर इज नाउ ऑफरिंग 30 आवर्स फॉर जस्ट $10 पर वीक फॉर ऑल एजेस
4: तो जल्दी ज्वाइन करें टू एंजॉय दी स्पेशल ऑफर्स और सबसे खास बात गो बनानास चाइल्ड केयर बीचलैंड्स इज नाउ ओपन एंड ऑफरिंग 12 मंथ्स कंप्लीटली फ्री फॉर अ लिमिटेड टाइम तो देर मत कीजिए कॉल 0800 46 26 26 टुडे
5: अवेलेबल एट सिलेक्टेड ब्रांचेस टीज एंड सीज अप्लाई
6: At Flooring Extra, they don't just sell floors, they transform homes. From luxurious carpets to show-stopping hard flooring, you get expert advice and installers who get it right the first time. They make it effortless. Visit in-store or they'll bring the showroom to you. Measure, quote, install, done. All backed by solid warranties for total peace of mind. Visit your local Flooring Extra or book your free in-home consultation today.
7: Flooring Extra. Adore your floor.
8: क्या बात है उस खाने में जो पूरे घर को डाइनिंग टेबल पर ले आए वो खुशबू और वो असली मसालों का स्वाद ब्रिंग होम एवरीवन्स फेवरेट शान फूड्स रेसिपी मिक्सेस बॉम्बे बिरयानी हो या बटर चिकन कोरमा या चना मसाला रेसिपीज चाहे वेजिटेरियन हो या नॉन वेजिटेरियन शान रेसिपी मिक्सेस हर डिश को बिल्कुल घर जैसा बनाती है तो इंतजार किस बात का आज ही अपने नजदीकी सुपरमार्केट से शान रेसिपी मिक्सेस खरीदिए शान फूड्स असली स्वाद हर घर के
9: Stuck for dinner ideas? Faro Kitchen has you covered with fresh, chef-created meals that are ready in no time. Dive into rich chicken tikka with creamy, tangy sauce and aromatic spices. Or classic smoked fish pie. Tender, flaky fish, buttery bechamel and a golden kumara mash. Faro Kitchen's oven-ready meals make wholesome dinners quick and stress-free. Available online or at your local Faro store. Just pop it in the oven and relax. Faro Kitchen, dinner made deliciously easy.
8: पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हो या आप फ्यूचर की तरफ शिफ्ट कर रहे हो स्मार्ट चॉइस अब सिंपल है वे सिटी GWM हैवल हैवल का हाइब्रिड और प्लग इन हाइब्रिड रेंज पे डिस्काउंट्स और सिर्फ 4.95% फाइनेंस ऑफर्स आज ही वे सिटी ऑटो ग्रुप पहुँचे और जिमी टेलर और उनकी टीम से मिले लिमिटेड टाइम ऑफर टीज एंड सीज अप्लाई फॉर मोर इन्फो विजिट वे सिटी ऑटो ग्रुप .nz और सर्च फॉर वे सिटी ऑटो ग्रुप

0: NZ PMI.
1: 443 एट द मोमेंट यहाँ पे हो चुके हैं. आपको बता दूं कि इसी सैटरडे को 18 जुलाई को द ग्रेट कॉमेडी नाइट होने वाला है. कृष्णा अभिषेक, राजीव ठाकुर ये दोनों लाइव परफॉर्म करने वाले हैं, सेंट्रल स्टेज लेने वाले हैं. नॉन स्टॉप लाफ्टर रहेगा, परफेक्ट फैमिली एंटरटेनमेंट है. लिमिटेड नंबर ऑफ सीट्स आर अवेलेबल, सो आफ्टर पे ऑप्शन भी अवेलेबल है. वॉट यू हैव टू डू इज बुक योर सीट्स नाउ. 0210432720 पर कॉल कर सकते हैं. अगर आपका कोई भी सवाल है तो वहाँ पे आप सवाल का आपको जवाब ज़रूर मिल जाएगा. विक्ट्री कन्वेंशन सेंटर में इवेंट होने वाला है इसी सैटरडे को. सो टिकट्स बुक करने के लिए अदरवाइज जस्ट गो टू द वेबसाइट bookmyevent.co.nz एंड वहाँ पर जाके अपनी टिकट्स आप बुक करवा सकते हैं.

0: rock and roll. Download Rova to listen Hum 80s Jukebox.
1: Hum, accurate traffic.
2: The LifeWise Trust Big Sleep Out. Please donate now.
3: Showers overnight for Auckland, a low of 10 degrees. On the northern, it's pretty slow north of the Harbour Bridge between Esmond and there. The northwestern, it's slow from Waterview to Rosebank. The southern, heavy traffic northbound from Highbrook Drive to Green Lane and southbound Grafton to Highbrook Drive. Southwestern, still some debris in the southbound lanes at Mangere Bridge just before the Nielsen Street on-ramp.
2: Support Auckland's homeless by donating at bigsleepout.org.nz.
4: Got an event on the calendar? Then your signage should already be in motion. Speedy Signs produces pull-up banners, display walls, teardrop flags, and expo signage that grabs attention fast. They handle design, production, and install, so you can focus on conversations and conversions. Big presence, zero last-minute panic. If your event is coming up, now's the time. Don't leave it to the last minute. Call them now on 0800 Speedy or visit speedysigns.co.nz.
5: Parents, I see you. You need to make a quick pop to the shops, then boom! One kid has a last minute birthday invite, another kid has gum in their hair, and you've got work calls up the wazoo. That quick trip to the shops? Not happening. Don't go out. Tap in. Get Prezi's cards and hair stuff from the warehouse, and dinner from your local delivered to your door with DoorDash. Now that's a good call. Dash!
6: Bro, तू West City GWM Havel गया था क्या?
7: हाँ भाई, Jimmy Taylor और टीम ने full royal treatment दिया. Julian Hybrid, classy. H6 Hybrid, boss level. और Tank 300, total beast. Deal क्या मिला? 4.95% finance deal. और वो भी सिर्फ West City GWM Havel में.
8: Jimmy Taylor और टीम के साथ पाओ अपनी next adventure machine. Visit Westgate या Henderson showroom या check out westcityautogroup.nz. West City GWM Havel, where your next adventure begins.
9: Everyday burn hazards are hotter than they look. Act fast. Cool burns under running water for 20 minutes. And for serious or large burns, always call 111. Brought to you by the Burn Support Group and the MediaWorks Foundation.
10: From Christopher Nolan.
11: No one could stand between me and home.
10: Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, with Zendaya and Charlize Theron. The Odyssey, in cinemas now. Rated M.
12: At Woolworths, we go to great lengths to ensure only the finest quality meat makes the cut. Like our frozen lamb leg roast, bone in, just $16.99 a kg. That's the fresh food feeling at Woolworths. T's and C's apply.
13: Grab a bargain at Mitre 10 Mega Westgate or Henderson. Score 20% off selected wet and forget, 20% off cold air panel or oil column heaters, or selected accent interior paints, save $79 each. Only at Mitre 10 Mega Westgate or Henderson.
14: Hum, time check. Hum News, brought to you by Logic Finance Limited, changing lives with logic.
15: Evening, KM Adams here with the latest at 5. Firefighters will be on strike tomorrow between midday and 1pm. All emergency calls will still be received and responded to during the strike period. However, response times will be delayed in impacted areas as volunteer crews will be responding from the next closest location. The US has reinstated its naval blockade targeting Iran. It has also intensified overnight strikes in response to Tehran's attacks on ships passing through the Strait of Hormuz. Officials claim hundreds have been injured. The US Department of Defense is planning to offer annual testosterone deficiency screenings for soldiers 30 and older. Secretary Pete Hegseth says those diagnosed will have the option to undergo hormone replacement therapy.
16: We have a sacred duty to maintain that advantage, which is why we must constantly look for new ways to optimize your performance, your resilience, and your long-term health.
15: The seabird which tested positive for the country's first case of bird flu has been euthanised. Sir Sam Neill's agent of 19 years has confirmed pneumonia was the actor's cause of death at 78. Philip Grenz also says the family is planning to go forward with a private memorial at his farm in central Otago. Four changes to the All Blacks starting 15 for Saturday's clash with the Irish, both locks and at centre and wing. There's also a positional switch. Tupou Vaa'i, who played at lock last week, will start on the blindside flank. There are also five changes on the bench. Rugby with shift four. And the last of the four men's golf majors of the year tees off in just on half an hour. The 154th Open Championship at Royal Birkdale.
14: Sports News. Brought to you by Sona Sansar, Papatoy and Mount Roskill. The beat of Bollywood.
17: World's best, hamari koi branch nahi hai.
14: Weather update brought to you by Go Bananas Childcare, where learning is fun. Call 0800 462626.
18: मौसम के हालचाल मेट सर्विस के अनुसार इस समय टेम्परेचर बाहर का 13.7 डिग्रीज और आज का ओवरनाइट 10 डिग्रीज टेम्परेचर रहने वाला है. मौसम आज का ऑलमोस्ट फाइन गया, लेकिन कल थोड़ा सा क्लाउडी सुबह रहने वाला है. रेस्ट ऑफ द डे शुड बी गुड. वीकेंड साउंड्स रियली गुड.
19: द ड्राइव शो विद सैंडी एंड रुस्बी ब्रॉट टू यू बाय बेड्स आर अस. स्लीप इजी फॉर लेस एट बेड्स आर अस मनुगो एंड पुकेकोई. स्लीपी हेड स्लीप इजी क्वीन बेड्स फ्रॉम ओनली $7.99 ऑन सेल नाउ.
14: Power Drive at 5. Brought to you by Focus Kitchens. Quality kitchens with modernized, customized designs for your dream kitchen. The Drive Show with Sandy and Rizbe.
20: Masti karenge, mauj katenge, garda paar denge.
18: 5:03 ho chuke hain. A very very good evening to you. You're humming along with Sandy right now. Power Drive at 5 aapke liye yahan pe shuru ho chuka hai. और इस समय पर काफ़ी न्यूज़ में है, सोनम वांगचुक अपने 18th डे ऑफ फास्ट में जा चुके हैं. सो इन्होंने यू नो इनडेफिनिट जो फास्ट इन्होंने हंगर स्ट्राइक एक्चुअली में करके रखा है जंतर मंतर में इन न्यू दिल्ली. 18th डे में पहुंच चुके हैं ये. एंड अभी तक वैसे इनके हेल्थ, मैंने इनकी वीडियो देखी एक्चुअली में, आज ही मैंने सुबह वीडियो देखी वेयर ही इज़ टॉकिंग एक्चुअली. एंड इस वीडियो में इन्होंने एक मैसेज दिया कि उनके पास बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं, बहुत सारे लोग मिलने आ रहे हैं. एंड इनफैक्ट कोर्ट में पिटीशन फाइल हुई है उनको हंगर स्ट्राइक से निकालने के लिए, उनके हेल्थ के कंसर्न्स के लिए. बड़ी सेट की एज फार एज उनके जो मेडिकल चेकअप्स हुए हैं वो 2-4 दिन में तो नहीं मरने वाले हैं. एंड अभी 2-4 दिन तो और वो ईजिली निकाल सकते हैं. एंड ऐसा उन्होंने बोला है. और ये भी बोला है कि वो इसलिए हंगर स्ट्राइक नहीं तोड़ना चाहते हैं क्योंकि फिर एक बहुत ही रॉन्ग एग्जाम्पल सेटअप हो जाएगा कि ऐसे तो कोई भी उठ के कल बैठेगा हंगर स्ट्राइक पे और कभी भी तोड़ सकता है. तो अभी तक वैसे कोई भी ऑफिशियल्स जो है सो फार उनके साथ मीटिंग के लिए नहीं आए हैं, लेकिन बहुत लोग उनको सपोर्ट करने के लिए वहाँ पे ज़रूर पहुँच रहे हैं. अब धीरे धीरे जाके नाउ व्हेन सेलिब्रिटीज़ एंड अदर बिग पीपल्स दे आर रियलाइजिंग कि सिचुएशन कितनी सेंसिटिव है. एंड सिंस क्योंकि स्टूडेंट्स वहाँ पे सब बैठे हुए हैं, बच्चे वहाँ पे बैठे हुए हैं, टीनेजर्स वहाँ पे बैठे हुए हैं, जैसा भी मौसम हो रहा है दे आर जस्ट सिटिंग देयर एंड सपोर्टिंग हिम ओवर देयर. सो काफ़ी लोग वहाँ पे गए हैं. यू नो शबाना आज़मी वहाँ पे पहुँची एंड देन नसीरुद्दीन शाह ने सपोर्ट जो है ये अपना जाहिर किया. सोनी राजदान एक्चुअली में वो भी वहाँ पे पब्लिकली पहुँची एंड मैनी अदर एक्टर्स अभय देओल. तो जिनको अभी ना ज़्यादा टेंशन नहीं है बॉलीवुड में कि हम अगर किसी को सपोर्ट करते हैं तो हमें काम नहीं मिलेगा या समथिंग लाइक दैट, वो सब लोग जो है पहुँचे. अनुराग कश्यप बीन वेरी वोकल अबाउट इट. वीर दास की मैंने वीडियो देखी, आज मैंने वरुण ग्रोवर की भी वीडियो देखी. सो मैनी सच पीपल्स. शशि थरूर ने एक्चुअली में एक हार्ट फेल्ट ओपन लेटर भी लिखा है प्लीडिंग हिम टू एंड द फास्ट बिकॉज ही सेड कि वो जिस कॉन्शियस को जगाने की कोशिश कर रहे हैं वो कॉन्शियस इतनी जल्दी जगने नहीं वाली है. इस वजह से उन्होंने एक्चुअली में एक ओपन लेटर लिखी है. बट लेट्स सी क्या होता है बिकॉज ये हंगर स्ट्राइक वो तो नहीं तोड़ने वाले हैं बिल्कुल भी. एंड सो फार देर इज़ नो मीटिंग विद हिम येट. यू नो अगर हंगर स्ट्राइक्स के बारे में बात करते हैं, हिस्ट्री के बारे में बातें करते हैं, तो ऐसे पहले भी बहुत बार हुआ है. इफ़ यू गो बैक इन 1929, उस समय पर शहीद भगत सिंह ही इज़ होल्डिंग द रिकॉर्ड सो फार, जब उन्होंने कंटिन्यूस हंगर स्ट्राइक किया था 116 डेज का. सो दैट वॉज इन लाहौर सेंट्रल जेल उस समय पर. और हमने ये कहानी मूवीज़ में देखी है, हम तो कहानी बाद में मूवीज़ में देखते हैं. एंड देर इज़ सम जोक फ्लोटिंग अराउंड एज वेल कि आज तो सोनम वांगचुक के पास कोई जा नहीं रहा है, आमिर खान ने वो करेक्टर किया है वो वहाँ पे नहीं पहुँच रहे हैं, लेकिन कल को कुछ हो जाता है तो उनके ऊपर मूवी जो बनेगी उसमें हर कोई वो करेक्टर प्ले करना चाहेगा कि हम ये करेक्टर प्ले करने वाले हैं, एंड मूवी का नाम जल्दी से रजिस्टर वो कर लेंगे, ऐसा खैर होता है। एंड देन फास्टिंग में महात्मा गांधी ही हैड अ हंगर स्ट्राइक फॉर 21 डेज, सो इन्होंने सत्याग्रह जब किया था उस समय पे इन्होंने फास्टिंग की थी, एंड लॉन्गेस्ट फास्ट एग्जैक्टली वॉज 21 डेज एक्चुअली में, ही कम्प्लीटेड 3 डिफरेंट 21 डेज फास्ट एक्चुअली में, 24 में, देन 1933 में, देन 1943 में। एंड देन नाम आता है अन्ना हजारे का, जिन्होंने 13 दिन का फास्टिंग किया था 2011 में। सो ही वॉज द मॉडर्न फेस ऑफ एंटी करप्शन फास्ट इन इंडिया, जहाँ पे इन्होंने फास्ट रखा था। सो दैट वॉज अ कंटिन्यूस फास्ट दैट लास्टेड 13 डेज, लेकिन देन गवर्नमेंट ने उस समय पर बिल जो था पास कर लिया था। सो ये सब हो चुका है, लेकिन अगर हिस्ट्री में देखा जाए देर वॉज द वन लॉन्गेस्ट फास्ट एज वेल, दैट वॉज नॉट अ कंटिन्यूस वन, जहाँ पे उन्हें फोर्स फेड किया गया था, इट वॉज बाय आयरम शर्मिला, जिन्होंने 16 ईयर्स तक फास्ट रखा था, लेकिन उन्हें नेजल ट्यूब के जरिए फोर्सफुली फेड किया जाता था। एनीवे, सो अभी 18 डेज इन, सोनम वांगचुक, अन्ना हजारे को तो ऑलरेडी वो क्रॉस कर ही चुकी हैं, लेट्स सी कि कितनी देर वो अभी वहाँ पे रह पाते हैं, बिकॉज हिज हेल्थ इज़ रियली रियली बैड राइट नाउ। सो देखो क्या होता है आगे, इसके बारे में खैर यहाँ पे हम ज़रूर आपके साथ शेयर करते रहेंगे। मोर ओवर बिकॉज हमने इनकी मूवी देखी है 3 इडियट्स, मुझे लगता है कि आज कोई भी उठा के देखेगा ना, एवरीवन जस्ट लव दैट मूवी। उस मूवी जो कॉन्सेप्ट दिखाया गया था, मैनी पीपल रिलेटेड विद इट, एंड उस मूवी का जो मेन हीरो था आमिर खान, जिन्होंने वो जो रोल किया था, जिसकी लाइफ के ऊपर, जिसकी लाइफ से इंस्पायर्ड वो रोल था, दैट इज़ द गाय सोनम वांगचुक।

0: Co.nz.
1: 5:20 हो चुके हैं। फीफा वर्ल्ड कप के बारे में बातें करते हैं तो मेरी स्टार्टिंग की प्रेडिक्शन तो गलत हो गई। मैंने बोला था कि फ्रांस और इंग्लैंड जाने वाले हैं फाइनल में, वो तो दोनों नहीं गई, लेकिन मैं खुश हूँ कि अर्जेंटीना आगे चले गई है। सो या अर्जेंटीना वर्सेस इंग्लैंड एक हिस्टोरिक राइवलरी एक्चुअली में ये रही है। ये जो इनका सेमीफाइनल में क्लैश हुआ है, ये इनका सिक्स टाइम एक्चुअली में इन दोनों का क्लैश हुआ है। जो राइवलरी है बेसिकली दोनों के बीच में इज बोथ स्पोर्टिंग कंट्रोवर्सी एज वेल एंड एक जियोपॉलिटिकल हिस्ट्री भी है 1982 की वॉर को लेके। इनफैक्ट वही अभी पंगा हुआ ना कि जब ये मैच जीते तो वन ऑफ द फैन जो थे अर्जेंटीना के, इन्होंने वो वॉर का जो फ्लैग था ये उन्होंने लहराया हुआ था वहाँ पे, जो एक्चुअली में थोड़ा मे भी उनको शायद बाद में फाइन हो सकता है, लेट्स सी। बट आइकॉनिक वर्ल्ड कप क्लैशेस इनके पहले भी हो चुके हैं। 1962 में इंग्लैंड वर्सेस अर्जेंटीना का जो मैच हुआ था, इंग्लैंड की जीत हुई थी। देन 1966 में अगेन इंग्लैंड की जीत हुई थी। 1986 में अर्जेंटीना की जीत हुई। 1998 में अर्जेंटीना की पेनल्टीज में जीत हुई थी। देन 2002 में इंग्लैंड की जीत हुई। एंड देन नाउ 2026 में, इसीलिए अर्जेंटीना इज़ क्वाइट हैप्पी कि इन्होंने अपना जो है थोड़ा इक्वल कर लिया है। सो फॉर अर्जेंटीनाज गोल्डन जनरेशन, डिफीट करना हिस्टोरिक राइवल को बैक टू बैक वर्ल्ड कप फाइनल्स में, एंड ये एक्चुअली में उनके लिए एक बहुत ही बड़ी बात है। बट आई एम मोर एक्साइटेड अबाउट दिस फाइनल जो होने वाला है। ये मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था, अर्जेंटीना वर्सेस स्पेन फाइनल होगा। स्पेन के बहुत फैंस हैं, अर्जेंटीना के बहुत फैंस हैं। विन प्रोबेबिलिटी फ़िलहाल स्पेन की 52% है, अर्जेंटीना की 48% है। वेल, इस गेम में भी अगर देखा जाए, जो आज का मैच भी हुआ था, इसमें भी अर्जेंटीना पहले नहीं खेली थी, सेकेंड हाफ में ही दे डिड क्वाइट वेल। सेकेंड हाफ में दे जस्ट शोड वट इज़ अर्जेंटीना अबाउट, लेकिन फर्स्ट हाफ में इट वॉज टोटली इंग्लैंड गेम। सो ये जो हेड टू हेड होने वाला है अर्जेंटीना वर्सेस स्पेन के बीच में, इससे पहले उन्होंने एक दूसरे को बस एक ही बार फेस किया है वर्ल्ड कप हिस्ट्री में, सो बैक इन 1966। सो इट्स गोना बी वेरी इंटरेस्टिंग एज वेल। लेकिन उससे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग एक और न्यूज़ है इस मैच को लेके जो दोनों के बीच में होने वाला है। एक फ़ोटो है जो बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है, मैंने हम के फेसबुक पेज पर पोस्ट की है। नाउ ये जो फोटो है, ये इसमें मेसी है फ्रॉम अर्जेंटीना एंड लुमेन वाल है फ्रॉम स्पेन। मेसी उस समय पर बहुत ही यंग थे, ही वॉज अबाउट 20 ईयर ओल्ड एंड ही इज़ होल्डिंग अ बेबी, और जो बेबी है वो लुमेन वाल है, सो स्पेन का प्लेयर। सो ही इज़ होल्डिंग अ बेबी एंड नाउ उस बेबी के अगेंस्ट वो खेलने वाले हैं। और ये फोटो एक्चुअली में बहुत ज़्यादा वायरल जा रही है। दिस इज़ ऑफ 2007, एक चैरिटी कैलेंडर फोटोशूट हुआ था यूनिसेफ का, जहाँ पे कुछ लोकल फैमिलीज उस समय पर आई थी एंड वहाँ पे ये जो फोटो थी ये क्लिक की गई थी। बट नहीं पता था कि जिस बेबी को उन्होंने पकड़ा हुआ है मेसी ने, इसी के अगेंस्ट वो एक दिन वर्ल्ड कप फाइनल में खेलने वाले हैं। सो फॉर दैट रीज़न ये जो फोटो है ये इस समय पर बहुत ज़्यादा वायरल जा रही है। सो लेट्स सी क्या होता है इस वर्ल्ड कप में। आपको क्या लगता है कि क्या होने वाला है?

5:31 एट द मोमेंट यहाँ पे हो चुके हैं. एंड व्हेन वाज द लास्ट टाइम आपने अपनी गाड़ी में कितने किलोमीटर्स आपकी गाड़ी चली है ये आपने चेक किया है. इफ यू आर ड्राइविंग राइट नाउ तो सामने तो आपकी नज़र जाती है ऑडोमीटर के ऊपर. सो अगर आपने चेक करो एंड बता सकते हैं कि कितने किलोमीटर्स आपकी गाड़ी सो फार चल चुकी है तो यहाँ पे शेयर कर सकते हैं कॉल करके या फिर मैसेज करके. मैं इसलिए पूछ रही हूँ बिकॉज ये आर्टिकल मैंने पढ़ा है. ये आर्टिकल है कि दिस पर्सन इसने 15 साल से ड्राइव की अपनी गाड़ी. एंड सो कार ने इसने सोचा कि क्यों ना कि अपनी गाड़ी जो है इसका जो 1 मिलियन किलोमीटर हिट होगा तो इसको मैं लाइव रिकॉर्ड करूं. सो द पर्सन वॉज लाइव रिकॉर्डिंग कि इसका 1 मिलियन किलोमीटर्स जो है ये हिट होने वाला है. ही वॉन्ट्स टू सी द मार्क ओवर देयर. सो वहाँ पे ऑलरेडी जो मार्क था वो 6 डिजिट्स में था 99999. सो जब वो मार्क किलोमीटर उसने पूरा किया गेस व्हाट क्या हुआ उस समय पर उसकी गाड़ी वापस 000 पर आ चुकी थी. वापस रोल बैक हो गई थी 6 जीरोज़ के ऊपर. सो दैट वाज क्वाइट अ शॉक उसके लिए भी. एंड देन पता चला कि उसकी गाड़ी जो थी वाज नेवर बिल्ट टू डिस्प्ले 7 डिजिट्स. सो वियर्ड है. एंड ये बंदा जो है ये 15 साल से एक ही गाड़ी चला रहा था. ही वॉज चेजिंग वन नंबर कि ये गाड़ी मुझे कभी बदलनी नहीं है बिकॉज ऑफ दिस वन नंबर आई वॉन्ट टू अचीव. बट देन स्टार्ट अगेन हो गया उसका तो 006 जीरोज के साथ. वेल आसिफ का कहना है कि उसकी गाड़ी सो फार चली है 51,993. वाओ इतना किलोमीटर्स जो है इनकी गाड़ी ने कवर किया है. आपकी गाड़ी ने कितना कवर किया है सो फार आप भी यहाँ पे इसके बारे में ज़रूर शेयर कर सकते हैं. एक्चुअली में काफ़ी जो जैपनीज़ कार्स होती हैं पुरानी जैपनीज़ कार्स 1980 से लेके जो 2000s तक की गाड़ी है इसमें टोयोटा होंडा निसान माज़दा मॉडल्स ये सब आते हैं उनका 6 डिजिट ओडोमीटर ही होता है. उसकी जो मैक्सिमम डिस्प्ले वो कर सकते हैं वो है 999999 किलोमीटर. उसके बाद ऑटोमेटिकली वो रोल बैक हो जाता है टू 000000. इवन जो क्लासिक कार्स होती है बहुत सारी मैन्युफैक्चर कंपनीज की दे हैव लाइक 5 या 6 डिजिट मैकेनिकल ऑडोमीटर वो भी 7 डिजिट तक नहीं जाते हैं. तो जब 7 डिजिट पहुंचता है तो देन वापस वो रोल बैक हो जाते हैं टू 0. एंड कुछ मॉडर्न डिजिटल डैशबोर्ड दे ऑल्सो प्रोग्राम विद लिमिट्स एज वेल. सो ऑल्दो मैनी नाउ सपोर्ट 7 डिजिट या ज़्यादा ही उससे लेकिन पहले की काफ़ी सारी ऐसी गाड़ियां हैं जो 6 डिजिट्स पे आके ख़त्म हो जाती है. अगर आपकी कोई गाड़ी है आपकी गाड़ी है अगर जो 6 डिजिट्स पे आके ख़त्म होती है तो उसके बारे में भी आप यहाँ पे शेयर कर सकते हैं. अ कार रीचिंग वैसे 1 मिलियन किलोमीटर इज़ रेयर बट व्हीकल्स जो फेमस होते हैं फॉर एक्सट्रीम माइलेज जिसमें टोयोटा लैंड क्रूजर आता है वॉल्वो है मर्सिडीज बेंज मॉडल्स है दे ऑफन बिकॉज जो इंजन एंड ड्राइव ट्रेन्स जो उसमें होती है द बिल्ट फॉर द लॉन्ग डिस्टेंस ड्यूरेबिलिटी. सो या आप बताएं आप भी यहाँ पे शेयर कर सकते हैं. रीटा का मैसेज आया है कि इनकी गाड़ी जो है अभी सिर्फ 5,000 चली. अरे वाह नई गाड़ी है इनकी ओके इसीलिए. सो आप भी यहाँ पे शेयर कर सकते हैं अपनी गाड़ी का किलोमीटर भी. एंड या आपने कभी नोटिस किया है कि आपकी गाड़ी में 7 डिजिट्स सपोर्ट करता है या फिर नहीं करता है उसके बारे में भी आप यहाँ पे शेयर कर सकते हैं.

0: Sleepy Head Sleep Easy Queen Beds from only $7.99. On sale now.
1: Power Drive at 5.
2: Brought to you by Focus Kitchens. Quality kitchens with modernized, customized designs for your dream kitchen.
3: पावर ड्राइव एट 5 फिलहाल आप यहाँ पे सुन रहे हैं. हमारा पॉडकास्ट जो है, हमने जो शनि लाल के साथ रिकॉर्ड किया है, ये भी आप ज़रूर सुनेगा. इट्स अ वेरी पावरफुल पॉडकास्ट आई विल से. शनि लाल के साथ जो हमने यहाँ पे रिकॉर्डिंग की है, वेल, इसके बारे में और भी इन्फॉर्मेशन मैं आपको दूंगी, लेकिन उससे पहले आपको एक इवेंट के बारे में जानकारी देती हूँ. राहत फतेह अली खान, वो आपकी सुपर सिटी में बहुत ही जल्दी आने वाले हैं. ट्रस्ट अरीना में इनका शो होने वाला है 25 जुलाई को, विच इज़ प्रेजेंटेड बाई जेके स्टार प्रोडक्शंस, गोट लाइव, ड्रीम्स एंटरटेनमेंट, सिमरन प्रोडक्शंस एंड शहजादा प्रोडक्शंस. टिकट्स खरीद लीजिएगा, बिकॉज ये एक ऐसा शो होने वाला है जो आप मिस नहीं करना चाहेंगे. बहुत ही सोलफुल शो होता है ये. dryticketsdotcom पे जाके अपने टिकट्स आप खरीद सकते हैं. मेरे पास जो गाड़ी के मैंने पूछा था कि आपकी गाड़ी कितनी जली है, आसिफ का मैसेज है कि उनकी गाड़ी सपोर्ट करती है 7 digit एज इट्स डिजिटल मीटर एंड पीपल हैव ऑलरेडी ओवर 1 million माइलेज इन USA. या US में तो मान सकते हैं. मीत का कहना है कि इनकी गाड़ी निसान है, हैज़ डन 400,000 प्लस. अभी ये ऑटोमीटर के सामने नहीं है तो एग्जैक्टली नहीं बता सकते, बट इज़ लुकिंग फॉरवर्ड टू 500,000 इन कपल ऑफ ईयर्स. वेल, पॉसिबल है आपकी गाड़ी में 500,000. माजदा है तो 500,000 हो सकते हैं. यहाँ पे रुजबे, तुम यहाँ पे कैसे आ गए यार?
4: हाय,
3: गुड इवनिंग.
4: गुड इवनिंग, क्या हाल चाल आपके?
3: एकदम बढ़िया है यार. हाउ कम यू हियर? मतलब तुम्हारा अभी काम खत्म हुआ
4: तो मैं क्या करूं? मुझे ब्लैकमेल किया गया था कि यहाँ पे आना पड़ेगा, ड्राइव शो भी करना पड़ेगा.
3: ड्राइव शो 4 बजे शुरू होता है.
4: अभी बच्चे की जान लोगे क्या?
3: 4 बजे ड्राइव शो शुरू होता है. कितना टाइम हुआ है? 5:40 हो चुके हैं.
4: मैं चेक करने आया कि सैंडी अभी भी काम कर रही है कि नहीं. हाँ, वो मैं देखने आया हूँ यहाँ पे.
3: सी, फुल डेडिकेशन के साथ काम कर रही हूँ मैं. मुझे ये बताओ तुम्हारी गाड़ी कितनी चली है जो चला रहे हो?
4: 140,000.
3: हाँ,
4: गरीब आदमी हूँ मैं.
3: अरे नहीं, एक ही 400,000 प्लस चली है.
4: क्या बात कर रहे हो?
3: या उन्होंने बोला कि he's looking forward to 500,000
4: wow, in couple of years. मैंने कभी नहीं ऐसा सुना है किसी की इतनी
3: ज्यादा चली हो ना. 1 million किसी की चली है, लेकिन that person is in USA.
4: Okay, wow.
3: तो क्या हुआ ना कि एक बंदा है, उसने 15 साल अपनी गाड़ी चलाई एंड उसका नंबर था 999999 उसकी गाड़ी में. एंड ही वाज मेकिंग अ लाइव वीडियो कि मुझे अभी
4: इसके बाद क्या होगा.
3: हाँ, इसके बाद देखो 1 million हिट करना है ना इसके ऊपर. ऐसा वो नंबर आना चाहिए. एंड जैसे ही वो वीडियो बना रहा था, उसके बाद उसके आ गया 000000.
4: ओह राइट,
3: क्योंकि 7 digit सपोर्ट नहीं कर रही थी उसकी गाड़ी.
4: तो फ्रेश स्टार्ट हो गया उसका.
3: तो
4: दैट्स सो कूल यार.
3: आई नो, लेकिन गाड़ी बेचते समय वो क्या बोलता होगा कि इतनी चली है?
4: अभी गाड़ी को पेंट वेंट मार के वो 1,000 kilometers ऊपर से चढ़ा के बोलेगा ब्रांड न्यू गाड़ी.
3: हाउ इज इट गोइंग रुजबे? तुम्हारा ब्रेकफास्ट शो कैसा जा रहा है?
4: अभी वो तो लिसनर्स को ही पूछना पड़ेगा कैसा जा रहा है.
3: राशिफल कैसा कर रहे हो तुम?
4: राशिफल तो किल कर रहा हूँ मैं, मेरे को ऐसा लग रहा है.
3: मैं किल कर दिया तुमने उसको. ए भगवान,
4: इतना किल कर रहा हूँ मैं कि मेरे को, अरे
3: रेस्ट इन पीस.
4: मेरे को लिटरली अभी कॉल्स आते हैं कि हमारा ये रह गया, हमारा वो रह गया, प्लीज वापस से रिपीट करो. अब मैं कल से बोलूंगा यस डॉलर कॉइन डोनेशन आपको.
3: एवरी रिपीटेशन
4: एक
3: वो 20 सेंट डोनेशन तो करते ही है ना.
4: नहीं,
3: तुमसे पूछने के लिए
4: वो तो यहाँ पे जाते हैं ना.
3: हाँ.
4: मैं मेरा अकाउंट नंबर दूंगा अभी इसके बाद
3: ऑटो रिप्लाई में,
4: क्योंकि 140,000 kilometers चली है मेरी गाड़ी. मेरे को भी चाहिए नई गाड़ी. जमा करना पड़ेगा ना.
3: सही है, किसी का कॉल भी यहाँ पे शायद ये राशि फल जानना चाहते हैं तुमसे. हाय.
5: नहीं यार, मैं जितनी सैंडी अभी एक्साइटेड है, मैं उतना एक्साइटेड हूँ. मैंने सुबह रेडियो पे शुरू किया और भाई का आवाज, मैं बोला ये क्या हो रहा है भाई.
3: ऐसा
4: तो फटक से बंद कर दिया.
3: मतलब कि वो अच्छा वाला था कि आपका बुरा वाला था?
4: फिर फटक से बंद कर दिया उन्होंने रेडियो. बोलते यार आप भी सुबह भी आ गया. नहीं यार, ओमकार
3: इतना भी बुरा नहीं है मेरा भाई, सही है.
4: थैंक्स यार ओमकार, थैंक्स फॉर योर लव मैन.
3: थैंक यू फॉर लिसनिंग.
5: थैंक यू भाई. सैंडी आपको भी आना चाहिए थोड़ी देर यार सुबह.
3: हाँ यार,
4: हाँ आओ ना सुबह सुबह. सैंडी मेरे को तो लगता है डेडिकेशन आपने भी दिखाना चाहिए. सुबह भी करो ड्राइव शो, शाम को भी करो ड्राइव शो.
3: अगर तुम डिसाइड करते हो रुजबे कि तुम 6 से 10 के बाद तीन से सात भी करोगे तो मैं सुबह आने को रेडी हूँ, इजंट इट?
6: क्या यार,
3: या अगर ये कहता है कि मैं तीन से सात भी करूंगा, नॉट जस्ट फोर, तीन बजे से सात करूंगा तो मैं सुबह आने को रेडी हूँ.
4: I'll pass. Hard pass.
3: ये देखो
6: हम करता रहेगा दिन भर भाई मेरा.
3: वही ना.
4: वही तो. सपने में भी हम ही होगा मेरे से.
6: एक दूसरे से करते हैं प्यार हम.
3: अरे वाह. सही है. थैंक यू ओमकार.
4: थैंक यू.
6: ये मुझे लग रहा है बहुत दिनों के बाद मैंने तुमको अलग अलग सुना, तो मुझे लग रहा है यार कुछ तो मिसिंग है. ये दोनों तो एकदम भाई बहन मेरे एकदम से साथ में. एकदम से मैंने इसकी आवाज सुनी,
3: मुझे पता चला
6: दरवाजा खुल के.
3: ओमकार आपके लिए मैसेज आया है कि ओमकार इज हार्ट ब्रोकन, हिज टीम पोर्चुगल लॉस्ट वर्ल्ड कप.
4: अच्छा ऐसा हुआ क्या?
6: हैं
3: पता नहीं किसी ने मैसेज किया है.
6: अच्छा ओ थैंक. मेरा ही कोई दोस्त है, आई डोंट नो. मैं तो फॉलो नहीं कर रहा हूं वैसे.
3: और तुम्हें किसी ने. थैंक यू. नो वरीज.
4: या
6: थैंक यू गाइस. थैंक यू. सी यू. बाय.
3: और एक ने मैसेज किया है कि हाय रुजबे, यू डिड गुड राशि टुडे. आई एम वन ऑफ द लिसनर हु आस्क्ड टू रिपीट माय स्टार साइन. थैंक्स फॉर रिपीट.
4: अरे नो वरीज यार, एनीथिंग फॉर यू.
3: डोनेशन के लिए ही विल गिव यू द.
4: आई विल सेंड यू माय अकाउंट डिटेल्स सून.
3: आज ट्रेंड मेकर्स में पता है क्या होने वाला है?
4: क्या होने वाला है सैंडी?
3: मैं अभी उसकी तैयारी कर रही थी.
4: अच्छा.
3: सो आज ट्रेंड मेकर्स में बर्थडे है कैटरीना कैफ का.
4: ओ कैटरीना कैफ का बर्थडे है.
3: या
4: ओ वाओ.
3: सो कैटरीना कैफ बर्थडे सेलिब्रेट कर रही है, तो गाने तो बहुत ही सही बजने वाले हैं, बिकॉज़ गाने ही तो है उसके सुपर्ब.
4: हां क्योंकि हां या This is wrong. उसकी एक्टिंग भी है decent.
3: मुझे उसकी इंटरव्यूज में, I will be very honest, मुझे उसकी एक्टिंग नहीं अच्छी लगती है.
4: जितना इंटरव्यूज अच्छे लगते हैं.
3: मुझे उसकी इंटरव्यूज बहुत अच्छी लगती है. वो इंटरव्यूज में क्या बोलती है यार, मजा आ जाता है.
4: बनना चाहिए उसने फिर.
3: हाँ, उसको पॉडकास्टर बनना चाहिए एक्चुअली में. एक्टर नहीं बनना चाहिए, लेकिन वो डांस बहुत अच्छा करती है.
4: मतलब 20 साल एक्टिंग करने के बाद बोल रहे हो एक्टर नहीं बनना चाहिए, क्या है यार?
3: मतलब यू नो
4: आपको रियलाइज नहीं हो रहा है मेरी आवाज कितनी अलग लग रही है. मैं कितने बीमार हालत में भी आके शो कर रहा हूँ, आपको भी बीमार कर रहा हूँ.
3: बेस है तुम्हारी आवाज में.
4: बेस लग रहा है ना आज. दैट्स राइट. क्योंकि

0: Focus Kitchens. Quality kitchens with modernized, customized designs for your dream kitchen.
1: March 2027. Ek kahani jo badlegi aapki zindagi.
2: Ruzbe, tickets book ho gaye.
3: To phir der kis baat ki? Bali bula raha.
2: Sunset, beach club aur thoda sa sukoon bhi.
3: Lekin kahani yahi khatam nahi hoti.
4: Fatiha.
3: Bangkok mein hoga hamara asli tashan.
2: Tuk tuk street food aur raaton ki rangeen duniya bhi.
5: Ek baar to jaana hi chahiye Thailand.
4: Hello everybody.
1: Do shehar, ek safar aur yaadein jo rahengi hamesha.
6: Thoda ghume aao, acha lagega aapko, man behal jayega aapka bhi.
1: Text drive on 5599 for the all inclusive tour price. Kyunki ye kahani ab aapke saath likhi jayegi. Bali and Bangkok getaway with Sandy and Ruzbe, only on Hum. Hum, accurate traffic.
7: Experience fun at Snow Planet.
8: Showers overnight for Auckland, a low of 10. The northern is solid from the city through to Esmond Road. The northwestern slow from the city to just past Waterview. The southern northbound traffic very heavy from just south of East Tamaki Road to just past Green Lane, and southbound from Nelson Street to Highbrook Drive. Southwestern slow southbound Richardson Road to Onehunga, and northbound from Whitty to Mangere Bridge.
7: Ski, board, slide, tube. Fun for the whole family at Snow Planet. Not a million miles away.
9: From a change in geopolitics, to changes in the weather, to changes in the All Blacks, change is constant. And so is the news on this station. Your source for everything changing, in association with RNZ News. Change is in the air.
10: Grab a bargain at Mitre 10 Mega Westgate or Henderson. Score 20% off selected wet and forget, 20% off gold air panel or oil column heaters, or selected accent interior paints, sirf $79 each. Only at Mitre 10 Mega Westgate or Henderson.
11: किसी प्रियजन को खोना परिवार या मित्र के लिए कठिन समय हो सकता है। जीवन में मृत्यु को छोड़कर सभी चीजें अनिश्चित है। हम सभी को मृत्यु की वास्तविकता का सामना करना पड़ता है और गरिमापूर्ण अंतिम संस्कार सेवा के माध्यम से प्रियजन के जीवन की अंतिम यात्रा भी करना महत्वपूर्ण है। We are Auckland's one-stop funeral service provider where responsible options and prices are offered. Anne's Funeral Home and On-Site Cremations. 11 Boulderwood Place, Wiri. Call 24/7 on 0927-88600.
12: Professional Financials hai saath aapke. Loan aur insurance ek chhat ke niche. No broker charge, bas trusted advice. Har deal banaye perfect right.
13: Refinance ke liye compare kare different banks. Loan process so simple and frank.
12: Business finance ya income protection ho, har step par guidance perfect ho. Sab kuch milega yahi. Apna future secure banaye.
13: Professional Financial Solutions. Your future our priority. Call 09846-9934 or search PFSL. T's and C's, lending and credit criteria apply.
14: Being fussy is just knowing what you want. So, be more fussy.
15: Celebrate the fussiness of every individual cat. Share in the unspoken language of leg rubs and scratches, because your cat deserves meals created just for them. Meow. Fussy Cat is made with the meaty taste cats love, delivering quality nutrition with delicious variety across every meal. Available at your local supermarket. Well, if they're fussy enough, serve up the meaty taste cats crave. Fussy Cat. Be more fussy.
16: Skiji. Yeah, it's a real word now. Verb, to stop in Fiji before you hit the slopes. Because why fly straight to the snow when your island paradise is on the way? Land in paradise, soak up the sun, and then go shred Japan. Or hit the slopes in Vancouver. Rather unwind a pre-ski, relax and recover in Fiji on your way back home. This winter, don't just ski, Skiji. Check out fijiairways.com/skiji.
0: Hum, time check. Hum News, brought to you by Logic Finance Limited, changing lives with logic.
17: Good evening, I'm KM Adams with the latest at 6. The Teaching Tribunal has criticised a former teacher for rioting at a COVID protest. Alexandra Bogdanova reports.
18: Billy James Charles Natanahira threw concrete at police during the occupation breakup on Parliament grounds in 2022. He resigned the following year and was sentenced to 5 months community detention. The Teaching Council of New Zealand says there's no further action it can take. It previously found him guilty of serious misconduct for threatening a student.
17: Data shows cocaine use by workers is something Kiwi employers should worry about. The Drug Detection Agency says positive results in quarter two were up 68% on a year ago. CEO Glenn Dobson.
19: Admittedly, it is on a low level in relation to the amount of cocaine we are seeing, but certainly it's trending upwards.
17: Screen producers believe this year's election is crucial for the industry. SPADA wants politicians to put a levy on global streamers. President Irene Gardner also thinks there should be tougher AI policies.
19: We are very protective of New Zealand IP and producers' work, so we'd want a fair system of recompense there and rules and regulation.
17: The family of the late actor Sir Sam Neill is planning to have a quiet and private funeral. His agent of 19 years also confirmed pneumonia had been the cause of death at 78. Tupou Vaa'i has switched from lock to the blindside flank in the All Blacks starting side to face Ireland at Eden Park on Saturday. In all, coach Dave Rennie has made 9 changes, 4 in the starting 15 and 5 on the bench. Rugby with shift 4. And the last men's golf major of the year, the Open Championship, is underway at Royal Birkdale. Kiwi Dan Hillier is among the very early starters and fellow Kiwi Ryan Fox just doing so as well.
0: Sports News. Brought to you by Sona Sansar, Papatoy and Mount Roskill.
20: हम पर शोक सूचनाएं आप तक लाते हैं एंस फ्यूनरल होम एंड ऑनसाइट क्रिमेशंस
21: सूचित किया जाता है स्वर्गीय विष्णुदेव शर्मा और सुमित्रा राज के भाई स्वर्गीय राकेश और अकेशनी के पिताजी स्वर्गीय चंद्र प्रभा के पति मैन्यूरिवा ऑकलैंड के प्रेम नारायण की मृत्यु ऑकलैंड में हो गई अंतिम संस्कार शनिवार को 3 बजे ऑकलैंड इंडियन फ्यूनरल होम में किया जाएगा श्रद्धांजलि और जानकारी के लिए आप कॉल कर सकते हैं विनेश को उन 0211-322-413 पर सूचित किया जाता है स्वर्गीय विष्णुदेव शर्मा और सुमित्रा राज के भाई स्वर्गीय राकेश और अजय अकेशनी के पिताजी स्वर्गीय चंद्र प्रभा के पति मैन्यूरिवा ऑकलैंड के प्रेम नारायण की मृत्यु ऑकलैंड में हो गई अंतिम संस्कार शनिवार को 3 बजे ऑकलैंड इंडियन फ्यूनरल होम में किया जाएगा श्रद्धांजलि के लिए आप कॉल कर सकते हैं विनेश को ऑन 0211-322-413 पर सूचित किया जाता है अविनेश शैलेश रविनेश और दिनेश लाल के पिताजी सविता देवी लाल के पति एफरिस्टन के मोती लाल की मृत्यु मिडलमोर हॉस्पिटल में हो गई अंतिम संस्कार शुक्रवार को 1 बजे एंस फ्यूनरल होम एंड ऑनसेंट कमीशंस में किया जाएगा श्रद्धांजलि के लिए आप कॉल कर सकते हैं ऑन 0222-0875-234 पर सूचित किया जाता है अविनेश शैलेश रविनेश और दिनेश लाल के पिताजी सविता देवी लाल के पति एफरिस्टन के मोती लाल की मृत्यु मिडलमोर हॉस्पिटल में हो गई अंतिम संस्कार शुक्रवार को 1 बजे एंस फ्यूनरल होम एंड ऑनसेंट क्रेमेशंस में किया जाएगा श्रद्धांजलि के लिए आप कॉल कर सकते हैं ऑन 0222-0875-234 इट्स 0222-0875-234 सूचित किया जाता है पिंकी जैलैंड शर्मिला रत्नेश और वर्षा की मां अजय ज्योति जय पूनम और वरुण की सासू मां मैंगरी के जय चंद्र की बीवी बा के राम औतर पाचू की डॉटर इन लॉ सुवित्री ऑल्सो नोन एज श्रीमती की मृत्यु हो गई अंतिम संस्कार कल 1 बजे मैनकाओ मेमोरियल गार्डन्स में किया जाएगा श्रद्धांजलि के लिए कॉल कीजिए ऑन 0272386305 पर सूचित किया जाता है पिंकी जैलन शर्मिला रत्नेश और वर्षा की मां अजय ज्योति जय पूनम और वरुण की सासू मां मैंगरी के जय चंद्र की बीवी बा के राम औतर पाचू की डॉटर इन लॉ सवित्री ऑल्सो नोन एज श्रीमती की मृत्यु हो गई अंतिम संस्कार शुक्रवार को 1 बजे मैनकाओ मेमोरियल गार्डन्स में किया जाएगा श्रद्धांजलि के लिए कॉल कीजिए 0272386305 पर
22: शोक सूचनाएं वीकडेज पर सुबह 6 तथा 11 बजे शाम 6 बजे और वीकेंड्स पर दोपहर 12 बजे पर प्रसारित की जाएगी
0: नॉनस्टॉप बॉलीवुड
23: जो भी करते शिद्दत के साथ करते हैं
0: हम प्लेइंग बॉलीवुड्स बिगेस्ट

0: Koki Koi. Sleepy Head Sleepy Easy Queen Beds from only $7.99. On sale now. Let's go!
1: 3, 2, 1. Trend Makers.
2: ड्राइव शो आप यहाँ पे सुन रहे हैं ट्रेंड मेकर्स में. आज हम सेलिब्रेट करने वाले हैं कैटरीना कैफ का बर्थडे. कैटरीना कैफ, वेल इनके बारे में वैसे अगर हम बातें करते हैं तो इन्होंने अपने करियर की शुरुआत काफ़ी समय पहले से ही कर दी थी, लेकिन इनको जो बिग हिट है बेसिकली मूवीज़ में ये बहुत ही लेट जाके मिला था. लेकिन आज हम बातें करने वाले हैं कैटरीना कैफ की कुछ अननोन फैक्ट्स के बारे में, हैबिट्स के बारे में भी. यू नो कैटरीना कैफ का एक सुपरस्टिशन है, जब भी उनकी मूवी रिलीज़ होने लगती है तो उनका एक पर्सनल रिचुअल है. वो सिद्धि विनायक टेम्पल में जाती है एंड माउंट मेरी चर्च में जाती है इन मुंबई, फॉलोड बाय अ ट्रिप टू अजमेर शरीफ दरगाह इन राजस्थान टू प्रे फॉर द मूवी सक्सेस. तीन जगह पर वो जाती है मूवी की सक्सेस की प्रे करने के लिए, सिद्धिविनायक टेम्पल में, माउंट मेरी चर्च में इन मुंबई एंड अजमेर शरीफ के दरगाह में वो जाती है. ये उसका एक सुपरस्टिशन है जो वो काफ़ी समय से एक्चुअली में फॉलो करती जा रही है. वेल कैटरीना कैफ जो कि बहुत ही सुपर्ब डांसर भी है, बहुत सारे कोरियोग्राफर्स का कहना है कि दे लव टू कोरियोग्राफ कैटरीना कैफ बिकॉज जिस वजह से वो डांस में जान डाल देती है, गाना ऑटोमेटिकली हिट हो जाता है, जैसे कि ये वाला गाना.

0: sun like a pearl upon the ocean, come and feel me.
1: कैटरीना कैफ के करियर के बारे में बातें करते हैं. एज अ डांसर ऑल्सो एक्चुअली में उन्हें बहुत बार क्रिटिसाइज भी किया गया था. देयर इज दिस वन वेरी फेमस इंटरव्यू जो मैं आपके लिए प्ले करती हूँ.
2: 17 at the time, I was on a beach. I was doing a song sequence in a movie, and the choreographer was saying very loudly and very audibly that this girl is zero. She cannot dance. She is just like messing with my mind. He's getting very irritated. And I remember thinking, he's saying it loud enough that I can hear, which means he wants me to hear. I remember feeling bad, but I also remember at that time thinking, okay, if I can't dance according to him, that's fine. I'll work on that in the future. And then just sitting like that. I didn't make any attempt to contradict him or conflict him, but I just kind of, I think from then, kind of developed this thing in my head that if someone is criticizing you, I'll put extra work in that department if I feel that criticism is warranted. I'll put extra work and I won't take that criticism to my heart and hold it against you. Because I think
1: So ये उन्होंने बहुत ही सही बात एक्चुअली में इस इंटरव्यू में बोली थी. दैट्स वाई आई लव हर इन द इंटरव्यूज. बंदी क्या बिंदास इंटरव्यूज देती है. कभी उठा के कोई भी कैटरीना कैफ की इंटरव्यू देखना, शी इज वेरी बिंदास, वेरी वोकल अबाउट हर फीलिंग्स. यहाँ पे जो उसने बोला कि क्रिटिसिज्म को अगर वो उस समय पर एक्चुअली में दिल पे ले लेती तो मे बी अपने डांस के ऊपर और भी अच्छे वे से वो काम नहीं करती. वे गलत हो सकता है उस कोरियोग्राफर का उसको बताने का, उसको सुनाने का, बट इट वॉज अपॉन हर कि उसको वो कैसे लेती है. शी जनरलाइज्ड इट इन अ वेरी डिफरेंट डिफरेंट वे जो इस गाने में भी हमें दिखाई दी.

0: sleepyhead sleepy easy queen beds from only $7.99 on sale
1: now. Katrina Kaif ka birthday celebrate kar rahe hain to superb gaane hum yahan pe sun rahe hain. Bahut sare actors ke sath Katrina Kaif ne kaam kiya hai apni life mein. You know, unko phobias bhi hai, jaise ki unhone openly admit kiya hai ki unko nyctophobia hai, yani ki fear of the darkness and height ka phobia bhi hai unko. आउट ऑफ बॉलीवुड उनका अपना एक के ब्यूटी एम्पायर भी है. के ब्यूटी एक जॉइंट वेंचर जो नायका के साथ उन्होंने बनाया है. सो अनलाइक मैनी सेलिब्रिटीज हु सिंपली पुट द नेम ऑन अ लेबल, इन्होंने क्या किया, अपना नाम वहाँ पे प्रॉपरली नहीं रखा. जो ब्रांड है अभी वो पावरफुल हो चुका है, बहुत ही मैसिव हो चुका है. काफ़ी रिटेल लॉन्चेस इनके यूके में भी हो चुकी है, बट इन्होंने के ब्यूटी एज इन के ए वाई ब्यूटी ही इसका नाम एक्चुअली में रहने दिया. सो और भी बहुत सारे काम जो कैटरीना कैफ है साइड बाय साइड इस वे से वो करती रहती है. एंड अगेन उनके इंटरव्यूज़ के बारे में बात करते हैं तो वंस शी बिकॉज ब्यूटी का उन्होंने ये लॉन्च भी किया था तो उनको एक बार क्वेश्चन किया गया था अबाउट दिस थिंग अबाउट ब्यूटी कि ब्यूटीफुल क्या होता है उनकी डिक्शनरी में. सो उनका ये आंसर था उस समय पर.
2: There is no one way that beauty looks according to me. Whether you are dusky, whether you are fair, whether you are voluptuous, whether you are skinny, there is no ideal form of beauty. I really, really believe that. Physical beauty is when that person is confident inside and you get a sense that this person knows who they are and values who they are and doesn't need outside validation. When I meet a woman or a man or actually any person who I get a sense this person doesn't need validation from anyone, not from me, not from him, not from anyone. He's confident in his own skin, in his own self. That person to me is the most attractive. That person to me is the most beautiful.
1: सो या ऐसा बहुत सारे ज्ञान आपको कैटरीना कैफ की वीडियोस में मिलेंगे. मुझे वो हमेशा से बहुत अच्छी स्पीकर लगी है. उनके इंटरव्यूज़ में ऐसी बहुत सारी बातें होती है जो काफ़ी लोगों को बहुत इंटरेस्टिंग भी लगती है. वेल, आपके लिए सवाल है, कैटरीना कैफ की ऐसी कौन सी मूवी है जिसमें कैटरीना कैफ ने खुद का रोल किया है, एज इन की NRI का रोल किया है.

एंड यहाँ पे मैसेज करके बता सकते हैं 5599 पर कि कैटरीना कैफ में किस मूवी में एनआरआई का रोल किया है. बहुत ही इंटरेस्टिंग मूवी थी वो, आई लव्ड दैट मूवी दो, एंड उसमें जो कॉन्सेप्ट था बहुत ही इंटरेस्टिंग था. 5599 इज द नंबर.

Well, another song of Katrina Kaif, जहाँ पे zero figure बहुत ज़्यादा popular हो गया था. Katrina Kaif ने literally, she was on ice diet इस movie के लिए, इस specifically इस गाने के लिए actually में. उनके जो मूवीज़ का करियर देखा जाए तो मूवी आई वॉज टॉकिंग अबाउट इज नमस्ते लंदन, जहाँ पे उन्होंने NRI का रोल किया था. थैंक यू सो मच आपके आंसर्स के लिए. यहाँ पे कमर्शियल ब्रेक थ्रू था वैसे नमस्ते लंदन, अगर देखा जाए ब्रिटिश इंडियन गर्ल का रोल उन्होंने किया था. सो इट वॉज अ काइंड ऑफ ब्रेकआउट परफॉर्मेंस फॉर हर, जो कि वॉज वेरी मच जो वो खुद है. देन क्रिटिकल शिफ्ट उनको न्यूयॉर्क मूवी से भी मिला था, कबीर खान की जो मूवी थी जो कि 9/11 के ऊपर बेस्ड थी. इस मूवी के लिए शी गॉट ए नॉमिनेशन फॉर बेस्ट एक्ट्रेस एज वेल. देन टाइगर सीरीज में हमने इनको हमेशा से देखा जोया करेक्टर के साथ. मेरे को एक्चुअली में ना मूवी है इनकी OTT पे मैरी क्रिसमस, मुझे वो बहुत अच्छी लगी है. इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग मूवी, इट्स एक्चुअली अ मिस्ट्री मूवी. तो कभी आपको मौका मिले तो ये मूवी आप ज़रूर देखेगा. फिलहाल एक और गाना सुनते हैं कैटरीना कैफ का, जिसमें उनके ये एक और डांस स्टेप बहुत ज़्यादा फेमस था. कैटरीना कैफ के देखा जाए तो उनके गानों के जो हुक स्टेप्स हैं वो बहुत ज़्यादा फेमस है. सो दिस वॉज अनदर वन.

0: ट्रेंड मेकर्स। ड्राइव शो फिलहाल आप यहाँ पे सुन रहे हैं, कैटरीना कैफ के गाने आप यहाँ पे सुन रहे हैं बिकॉज शी इज सेलिब्रेटिंग हर बर्थडे टुडे। उनके कुछ इंटरव्यू के बिट्स भी मैं आपके लिए यहाँ पे प्ले कर रही हूँ। वैसे बहुत सारे गाने हैं कैटरीना कैफ के जो तो इस आवर में आपके लिए हम नहीं प्ले कर पाएंगे, बट शी बीन अ इंटरनेट क्वीन अगर देखा जाए। सो इंस्टाग्राम अभी एक्सप्लोर जब नहीं हुआ था, शी वॉज डोमिनेटिंग द अर्ली इंडियन डिजिटल लैंडस्केप। अर्ली 2010s में गूगल ने अनाउंस किया था कैटरीना कैफ को मोस्ट सर्च्ड इंडियन सेलिब्रिटी ऑन द इंटरनेट। सो काफ़ी टॉप पॉलिटिशियंस एंड क्रिकेटर्स को उस समय पर कैटरीना कैफ ने बीट किया था। वैसे कैटरीना कैफ का ये रियल नेम नहीं है, शी वॉज बॉर्न एज कैटरीना रोजमरी टर्कोट। तो अपनी डेब्यू मूवी जब उन्होंने बूम की थी, उस समय पर प्रोड्यूसर्स डिसाइडेड कि उनका जो लास्ट नेम है उसे कैफ कर दिया जाए सो दैट जो इंडियन ऑडियंस है वो उसको ईजिली प्रोनाउंस कर सके। अपने बहुत सारे कामों के ज़रिए वो चैरिटीज़ भी करती है, एक चैरिटेबल ट्रस्ट भी वो रन करती है अलॉन्ग विद हर मदर, जहाँ पे शी ट्राई टू रेस्क्यू अबेंडेंड बेबी गर्ल्स एंड फीमेल इन्फेंटिसाइड जो है इसमें वो कम्बैट करती है, वहाँ पे कैसे हेल्प हो सकती है। ऑल्सो उन्होंने फाइनेंस किया है एक माउंटेन व्यू स्कूल जो कि तमिलनाडु में है अंडर प्रिविलेज बच्चों के लिए। तो ऐसे बहुत सारे काम हैं जो कैटरीना कैफ ऑलरेडी करती है। कैटरीना कैफ का मुझे ये एक बिट बहुत अच्छा लगता है जो आपको सुनाती हूँ मैं, और इसी नोट पे आपको टाटा बाय बाय कहती हूँ। जाते जाते आई रियली लाइक्ड हर इन दिस मूवी, जब तक है जान। जब तक है जान में बहुत अच्छा सुपर्ब रोल था उनका, उनकी केमिस्ट्री भी बहुत अच्छी लग रही थी शाहरुख खान के साथ। एंड या ये इस मूवी का ये जो ब्यूटीफुल गाना है ये आप यहाँ पर सुनने वाले हैं, लेकिन उससे पहले कैटरीना कैफ ने अपने बारे में जो शेयर किया था कि अगर कोई समझना चाहता है कैटरीना कैफ को तो उसको बस एक ही चीज समझनी चाहिए।
1: I don't like mean things, I don't like mean people. You know what my motto is in life? I have to tell you. I have to tell you and I really think it should be everyone's motto in life. But if you want to understand me, you should just know this much. It comes from a movie which I'm sure you've seen called Bambi. If you can't say something nice, don't say nothing at all.

0: Happy Hour on Hum. The Breakfast Show with Vijay and Pooja.
1: बुरी प्लानिंग से आए हैं, शत प्रतिशत तुमको सुबह यहाँ से ले जाएंगे.
2: Those people who live around the Hunua area, वहाँ पर 1 degree है टेम्परेचर.
3: जितने भी लोग इस इलाके में हैं, enjoy करते रहे आप. West side है ना, west side of Auckland है ये. I have lots of fun basically with
2: क्या?
3: The cold weather.
2: कौन है?
3: Hunua और Waitakere.
2: अच्छा, Hunua west में.
3: किधर है Hunua?
0: The Breakfast Show with Vijay and Pooja.

0: the moment. Krishka Magic. Only on Hum.
1: You are listening to number one Hum playing Bollywood's biggest hits. Main Krish aapke saath de raha hoon. Global sensation Karan Aujla ko live in Auckland dekhne ka mauka hai because he is bringing his P-pop culture world tour. Aur ye 25th August ko hoga Spark Arena mein. One of the biggest concerts of the year ye hone ko hai. He will be joined by Ikki IKKY, jo unforgettable night aapko dega. डबल पास जीतने के लिए करण औजला का गाना जब पेश किया जाएगा जैसे आप सुनते हैं गाने का नाम टेक्स्ट करें अलोंग विद कीवर्ड KI ड्रो में शामिल होकर डबल पास जीतने का मौका रहेगा टिकट इन्फॉर्मेशन के लिए hum.rover.nz या फिर livenation.co.nz आप विजिट कर पाएंगे करण औजला पी पॉप कल्चर वर्ल्ड हुआ ये 25th अगस्त को होगा स्पार्क अरीना में डोंट जस्ट हियर अबाउट इट आपको वहां पर रहना है टू फील द मैजिक मैं क्रिश आपके साथ दे रहा हूँ सुनते रहो हम

बीते लम्हों को अब हर पल जिए हम रिवाइंड के साथ। एक ऐसा सफर जहां हर गाना एक याद है, हर सुर एक कहानी। हम रिवाइंड, जहां संगीत सिर्फ सुनाई नहीं देता।

0: WM Havel, हाइब्रिड, पेट्रोल और डीजल राइड्स का अल्टीमेट रेंज, हर लाइफस्टाइल के लिए परफेक्ट। जिमी टेलर और टीम से मिलो वेस्ट सिटी ऑटो ग्रुप में एंड फाइंड योर नेक्स्ट ड्रीम राइड। स्टाइलिश हैवल जोलियन हाइब्रिड, पावरफुल हैवल H6 हाइब्रिड, रॉकेट टैंक 300, सब रेडी है सिर्फ आपके लिए। चेक वेस्ट सिटी ऑटो ग्रुप .nz या आज ही विजिट करो वेस्ट गेट या हेंडरसन शोरूम। वेस्ट सिटी GWM Havel, where your next adventure begins.
1: Ski G. Yeah, it's a real word now. Verb. To stop in Fiji before you hit the slopes. Because why fly straight to the snow when your island paradise is on the way? Land in paradise, soak up the sun, and then go shred Japan. Or hit the slopes in Vancouver. Rather unwind a pre-ski, relax and recover in Fiji on your way back home. This winter, don't just ski, Ski G. Check out fijiairways.com/SkiG.
2: When City Rail Link arrives soon, it's going to give us all more time. From Panmure, you'll be able to go from instant noodles for one in the library to... Hey, hey! Noodles with friends on Karanga Hape Road! In just 23 minutes. Auckland Transport and City Rail Link. More connections that'll take you from a night in to a night out.
1: Right now, your team could be winning. Sprinting. Pitching. Kicking. Sinbinning. And you need to know about it.
3: Join the Tribe!
1: The Tribe app brings you live scores, real-time updates, and text commentary as it happens. It's the world of sport in your pocket on one app. Tribe, your destination for sport. Download the app now and...
3: Join the Tribe!
4: The beat of Bollywood.
5: World's best, हमारी कोई ब्रांच नहीं है.
4: Hum. Night Cafe on Hum. Jazbaat ki narmi, mohabbat ki raaz.
6: Whispers of Ishq.
7: You're listening to number one Hum playing Bollywood's biggest hits. Krish ka saath hai. This Saturday, 18th July, Auckland witness karega one of the biggest comedy events, jisme Krishna Abhishek aur Rajiv Thakur ko live on stage dekhne ka mauka hai for the great comedy night. India ke do biggest television comedy superstars ko live dekhne ka mauka rahega. Non-stop laughter, hilarious live performances, interactive audience moments, aur aise memories yahan par hoga jo aap cherish karenge with your loved ones. To perfect family entertainment for all ages, family, friends, colleagues, या फिर स्पेशल समवन के साथ यहां पर जाए. शो कुछ ही दिनों में होगा तो लिमिटेड नंबर ऑफ सीट्स रह गए हैं, तो लास्ट मिनट का इंतजार ना करें, टिकट्स आज ही सिक्योर करें बिफोर इट इज कंप्लीटली सोल्ड आउट. आफ्टर पे अवेलेबल है. बुकिंग के लिए असिस्टेंस की जरूरत है तो फिर 021-043-2720 पर आप कॉन्टेक्ट कर पाएंगे. ये शो 18th यानी 18 जुलाई को होने जा रहा है सैटरडे विक्ट्री कन्वेंशन सेंटर में. टिकट्स के लिए आप bookmyevent.co.nz पर जाए. मैं क्रिश आपके साथ दे रहा हूँ.

0: moment. Krishka Magic. Only on Hum.
1: सुनते रहो आपका नंबर वन हम प्लेइंग बॉलीवुड्स बिगेस्ट हिट्स में क्रिश आपका साथ दे रहा हूँ. इमेजिन कीजिए कि आप टुक टुक ड्राइव्स पर जा रहे हैं टू द बीच क्लब वाइब्स. ये हो पा रहा है बाली और बैंकॉक गेट अवे विद सैंडी एंड रुस्बे जो मार्च 2027 में होने जा रहा है. ये आपका एक चांस है टू एक्सपीरियंस द बेस्ट ऑफ बैंकॉक एंड बाली इन वन इनक्रेडिबल गेट अवे. अल्टीमेट टू कंट्री एडवेंचर ये है. वाइब्रेंट स्ट्रीट्स ऑफ बैंकॉक एक एंजॉय करने का मौका विद एक्साइटिंग टुक टुक राइड्स, मैग्निफिसेंट टेम्पल्स, बसलिंग मार्केट्स देखने का मौका, इनक्रेडिबल स्ट्रीट फूड, खाने तो बहुत मज़ेदार होंगे, अनफॉरगेटेबल नाइट लाइफ भी देखने का मौका है. और फिर एस्केप कीजिए टू द ट्रॉपिकल पैराडाइज ऑफ बाली. स्टनिंग ड्राइस टेरेसेस और वाटरफॉल्स, ब्रेथ टेकिंग सनसेट्स देखने का मौका, रिलैक्स एट वर्ल्ड फेमस बीच क्लब्स और पिक्चर जो फेमस स्विंग के साथ होता है वो भी करने का मौका है. एंड एक्सपीरियंस द आइलैंड्स यूनिक कल्चर एंड ब्यूटी. बोथ ऑफ दीज कंट्रीज आर अमेजिंग. आप यहाँ पर जा सकते हैं, ट्रेवल कर सकते हैं विद सैंडी और रुस्बे. आइकॉनिक साइट्स, हिडन जेम्स, अमेजिंग लोकल कुजीन, क्रिएट अनफॉरगेटेबल मेमोरीज टुगेदर. तो आज इन ज्वाइन कीजिए आज ही मार्च 2027 में ये होने जा रहा है. एंड मेक योर नेक्स्ट एडवेंचर अनफॉरगेटेबल. टेक्स्ट करें ड्राइव DRIVE 5599 पर फॉर ऑल इंक्लूसिव टूर प्राइस. मैं क्रिश आपके साथ दे रहा हूँ. सुनते रहो हम

0: Download Rova to listen Hum 80s Jukebox.
1: प्रोफेशनल फाइनेंशियल्स है साथ आपके लोन और इंश्योरेंस एक छत के नीचे नो ब्रोकर चार्ज बस ट्रस्टेड एडवाइस हर डील बनाए परफेक्ट राइट
2: रीफाइनेंस के लिए कंपेयर करें डिफरेंट बैंक्स लोन प्रोसेस हो सिंपल एंड फ्रैंक
1: बिजनेस फाइनेंस या इनकम प्रोटेक्शन हो हर स्टेप पर गाइडेंस परफेक्ट हो सब कुछ मिलेगा यही अपना फ्यूचर सिक्योर बनाए
2: प्रोफेशनल फाइनेंशियल सॉल्यूशंस योर फ्यूचर आवर प्रायोरिटी कॉल 09846-9934 और सर्च PFSL T's and C's लेंडिंग एंड क्रेडिट क्राइटेरिया अप्लाई
3: आजकल लीगल इन्फॉर्मेशन पर सब ज्ञान देते हैं जैसे खुद कोई गूगल हो
4: मगर सही गाइडेंस विद करेक्ट लीगल प्रोसेसेस तो एक ही है सुपर जोड़ी ऑफ राजन आशिमा फ्रॉम लीगल एसोसिएट्स नोटरी पब्लिक बैरिस्टर्स एंड सॉलिसिटर्स
5: लीगल एसोसिएट्स लॉ फर्म बेस्ड इन साउथ ऑकलैंड डील्स इन सेल एंड परचेज ऑफ बिजनेस एंड प्रॉपर्टी लीजेस सब डिविजन इमिग्रेशन एंड क्रिमिनल लॉ नोटरी सर्विसेज एंड पावर ऑफ अटर्नी फॉर अपॉइंटमेंट्स विद राजा आशिमा कॉल ऑन 09279439 और विजिट legalassociates.co.nz
6: TradeDepot.co.nz. Shop now at Trade Depot, New Zealand's number one bathroom, kitchen and appliance online store. Vogue 442-litre side-by-side fridge freezers, $699. Midea heat pump dryers, $499. Comfy 12-place dishwashers, $299. Shop online or in store at Trade Depot, Nielsen Street, Onehunga. With minimum spends, you can get free home delivery anywhere in Auckland. T's and C's apply. TradeDepot.co.nz.
7: Check. Hum News, brought to you by Logic Finance Limited, changing lives with logic.
8: Good evening to you. With the latest at 9, I'm Jeff Ryan. The Biosecurity Minister is stressing the importance of keeping bird flu at bay for poultry. The country's first strain of H5N1 has been found in a seabird. Andrew Hoggard says if the disease got into a facility, the death rate is nearly 100%. Data shows cocaine use by workers is something Kiwi employers should worry about. The Drug Detection Agency says positive results in quarter two were up 68% on a year ago. Iran says it's continuing to target US military sites in the Middle East in retaliation to the latest round of US strikes. The US military says it's completed its latest round of strikes on Iran. In sport, England manager Thomas Tuchel is copping it big time for his second-half substitutions in the 2-1 World Cup semi-final loss to Argentina. The decision to go defensive backfired spectacularly. Football updates brought to you by Hisense. The opening round of the Open Championship, Kiwi Dan Hillier at even par playing the 13th, three off the lead. Fellow Kiwi Ryan Fox is 2 over through 12. He's 5 off the lead.
7: Sports News. Brought to you by Sona Sansar, Papa Toy and Mount Roskill. Non-stop Bollywood.
9: Hum.

0: Magic. Only on Hum.
1: Hello everyone, welcome back to the show. Main Krish aapka swagat karta hoon. It's news and sports update ke baad mein abhi टाइम हो चुका है 30 मिनट्स ऑफ नॉन स्टॉप म्यूजिक का, जो आप बेहद पसंद करते हैं. आई एम श्योर जिसमें गाने आपके लिए आपके फेवरेट होते हैं. हम ना ही बातें करते हैं और ना ही कोई एडवर्टीजमेंट उसके बीच आता है, सिर्फ गाने एक के बाद एक आपके लिए बजते हैं और हम की गूंज होती है और फिर आपके फेवरेट गाने. ऐसे ही ये सिलसिला 30 मिनट्स तक चलता है. तो आज तो स्पेशल इस बात के लिए है कि रोमांटिक गाने बज रहे हैं, तो 30 मिनट्स ऑफ रोमांटिक सॉन्ग्स आपके लिए इस बार. एंजॉय.

0: moment. Krishka Magic. Only on Hum.
1: You're humming along with Krish on your number one hum, playing Bollywood's biggest hits. आप सुन रहे हैं हम और बॉलीवुड के गाने आपके लिए हम पेश करते रहेंगे biggest hits for you. Fiji Pyramid Foundation NZ in association with Anne's Funeral Home and On-Site Cremations present कर रहे हैं annual community health well-being expo जो होने जा रहा है संडे 26th जुलाई को A1 Event Center में होगा 731 Great South Road Papatoy. Time 10 AM to 3 PM होगा. ये free event है, free for everyone. Free screening होगा, blood pressure, diabetes, kidney, ECG, eye test. इसके अलावा info on cancer screening और early symptoms, practical learning पर बातें होंगी. CPR, EpiPen, breathing exercises और easy yoga. Mental health and well-being पर बातें होंगी, self-care और stress, gambling and alcohol जैसे problems, education, information और career, information on diabetes, hypertension, kidney stroke, elder care, free fun for the whole family यहाँ पर होने जा रहा है. और भी जानकारी के लिए आप सरोजनी दयाल से बातें करें, sarromich at hotmail.com या फिर शनीला महराज को आप कॉल कर सकते हैं, shanila.afgfnz@gmail.com. Fiji Pyramid Foundation और Anne's Funeral Home द्वारा ये Health Wellbeing Expo आपके लिए लेकर आया जा रहा है. मैं कृष आपके साथ दे रहा हूँ, सुनते रहो हम.

0: नॉनस्टॉप बॉलीवुड
1: जोगी करते शिद्दत के साथ करते हैं
0: हम प्लेइंग बॉलीवुड्स बिगेस्ट हिट्स
2: हम फिजी कीर्तन संग्रह की अपार सफलता के बाद भजन प्रेमियों के लिए पेश है हम फिजी भजन प्रसिद्ध कलाकारों से फिजी भजन का मजा लीजिए कभी भी कहीं भी हम फिजी भजन दुनिया का पहला 24/7 एक्सक्लूसिव एंड फ्री फिजी भजन प्लेटफॉर्म डाउनलोड करें रोवा ऐप या hum.rova.nz पर सुने हम फिजी भजन
3: Imagine having someone promoting your business around the clock, without wages or weekends off. That's what Quality Signage does. At Speedy Signs, they design and install signage that turns heads, builds confidence, and helps customers choose you faster. If your current sign is blending into the background, maybe it's time for an upgrade. Call 0800 Speedy or visit speedysigns.co.nz today and grow your business faster. That's 0800 Speedy or speedysigns.co.nz. Run.

0: the moment. Krish ka magic. Only on Hum.
1: आप सुन रहे हैं आपका नंबर वन हम प्लेइंग बॉलीवुड्स बिगेस्ट हिट्स. मैं क्रिश आपके साथ दे रहा हूँ. ओकलैंड गेट रेडी. लेजेंडरी राहत फतेह अली खान ओकलैंड आ रहे हैं फॉर वन अनफॉरगेटेबल नाइट ऑफ म्यूजिक. इनका मैजिक आप एक्सपीरियंस कीजिए ऑफ हिज टाइमलेस हिट्स. सोल स्टिरिंग कवाली, पावरफुल वॉइस जो इनका होता है, जिन्होंने ऑडियंस को कैप्टिवेट किया है अक्रॉस द वर्ल्ड. इनके गाने इतने मजेदार होते हैं. ट्रस्ट अरिना में ये शो होने जा रहा है 25th जुलाई को. प्रेजेंटेड बाय जयका स्टार प्रोडक्शंस, गोट लाइव, ड्रीम्स एंटरटेनमेंट, सिमरन प्रोडक्शंस और शहजादा प्रोडक्शन. आपके लिए टिकट्स आप dry.com से ले सकते हैं. राहत फतेह अली खान लाइव देखने का मौका है ऑन 25th जुलाई ट्रस्ट अरिना में. मैं क्रिश आपके साथ दे रहा हूँ. यू लिसनिंग टू नंबर वन हम प्लेइंग बॉलीवुड्स बिगेस्ट हिट्स.

0: भाग दौड़ में आप अपनी पसंद की चीजें नहीं कर पाते। आपको फीजी कीर्तन पसंद है लेकिन पता नहीं कब और कैसे सुने। हम फीजी कीर्तन संग्रह पर आप जब चाहे तब अपने फेवरेट कीर्तन का मजा ले सकते हैं। हम फीजी कीर्तन संग्रह, दुनिया का पहला 24/7 फीजी कीर्तन प्लेटफॉर्म। डाउनलोड करें रोवा ऐप या hum.rowa.nz पर सुने।
1: Danny didn't think he needed a DVS system.
2: Our whole house was damp, so I got a dehumidifier to sort it.
1: But it didn't sort the whole house, did it, Danny?
2: Nah, only one room. It was just too noisy.
1: So Danny got DVS home ventilation, and its fresh air in, stale air out technology went to work, making his whole home drier and condensation free. Say yes to DVS. Your healthy home isn't complete without it.
3: For 30 years, Avara Cosmetic and Laser Clinic has helped Kiwis look and feel the best. Now they are celebrating with the timeless healing power of Ayurveda from Shankara Naturals USA. Discover luxurious Kansa facials, He Sutra and Kumkumati oil facials and indulge in a 60-minute Abhyangya full body massage. Normally $149, now just $69. But hurry, the special offer is limited to the first 10 clients only. Book now at avana.co.nz.
4: The beat of Bollywood.
5: World's best. हमारी कोई ब्रांच नहीं
4: है. Night Cafe.
6: You're listening to number one. हम playing Bollywood's biggest hits. Krish का साथ है. This Saturday, 18th July, Auckland witness करेगा one of the biggest comedy events, जिसमें कृष्णा अभिषेक और राजीव ठाकुर को live on stage देखने का मौका है for the great comedy night. India के दो biggest television comedy superstars को live देखने का मौका रहेगा. Non-stop laughter, hilarious live performances, interactive audience moments, और ऐसे memories यहाँ पर होगा जो आप cherish करेंगे with your loved ones. तो perfect family entertainment है for all ages, family, friends, colleagues, या फिर स्पेशल समवन के साथ यहां पर जाए. शो कुछ ही दिनों में होगा तो लिमिटेड नंबर ऑफ सीट्स रह गए हैं, तो लास्ट मिनट का इंतजार ना करें, टिकट्स आज ही सिक्योर करें बिफोर इट इज कंप्लीटली सोल्ड आउट. आफ्टर पे अवेलेबल है. बुकिंग के लिए असिस्टेंस की जरूरत है तो फिर 021-043-2720 पर आप कॉन्टेक्ट कर पाएंगे. ये शो 18th यानी 18 जुलाई को होने जा रहा है, सैटरडे, विक्ट्री कन्वेंशन सेंटर में. टिकट्स के लिए आप bookmyevent.co.nz पर जाए. मैं क्रिश आपके साथ दे रहा हूँ.

0: the moment. Krishka Magic. Only on Hum.
1: आप सुन रहे हैं आपका नंबर वन हम प्लेइंग बॉलीवुड्स बिगेस्ट हिट्स. याद रहे म्यूजिक स्टेशंस को भी आप रोवा के जरिए सुन पाएंगे. हम रिवाइंड में आप 60s और 70s हिट्स सुनेंगे. 80s जूकबॉक्स में काफी 80s ईरा ऑफ बॉलीवुड सॉन्ग्स आप सुनेंगे. फीजी भजन्स में 24/7 फ्री भजन स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म है जिसमें फीजीज बेस्ट आर्टिस्ट के कीर्तन आप सुन पाएंगे. चढ़ती कला है पंजाबी हिट्स, फीजी कीर्तन संग्रह, बिगर चॉइसेस ऑफ कीर्तन आर्टिस्ट यहाँ पर होंगे आपके लिए इनके गाने सुनने का मौका. और राहत फतेह अली खान फॉर द लव ऑफ सूफी एंड कवालीज, आप इनके म्यूजिक स्टेशन जो है राहत फतेह अली खान नाम के वो आप चेकआउट करें. इट इज़ गोइंग टू गिव यू रियली नाइस सॉन्ग्स. तो ये म्यूजिक स्टेशन सुनना ना भूलें. रोवा के जरिए आपको सुनने को मिलेगा. मैं क्रिश आपके साथ दे रहा हूँ. सुनते रहो हम प्लेइंग बॉलीवुड्स बिगेस्ट हिट्स.

0: Cafe on Hum.
1: Ladies and gentlemen,
2: unfiltered with Sandy and Rizvi. क्योंकि दुनिया में already बहुत सारे perfect, polished, Instagram friendly stories हैं और उनका हमसे कोई लेना देना नहीं.

0: Sandy and Rizvi on Rova, Spotify or anywhere you get your podcast.
1: रिलायंस वेंटिलेशन सिस्टम।
2: हाय, मेरे घर में बहुत प्रॉब्लम्स हो रही है, जैसे कि क्राइंग विंडोज, सीलन आ गई है और खाने की बदबू तो जाती ही नहीं है।
1: मॉइस्चर और वेंटिलेशन का प्रॉब्लम लगता है।
2: और पता है, मेरे बच्चों को एस्मा और एलर्जी भी हो गई है।
1: और दैट्स नॉट गुड। हम आपके सभी प्रॉब्लम्स रिलायंस वेंटिलेशन सिस्टम से सॉल्व कर सकते हैं। इससे आपका घर रहेगा वार्म इन विंटर एंड कूल इन समर। और हम मित्सुबिशी इलेक्ट्रिक और तोशिबा हीट पंप्स के ऑथराइज्ड डीलर्स भी हैं।
3: कॉन्टैक्ट रिलायंस वेंटिलेशन सिस्टम ऑन 0800-787-111। रिलायंस वेंटिलेशन सिस्टम्स, सॉल्विंग वेंटिलेशन प्रॉब्लम्स फॉर ओवर 18 years.
4: And फिर मिसेस सिंह से मैंने पूछा, इतना अच्छा खाने के साथ किचन में रील्स और टिकटॉक कैसे बना लेती हूँ? बोली, बस मेरा फोकस है। हाँ,
5: अच्छा
4: बताओ, तुम्हारा फोकस फोकस साडा कुछ नहीं।
5: मिसेस सिंह,
6: अरे पम्मी जी, मेरा फोकस मींस मेरे घर का किचन, जिसको डिजाइन किया है फोकस किचन ने।
7: मॉडर्न क्लासिक शेक स्टाइल किचन, फोकस किचन, यूनिट के 33 वॉन्सली रोड, ओटाहू। कॉल 09281-3050 और विजिट focuskitchens.co.nz.
8: Right now, your team could be winning. Sprinting, pitching, kicking, sin-binning. And you need to know about it.
9: Join our tribe!
8: The Tribe app brings you live scores, real-time updates, and text commentary as it happens. It's the world of sport in your pocket on one app. Tribe, your destination for sport. Download the app now and
9: join our tribe!
0: Time check. Hum News, brought to you by Logic Finance Limited, changing lives with logic.
10: Good evening to you with the latest at 11. I'm Jeff Bryan. A 5.9 earthquake struck 40 k's north of Te Anau at 9:14 this evening. It was originally measured at 6.3. GeoNet has reported several smaller quakes since the initial shake, although all are of, quote, light or weak intensity, unquote. Strong and unusual currents and unpredictable surges are expected along the west coast of the South Island from Milford Sound to Pusiga Point. People in or near the sea should move out of the water, off beaches and shore areas, and away from harbours, marinas, rivers and estuaries. And people on boats and at marinas should leave their boats or vessels and move on to shore. Listen to local civil defence authorities and follow any instructions. The warning will be in place for several hours. In other news, firefighters go on strike tomorrow between midday and 1. Response times will be delayed in impacted areas as volunteer crews will be responding from the next closest location. And Iran's Revolutionary Guard says it's continuing to target US military sites in retaliation for American attacks and will continue to disrupt global energy markets. In sport, the Black Caps and the West Indies play Game 3 in the five-match ODI series from 6:30 in the morning. The series locked at 1-1. And the NBL basketball in Dunedin this evening, the Otago Nuggets beating the Bay Hawks 92-79 to clinch a place in the playoff series.
0: Sports News. Brought to you by Sona.

0: Murphy on Hum. Aapka Moment. Krish ka Magic. Only on Hum.
1: Welcome back, everyone. You're listening to number one Hum playing Bollywood's biggest hits. मैं रिदम एंड रोमांस लेकर बिल्कुल तैयार हूँ इस घंटे के लिए भी. हमारा फाइनल आवर है ये और आपने हमारा साथ दिया. थैंक यू सो मच. बहुत ही प्यारा लगा. उम्मीद करता हूँ कि जो इंटरेस्टिंग इवेंट्स पर जानकारी है और जो कम्युनिटी न्यूज़ पर जानकारी है वो आपको अच्छा लग रहा होगा. आप नोट कर रहे हैं अपने डायरी में कि किन किन डेट्स पर आप बिजी होंगे अपने फेवरेट इवेंट्स को अटेंड करने के लिए. क्रिश के साथ है और 12 तक हमारा साथ रहेगा. फिलहाल 30 मिनट्स ऑफ नॉन स्टॉप म्यूजिक सुनाने का टाइम आ चुका है जिसमें आपके लिए रहेगा 30 मिनट्स ऑफ लव रोमांस मेलोडी. एंजॉय एवरीवन.

0: the moment. Krishka Magic. Only on Hum.
1: आप सुन रहे हैं आपका नंबर वन हम प्लेइंग बॉलीवुड्स बिगेस्ट हिट्स क्रिश का साथ है। आज अगर आपका जन्मदिन है अ वेरी हैप्पी बर्थडे टीम हम की ओर से आपको हम विश करना चाहेंगे। बहुत सारी खुशियां, बहुत सारी बधाइयां हम आपको देना चाहेंगे। कुछ स्पेशल हो रहा है, कुछ प्लान किया गया है या आगे चलकर भी कुछ होने वाला है, आपके लिए तैयारियां हो रही है, तो इसके लिए भी बहुत सारी शुभकामनाएं आपको हम देना चाहेंगे। बस आपको हमारा साथ देना है। हैप्पी बर्थडे वंस अगेन टीम हम की ओर से बहुत सारी शुभकामनाएं। सुनते रहो हम, मैं क्रिश आपका साथ दे रहा हूँ।

0: Day on Hum.
1: Driving you home.
2: The Drive Show with Sandy and Rusby.
3: तो फिर सरिता के चप्पल का साइज क्या था?
4: तो उसने सरिता ने जाके मैडम को बोल दिया कि हाँ जी मेरे को जहाज मारा किसी ने,
5: वो भी आई लव यू वाला.
4: मैडम ने पकड़ लिया भी यहाँ भी किसने बनाया. वो एक लड़की थी, वो बोलती जहाज तो दिलजीत बना रहा था बेटा.
5: अच्छा आप दिलजीत तो
4: आए आए बताओगे यार.
2: Drive Show with Sandy and Rusby, brought to you by Beds R Us. Sleep easy for less at Beds R Us Manukau and Pukekohe. Sleepyhead Sleep Easy Queen Beds from only $7.99. On sale now. And Jimmy Taylor and team from West City Auto Group, the home of GWM Havel and Omura Jeku.
6: Arey Babita, thank you so much for giving me Guru's number, yaar.
7: Kyun? Kya hua?
6: Mujhe urgent kaam se Fiji jana tha. $20,000 chahiye the. Bank gayi to itne documents mange ki bas pooch hoi mat. Ek hafta ho gaya. No response. फिर तुमने गुरु का नंबर दिया और बस अगले दिन पैसे मेरे अकाउंट में. गुरु तो हो जा शुरू वाला काम है.
2: गुरु कैंडोला ऑफ लॉजिक फाइनेंस, अ हाउसहोल्ड नेम इन फाइनेंस एंड इंश्योरेंस इंडस्ट्री. कॉल 0800 लॉजिक जी, दैट्स 0800 564 424.
8: सो यू एंड द बॉयज हैव दैट माइल्डली इनअप्रोप्रिएट, एक्चुअली वेरी इनअप्रोप्रिएट ग्रुप चैट. Maybe it's time to balance it out with a more appropriate group, like Blood Buddies, a group that donates blood and plasma together. This winter, with all the dreaded lurgies around, NZ Blood needs blood and plasma more than ever. Yours could save lots of lives. No joke, it gives you that warm feeling inside. And you get free biscuits. The boys love biscuits. Get your Blood Buddies together and book now at nzblood.co.nz. Give blood, give plasma, save lives.
9: सोना संसार पापा टोटो के गहनों के साथ आप भी चमक जाएंगे.
10: चूड़ी, कंगन, पायल, बाली, झुमके और चोकर, ये सोना वही सोना संसार है जहां दिल्ली से लेकर दुबई तक के सभी गोल्ड ज्वेलरी डिजाइन्स मिलते हैं, समझे?
9: सोना संसार पापा टोटो, जहां था वहां अभी भी है. शॉप इनसाइड विद आजा डिजाइन स्टूडियो, कॉर्नर ऑफ ग्रेट साउथ रोड एंड ईस्ट तमाकी लाइट्स, पापा टोटो.
11: सोना संसार, 138 ग्रेट साउथ रोड, पापा टोटो. सोना संसार, यू आर नेवर टू ओल्ड फॉर gold.
12: Does your vacuum cleaner suck? Lawnmower not making the cut? Well, book your Auckland Council inorganic collection today and we could recycle it tomorrow. We collect items on your property and do everything we can to minimize landfill waste. To find out what's accepted, where to place it and how to book your collection, search Auckland Council Inorganics online. Tāmaki Tūtaki, all together Auckland.
13: Fresh or quality halal meat, unbeatable prices per Ali's Farm, Auckland. Aapka trusted licensed abattoir or butcher. Limited time offer. Whole goat carcass, sirf $15 per kilo. Spring lamb carcass, $17.50 per kilo. Or 30 kilo se zyada sheep carcass, sirf $12.50 per kilo. Halal certified, processed under MPI requirements or whole carcasses mein available hai. Curry pieces cutting bhi available hai. T's and C's apply. Ali's Farm, 1319 Alfriston Road, Alfriston. Call 027-530-1175.

रिदम एंड रोमांस यहीं पर खत्म होता है दोस्तों. आपने हमारा साथ दिया, थैंक यू सो मच, बहुत ही प्यारा लगा. अब हमारी मुलाकात होती है एक बार फिर, इनफैक्ट दो हफ्ते बाद हमारी मुलाकात होती है नाइट कैफे में. अपना बहुत ही ख्याल रखे, कृष का बहुत सारा प्यार, नमस्ते, गुड नाइट एवरीवन.

0: show with Vijay and Pooja.
1: बुरी प्लानिंग से आए हैं, शत प्रतिशत तुमको सुबह यहाँ से ले जाएंगे.
2: Those people who live around the Hunua area, वहाँ पर 1 degree है टेम्परेचर.
3: जितने भी लोग इस इलाके में हैं, enjoy करते रहे आप. West side है ना, west side of Auckland है ये. I have lots of fun basically with the cold weather.
2: कौन है?
3: Hunua और Waitakere.
2: अच्छा, Hunua west में.
3: किधर है Hunua?
0: The Breakfast Show with Vijay and Pooja.
4: Brought to you by Fortune. With whole grains and essential vitamins, Fortune fuels every win. Big or small, bring home the fortune. And Harrington Living at Bedsworth, Monaco. English heritage inspired furniture for everyday luxury living.
0: Weekdays, 6 to 10 a.m.

0: चाहे आप हम के दिन चैट बीस को चाहते हो या ब्रीज मोर एज रॉक या माय एफएम के वाइब्स, मीडिया वर्क्स के पास हर प्लेटफॉर्म का मैजिक है और आउटडोर एडवर्टाइजिंग का भी। बसेस, बिलबोर्ड्स, ट्रेन स्टेशंस, स्ट्रीट फर्नीचर, डिजिटल हो या स्टैटिक, वीव गॉट द स्पॉटलाइट फॉर योर ब्रांड। कॉल मी काशिका ऑन 021-769-755। मीडिया वर्क्स, मीडिया दैट वर्क्स।
1: आजकल लीगल इन्फॉर्मेशन पर सब ज्ञान देते हैं जैसे खुद कोई गूगल हो,
2: मगर सही गाइडेंस विद करेक्ट लीगल प्रोसेसेस तो एक ही है, सुपर जोड़ी ऑफ राजन आशिमा फ्रॉम लीगल एसोसिएट्स, नोटरी पब्लिक, बैरिस्टर्स एंड सॉलिसिटर्स।
3: लीगल एसोसिएट्स लॉ फर्म बेस्ड इन साउथ ऑकलैंड डील्स इन सेल एंड परचेज ऑफ बिजनेस एंड प्रॉपर्टी, लीजेस, सब डिविजन, इमिग्रेशन एंड क्रिमिनल लॉ, नोटरी सर्विसेज एंड पावर ऑफ अटर्नी। फॉर अपॉइंटमेंट्स विद राजा आशिमा कॉल ऑन 09279-9439 और विजिट legalassociates.co.nz।
4: Everyday burn hazards are hotter than they look. Act fast. Cool burns under running water for 20 minutes. And for serious or large burns, always call 111. Brought to you by the Burn Support Group and the MediaWorks Foundation.
5: Fresh or quality halal meat, unbeatable prices per Ali's Farm, Auckland. Aapka trusted licensed abattoir or butcher. Limited time offer. Whole goat carcass, sirf $15 per kilo. Spring lamb carcass, $17.50 per kilo. Or 30 kilo se zyada sheep carcass, sirf $12.50 per kilo. Halal certified, processed under MPI requirements or whole carcasses mein available hai. Curry pieces cutting bhi available hai. T's and C's apply. Ali's Farm, 1319 Alfriston Road, Alfriston. Call 027-530-1175.
6: Continuous Group continuously make our gutters last longer, featuring 33% more protective coating, and now FlowMate Leaf Protection, absolutely free. Contact your local Continuous Group at continuous.co.nz.

बीते लम्हों को अब हर पल जिए हम रिवाइंड के साथ। एक ऐसा सफर जहां हर गाना एक याद है, हर सुर एक कहानी। हम रिवाइंड, जहां संगीत सिर्फ सुनाई नहीं देता।

0: सिर्फ रोवा पर।
1: किसी प्रियजन को खोना परिवार या मित्र के लिए कठिन समय हो सकता है। जीवन में मृत्यु को छोड़कर सभी चीजें अनिश्चित है। हम सभी को मृत्यु की वास्तविकता का सामना करना पड़ता है और गरिमापूर्ण अंतिम संस्कार सेवा के माध्यम से प्रियजन के जीवन की अंतिम यात्रा भी करना महत्वपूर्ण है। We are Auckland's one-stop funeral service provider where responsible options and prices are offered. Anne's Funeral Home and On-Site Cremations, 11 Boulderwood Place, Wiri. Call 24/7 on 0927-88600.
2: For 30 years, Avara Cosmetic and Laser Clinic has helped Kiwis look and feel their best. Now they are celebrating with the timeless healing power of Ayurveda from Shankara Naturals USA. Discover luxurious Kansa facials, Ghee Sutra and Kumkumati oil facials and indulge in a 60-minute Abhyanga full body massage. Normally $149, now just $69. But hurry, the special offer is limited to the first 10 clients only. Book now at avana.co.nz.
3: Right now, your team could be winning. Sprinting. Pitching. Kicking. Sinbinning. And you need to know about it.
4: Join our tribe!
3: The Tribe app brings you live scores, real-time updates, and text commentary as it happens. It's the world of sport in your pocket on one app. Tribe, your destination for sport. Download the app now and
4: join our tribe!
5: Since 1991, Continuous Group continuously make our gutters last longer. Our continuous spouting comes with 33% more protective coating for superior durability. For a limited time, you'll also receive the latest Flowmate leaf protection system, valued at up to $550, absolutely free. Designed for performance, made for longevity, tailored to you. Contact your local Continuous Group at continuous.co.nz.
6: सुनो, बिल्स बढ़ते जा रहे हैं और महंगाई भी।
7: हाँ, मॉर्गेज भरना भी मुश्किल हो रहा है। सोच रहा हूँ घर बेच के छोटा घर ले लें।
6: घर बेचने से पहले NZPMI की पॉल से बात कीजिए। मेरे दोस्त ने भी की थी, अपनी जमीन पर नया घर और दो और घर बनवाए। अब रेंट भी आ रहा है।
7: पर डेवलपमेंट के पैसे
6: आपको नहीं लगाने, NZPMI सब संभाल लेगा। NZPMI, योर लोकल डेवलपमेंट एक्सपर्ट। फ्री साइट असेसमेंट के लिए विजिट nzpmi.co.nz या कॉल 0800-4NZPMI.
8: The beat of Bollywood.
9: World's best, हमारी कोई ब्रांच नहीं है।
8: Night Fly.

0: Download Rova to listen Hum 80s Jukebox.
1: सोना संसार पापा टोटो के गहनों के साथ आप भी चमक जाएंगे।
2: चूड़ी, कंगन, पायल, बाली, झुमके और चोकर, ये सोना वही सोना संसार है जहां दिल्ली से लेकर दुबई तक के सभी गोल्ड ज्वेलरी डिजाइन्स मिलते हैं, समझे?
1: सोना संसार पापा टोटो, जहां था वहां अभी भी है। शॉप इनसाइड विद आजा डिजाइन स्टूडियो, कॉर्नर ऑफ ग्रेट साउथ रोड एंड ईस्ट तमाकी लाइट्स, पापा टोटो।
3: सोना संसार, 138 ग्रेट साउथ रोड, पापा टोटो। सोना संसार, यू आर नेवर टू ओल्ड फॉर गोल्ड।
4: Trivision Entertainment and Ashik Homes Limited, in association with Mega Finance, Mortgages and More, and Peace of Mind Insurance, presents The Great Indian Comedy Night, featuring the Kapil Sharma Show stars Krishna Abhishek and Rajiv Thakur live on stage.
5: Wow, wow, mashallah, kya baat hai, kitna acha dance karte. Tum Govinda ka kuch lagta hai kya?
4: Saturday, 18th July, 7.

0: हम फिजी कीर्तन संग्रह की अपार सफलता के बाद भजन प्रेमियों के लिए पेश है हम फिजी भजन। प्रसिद्ध कलाकारों से फिजी भजन का मजा लीजिए कभी भी कहीं भी। हम फिजी भजन दुनिया का पहला 24/7 एक्सक्लूसिव एंड फ्री फिजी भजन प्लेटफॉर्म। डाउनलोड करें रोवा ऐप या hum.rova.nz पर सुने हम फिजी भजन।
1: आपके सामने एक रेड बटन है नहीं दबाना था।
2: The madness is back, धमाल 4.
3: गुलाबी साड़ी में तू लग रहा।
2: Starring Ajay Devgan, Arshad Varsi, Ritesh Deshmukh and Javed Jafri. Return in धमाल 4, directed by Indra Kumar.
4: गुलाड़ी बिना चटनी कैसे बनी?
2: Watch the biggest family entertainer, धमाल 4, in cinemas now.
5: पता नहीं ऐसे dangerous situation में मैं automatically आगे कैसे आ जाता?
6: Fresh or quality halal meat, unbeatable prices per Ali's Farm, Auckland. Aapka trusted licensed abattoir or butcher. Limited time offer. Whole goat carcass, sirf $15 per kilo. Spring lamb carcass, $17.50 per kilo. Or 30 kilo se zyada sheep carcass, sirf $12.50 per kilo. Halal certified, processed under MPI requirements or whole carcasses mein available hai. Curry pieces cutting bhi available hai. T's and C's apply. Ali's Farm, 1319 Alfriston Road, Alfriston. Call 027-530-1175.
7: The beat of Bollywood.
8: World's best, हमारी कोई ब्रांच नहीं है।

0: की भाग दौड़ में आप अपनी पसंद की चीजें नहीं कर पाते। आपको फीजी कीर्तन पसंद है लेकिन पता नहीं कब और कैसे सुने। हम फीजी कीर्तन संग्रह पर आप जब चाहे तब अपने फेवरेट कीर्तन का मजा ले सकते हैं। हम फीजी कीर्तन संग्रह दुनिया का पहला 24/7 फीजी कीर्तन प्लेटफॉर्म। डाउनलोड करें रोवा ऐप या hum.rova.nz पर सुने।
1: हम द बीट ऑफ बॉलीवुड
2: वर्ल्ड्स बेस्ट हमारी गुड ब्रांड्स भी है।

0: रॉ इमोशंस होते हैं रियल और कॉन्वर्सेशंस होते हैं बिना मास्क के.
1: राजा मंत्री चोर सिपाही सब यहाँ थे.
0: अनफिल्टर्ड विद सैंडी एंड रिस्पी ऑन रोवा स्पॉटिफाई और एनीवेयर यू गेट योर पॉडकास्ट.
2: प्रोफेशनल फाइनेंशियल्स है साथ आपके. लोन और इंश्योरेंस एक छत के नीचे. नो ब्रोकर चार्ज बस ट्रस्टेड एडवाइस. हर डील बनाए परफेक्ट राइट.
3: रीफाइनेंस के लिए कंपेयर करें डिफरेंट बैंक्स. लोन प्रोसेस हो सिंपल एंड फ्रैंक.
2: बिजनेस फाइनेंस या इनकम प्रोटेक्शन हो हर स्टेप पर गाइडेंस परफेक्ट हो. सब कुछ मिलेगा यही. अपना फ्यूचर सिक्योर बनाए.
3: प्रोफेशनल फाइनेंशियल सॉल्यूशंस योर फ्यूचर आवर प्रायोरिटी. कॉल 9846-9934 फॉर सर्च PFSL. T's and C's lending and credit criteria apply.
4: Everyday burn hazards are hotter than they look. Act fast. Cool burns under running water for 20 minutes. And for serious or large burns, always call 111. Brought to you by the Burn Support Group and the MediaWorks Foundation.
5: Being fussy is just knowing what you want. So be more fussy.
6: Celebrate the fussiness of every individual cat. Share in the unspoken language of leg rubs and scratches. Because your cat deserves meals created just for them. Meow. Fussy Cat is made with the meaty taste cats love. Delivering quality nutrition with delicious variety across every meal. Available at your local supermarket. Well, if they're fussy enough. Serve up the meaty taste cats crave. Fussy Cat. Be more fussy.
7: Fresh or quality halal meat, unbeatable prices per Ali's Farm, Auckland. Aapka trusted licensed abattoir or butcher. Limited time offer. Whole goat carcass, sirf $15 per kilo. Spring lamb carcass, $17.50 per kilo. Or 30 kilo se zyada sheep carcass, sirf $12.50 per kilo. Halal certified, processed under MPI requirements or whole carcasses may available hai. Curry pieces cutting bhi available hai. T's and C's apply. Ali's Farm, 1319 Alfriston Road, Alfriston. Call 027-530-1175.
8: Continuous Group continuously make our gutters last longer, featuring 33% more protective coating, and now FlowMate leaf protection, absolutely free. Contact your local Continuous Group at continuous.co.nz.
9: सुनो, बिल्स बढ़ते जा रहे हैं और महंगाई भी.
10: हाँ, मॉर्गेज बनना भी मुश्किल हो रहा है. सोच रहा हूँ घर बेच के छोटा घर ले लें.
9: घर बेचने से पहले NZPMI की पॉल से बात कीजिए. मेरे दोस्त ने भी की थी. अपनी जमीन पर नया घर और दो और घर बनवाए. अब रेंट भी आ रहा है.
10: पर डेवलपमेंट के पैसे
9: आपको नहीं लगाने. NZPMI सब संभाल लेगा. NZPMI योर लोकल डेवलपमेंट एक्सपर्ट. फ्री साइट असेसमेंट के लिए विजिट nzpmi.co.nz या कॉल 0800 4 NZPMI.
11: Night Fly.

ya tenía, ya tenía, ya tenía.

0: driving you home. The Drive Show with Sandy and Rusby.
1: तो फिर सरिता के चप्पल का साइज क्या था?
2: तो उसने सरिता ने जाके मैडम को बोल दिया कि हाँ जी मेरे को जहाज मारा किसी ने,
3: वो भी आई लव यू वाला।
2: मैडम ने पकड़ लिया भी हाँ भी किसने बनाया, वो एक लड़की थी वो बोलती जहाज तो दिलजीत बना रहा था बेटा।
3: अच्छा आप दिलजीत तो
2: आए आए बताओगे यार।
0: Drive Show with Sandy and Rusby, brought to you by Beds R Us. Sleep easy for less at Beds R Us Manukau and Pukekohe. Sleepyhead Sleep Easy Queen Beds from only $7.99. On sale now. And Jimmy Taylor and team from West City Auto Group, the home of GWM Havel and Omura Jaiku.
4: The beat of Bollywood.
5: World's best, hamari koi branch nahi hai.

0: ब्रेकफास्ट शो विद वीजे एंड पूजा।
1: पूरी प्लानिंग से आए हैं, शत प्रतिशत तुमको सुबह यहाँ से ले जाएंगे।
2: Those people who live around the Hunua area, वहाँ पर 1 degree है टेम्परेचर।
3: जितने भी लोग इस इलाके में हैं, enjoy करते रहे आप। West side है ना, west side of Auckland है ये। I have lots of fun basically with the cold weather।
2: कौन है?
3: Hunua और Waitakere।
2: अच्छा Hunua west में?
3: किधर है Hunua?
0: The Breakfast Show with Vijay and Pooja.

0: हैं जेट बीस को चाहते हो या ब्रीज मोर एज रॉक या माय एफएम के वाइब्स, मीडिया वर्क्स के पास हर प्लेटफॉर्म का मैजिक है और आउटडोर एडवर्टाइजिंग का भी, बसेस बिलबोर्ड्स ट्रेन स्टेशंस स्ट्रीट फर्नीचर डिजिटल हो या स्टैटिक, वीव गॉट द स्पॉटलाइट फॉर योर ब्रांड। कॉल मी काशिका ऑन 021-769-755। मीडिया वर्क्स, मीडिया दैट वर्क्स।
1: विसिटी GWM हैवल हाइब्रिड्स पेट्रोल और डीजल राइड्स का अल्टीमेट रेंज, हर लाइफस्टाइल के लिए परफेक्ट। जिमी टेलर और टीम से मिलो विसिटी ऑटो ग्रुप में एंड फाइंड योर नेक्स्ट ड्रीम राइड। स्टाइलिश हैवल जोलियन हाइब्रिड, पावरफुल हैवल X6 हाइब्रिड, रॉकेट टैंक 300, सब रेडी है सिर्फ आपके लिए। चेक vesityautogroup.nz या आज ही विजिट करो वेस्टगेट या हेंडरसन शोरूम। विसिटी GWM हैवल, वेयर योर नेक्स्ट एडवेंचर बिगिंस।
2: बॉलीवुड
3: वर्ल्ड्स बेस्ट, हमारी कोई ब्रांच नहीं है।

बीते लम्हों को अब हर पल जिए हम रिवाइंड के साथ। एक ऐसा सफर जहां हर गाना एक याद है, हर सुर एक कहानी। हम रिवाइंड, जहां संगीत सिर्फ सुनाई नहीं देता।

0: Weather update brought to you by Go Bananas Childcare, where learning is fun. Call 0800 462626.
1: गुड मॉर्निंग वेदर का हाल आज काफी कमाल लग रहा है वेदर. वैसे एक आध ऑड मॉर्निंग शावर हो सकता है लेकिन अब उसके बाद काफी फाइन वेदर रहेगा. साउथ वेस्टर्लीज का साथ रहेगा. फील्स लाइक 12 डिग्रीज राइट नाउ. ड्यूरिंग द डे टेम्परेचर इज गोइंग टू गो एज हाई एज 16 डिग्रीज. 7:30 बजे होगा सनराइज.
0: द ब्रेकफास्ट शो विद वीजे एंड पूजा
2: ब्रॉट टू यू बाय फॉर्च्यून विद होल ग्रेन्स एंड एसेंशियल विटामिंस. फॉर्च्यून फ्यूल्स एवरी विन, बिग और स्मॉल. ब्रिंग होम द फॉर्च्यून एंड हैरिंगटन लिविंग एट बेजरस मनको. इंग्लिश हेरिटेज इंस्पायर्ड फर्नीचर फॉर एवरीडे लग्जरी लिविंग.
0: ब्रेकफास्ट कैचअप
1: 6:05. गुड मॉर्निंग. ब्रेकफास्ट कैचअप में आपका स्वागत है. आज 17 जुलाई. टुडे इज फ्राइडे. वेल क्या है आपके प्लान्स फ्राइडे के? आज लास्ट डे ऑफ स्कूल हॉलीडेज ना वैसे. सो व्हाट्स योर प्लान? व्हाट्स हैपनिंग? बताइए मुझे, यहाँ पे अपडेट कीजिए. आज अलग एनर्जी है स्टूडियो में. वैसे अभी स्टूडियो ना काफ़ी सब कुछ डाउन था लेकिन देखो आपका प्यार है कि जस्ट अ मिनट बिफोर द वेदर अपडेट सब कुछ फिर से बैक ऑनलाइन आ गया एंड आई वॉज सक्सेसफुली एबल टू कम ऑन एयर विथ यू. बट हाँ, अभी ऑनर जो आया हूँ तो आपसे बात करने की चाह है मेरी. 0800 004866 इज द नंबर इफ़ यू वॉन्ट कॉल एंड टॉक अबाउट समथिंग, या फिर 5599 इज द नंबर टू मैसेज. शुरुआत करते हैं कुछ गानों के साथ और फिर लेकर आ जाऊँगा आपके लिए कुछ बातें. लेकिन हाँ, आज 17 जुलाई, अगर आपके लिए आज खास दिन है तो मुझे बताइएगा ज़रूर ऑन 5599.

0: Sunnyside app.
1: आज है फ्राइडे, तो अपबीट और पॉजिटिव रहने के लिए एक और रीजन की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि फ्राइडे मतलब होता ही है कि भाई आज मतलब एंड ऑफ वीक होने वाला है, एंड काफी लोग और भी एक्साइटेड होंगे क्योंकि इट्स द लास्ट डे ऑफ स्कूल हॉलीडेज एज वेल. हाउएवर एक बहुत ही बढ़िया सी न्यूज हाथ लगी है, और वो ये है कि काफ़ी बार ऐसे हो जाता है कि जैसे उम्र बढ़ने लगती है, घुटने दर्द करने लगते हैं, और फिर उसके कारण काफ़ी बार एट अ सर्टन एज नी रिप्लेसमेंट सर्जरी और ये सारी चीज़ें करानी पड़ती है. अब एक ब्रेक थ्रू आइडेंटिफाई हुआ है, एंड दिस कुड बी लिटरली अ ब्रेक थ्रू एंड लाइफ चेंजिंग फॉर अ लॉट ऑफ देम, क्योंकि अब साइंटिस्ट ने एट स्टैनफोर्ड मेडिसिन उन्होंने अनकवर किया है एक लैंडमार्क वे टू पोटेंशली रिवर्स कार्टिलेज लॉस इन एजिंग जॉइंट्स. सो यूजली कार्टिलेज का लॉस होता है नीज में से, जिसके कारण नी रिप्लेसमेंट सर्जरी करनी पड़ती है, लेकिन अब उन्होंने एक स्टडी में ये आइडेंटिफाई किया है कि अगर एक स्पेसिफिक प्रोटीन 15 PGDH को ब्लॉक कर दे तो वो नेचुरली इंक्रीज कर देता है द सप्रेस जो टिश्यूज रिपेयर है उसको इंक्रीज कर लेता है, एंड उसके कारण जो है ये जो कार्टिलेज डिग्रेडेशन है ये स्टॉप हो जाएगा. देखो यार, मैं डॉक्टर तो हूँ नहीं और साइंस ज़्यादा मैंने पढ़ा भी नहीं है, मेरे साइंस के मार्क्स अगर मैं आपको बताऊँगा तो मतलब आप सुनना ही बंद कर दोगे. एनीवे तो लेकिन ये इसके अराउंड मैं बस ये बोल रहा हूँ कि एक रिसर्च ऐसा हो रहा है, साइंटिस्ट बहुत मेहनत से काम कर रहे हैं जहाँ पे वो जो घुटनों का दर्द है उसको रिवर्स कर सकते हैं, तो आपके घुटने अब ज़्यादा लंबे तक चल सकते हैं होपफुली इन द कमिंग टाइम. सो या देयर इज अ लॉट ऑफ स्टडीज हैपनिंग अराउंड लॉट ऑफ एलिमेंट्स, एंड होपफुली ये कुछ नई बीमारियां नहीं लेकर आए हमारे लिए. बट या एनीवे, दिस इज द सनी साइड अप सेगमेंट, तो पॉजिटिव न्यूज ओनली, पॉजिटिव वाइब्स ओनली. सो यस, घुटने अभी हमारे ज्यादा लंबे चल सकते हैं.
0: Breakfast show with VJ and Pooja.
2: Chubo jao, papi ho. Chubo jao.
3: 80s ke retro gaane.

0: Download Rova to listen Hum 80s Jukebox.
1: अरे बबीता, thank you so much for giving me गुरुज नंबर यार.
2: क्यों? क्या हुआ?
1: मुझे अर्जेंट काम से फीजी जाना था. $20,000 चाहिए थे. बैंक गई तो इतने डॉक्यूमेंट्स मांगे कि बस पूछो ही मत. एक हफ्ता हो गया, नो रेस्पॉन्स. फिर तुमने गुरु का नंबर दिया और बस अगले दिन पैसे मेरे अकाउंट में. गुरु तो हो जा शुरू वाला काम है.
3: गुरु कैंडोला ऑफ लॉजिक फाइनेंस, अ हाउसहोल्ड नेम इन फाइनेंस एंड इंश्योरेंस इंडस्ट्री. कॉल 0800 LOGIC G, दैट्स 0800 564 424. Grab a bargain at Mitre 10 Mega Westgate or Henderson. Score 20% off selected wet and forget, 20% off gold air panel or oil column heaters, or selected accent interior paints, sirf $79 each. Only at Mitre 10 Mega Westgate or Henderson.
4: क्या बात है उस खाने में जो पूरे घर को डाइनिंग टेबल पर ले आए. वो खुशबू और वो असली मसालों का स्वाद. ब्रिंग होम एवरीवन्स फेवरेट शान फूड्स रेसिपी मिक्सेस. बॉम्बे बिरयानी हो या बटर चिकन, कोरमा या चना मसाला रेसिपीज, चाहे वेजिटेरियन हो या नॉन वेजिटेरियन, शान रेसिपी मिक्सेस हर डिश को बिल्कुल घर जैसा बनाती है. तो इंतजार किस बात का? आज ही अपने नजदीकी सुपरमार्केट से शान रेसिपी मिक्सेस खरीदिए. शान फूड्स, असली स्वाद हर घर के लिए.
5: The Bedzara's birthday sale is on now with amazing savings, like the chiropractic HD Radiate bed, now half price, queen size from 2799. Find more birthday deals in store and online. Bedzara's, Merikau and Poke Kohe, celebrating 36 years of great sleep.
6: Playing Bollywood's biggest hits.
7: The Breakfast Show with Vijay and Pooja.
8: Brought to you by Fortune. With whole grains and essential vitamins, Fortune fuels every win. Big or small, bring home the fortune. And Harrington Living at Bedzara's Manco. English heritage-inspired furniture for everyday luxury living.
9: Bollywood's most wanted.
10: Kundi khadao, ya seedha andarao.
11: Main lao apna A-game.
7: Brought to you by Indelible Homes. Build your dreams.

0: Global Headlines.
1: Well, Global Headlines में आज ऐसी एक न्यूज़ है जो ग्लोबल न्यूज़ बन चुकी है, but it's pertaining to New Zealand and Australia. ICC, the International Cricket Council, इन्होंने अनाउंस किया है T20 World Cup 2028 जो co-host होने वाला है by Australia and New Zealand. तो 2028 मतलब अभी दो साल बाद जो T20 World Cup होगा वो होगा ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में. इट्स अ ग्रेट न्यूज़ जहाँ पे एक नया फॉर्मेट भी इंट्रोड्यूस होने वाला है, एक नया स्ट्रक्चर इंट्रोड्यूस होने वाला है फॉर T20 जिसमें देयर इज गोइंग टू बी 55 मैचेस खेले जाने वाले हैं और कुछ सुपर 10 का एक फेज होने वाला है जहाँ पे दो पूल्स होंगे और जहाँ पे दोनों पूल्स में से जो टीम्स टॉप पे रहेगी वो सीधा सेमीफाइनल्स के लिए सिलेक्ट हो जाएगी. सो या इट्स गोइंग टू बी क्वाइट इंटरेस्टिंग. और भी डिटेल्स इसके जैसे आएंगे आप तक पहुंचाएंगे. बट टॉकिंग अबाउट समथिंग इन न्यूजीलैंड, तो एक अर्थक्वेक हुआ था पिछले रात, कल रात को अराउंड 9:14 को टियानाओ के आसपास, एंड जिसके कारण काफ़ी लोग हिल गए. मतलब देयर्स सम वीडियोज़ दैट वर आउट एंड काफ़ी लोगों ने कहा है कि इट फेल्ट like you know the trucks move something like that, like it's been quite a crazy one. Lekin scene ye hai ki ab damage kya hua hai iske bare mein pata chalega once we have more daylight. So daylight ka intezar hai to assess the damage. We'll keep you posted kya ho raha hai wahan pe, but for now things are looking under control.

0: Accurate traffic.
1: Kitchen Mania, 17th birthday.
2: A bit cloudy, fine spells increasing, 16 hour high today. Into the city, a fairly calm drive on all motorways at the moment, not really slowing down much at all. Northern, just a bit of traffic here and there. 17 minutes in from Constellation Drive is speedy. Northwestern, 18 in from Massey. Again, a pretty quick drive the whole way in. Southern, building south of Monaco as it normally does, 22 minutes Monaco to town.
1: You could win 10K when you order your new Kitchen Mania kitchen. T's and C's apply.
3: Everyday burn hazards are hotter than they look. Act fast. Cool burns under running water for 20 minutes. And for serious or large burns, always call 111. Brought to you by the Burn Support Group and the MediaWorks Foundation.
4: For 30 years, Avaara Cosmetic and Laser Clinic has helped Kiwis look and feel the best. Now they are celebrating with the timeless healing power of Ayurveda from Shankara Naturals USA. Discover luxurious Kansa facials, Ghee Sutra and Kumkumati oil facials and indulge in a 60-minute Abhyanga full body massage. Normally $149, now just $69. But hurry, the special offer is limited to the first 10 clients only. Book now at avaara.co.nz.
5: Each season, our growers bring you only the freshest seasonal produce, like New Zealand-grown loose avocados, a fresh deal at just $2 for $3.50. That's the fresh food feeling at Woolworths. T's and C's apply.
4: Shine Dental has a fresh new look with more space and the same caring team. New patients ke liye ultrasonic scale and polish from $99 or one tooth acrylic denture sirf $599 mein. Plus free dental examinations for new and existing patients. Free wins and ACC codes or under 18s ke liye free treatment. Visit Shine Dental at 574 Great South Road, Manukau. Book today on 09277644. T's and C's apply.
6: Fresh or quality halal meat, unbeatable prices per Ali's Farm, Auckland. Aapka trusted licensed abattoir or butcher. Limited time offer. Whole goat carcass, sirf $15 per kilo. Spring lamb carcass, $17.50 per kilo. Or 30 kilo se zyada sheep carcass, sirf $12.50 per kilo. Halal certified, processed under MPI requirements or whole carcasses may available hai. Curry pieces cutting bhi available hai. T's and C's apply. Ali's Farm, 1319 Alfriston Road, Alfriston. Call 027-530-1175.
7: The Breakfast Show with Vijay and Pooja.
8: Brought to you by Fortune. With whole grains and essential vitamins, Fortune fuels every win, big or small. Bring home the fortune. And Harrington Living at Bedzaras, Manukau. English heritage-inspired furniture for everyday luxury living.
7: Breakfast Catch-Up.
9: ब्रेकफास्ट कैचअप में आज बॉलीवुड की बातें भी आपके साथ यहां पर शेयर करते हैं. 6:32 राइट नाउ ऑन द क्लॉक. एंड परेश रावल, अक्षय कुमार अगेन इन न्यूज़. परेश रावल ने फिर से एक इंटरव्यू दिया और उसमें पता नहीं क्यों उनके हर इंटरव्यू में अक्षय कुमार का जिक्र हो ही जाता है और बीफ वाला ही जिक्र हो जाता है. नहीं, नॉट खाने वाला बीफ, बट मारा मारी वाला बीफ. वैसे परेश रावल ने क्लेम किया है कि OMG 2 जो रिलीज़ हुई थी, बाद में अक्षय कुमार ने रिलीज़ की थी, वो ओरिजिनली जो आइडिया था, स्क्रिप्ट था, वो सब था, वो परेश रावल का आइडिया था. उन्होंने डायरेक्टर्स के साथ मिलकर, राइटर्स के साथ मिलकर ये प्लान किया था कि उनको ऐसा कंसेप्ट पे कुछ बनाना था और उनका फंडा क्लियर था. वो बोले कि मेरे को भगवान नहीं दिखाना है OMG 2 में, और इसलिए वो अक्षय कुमार को अप्रोच नहीं कर रहे थे, बिकॉज ही डिडंट वॉन्ट इट टू साउंड लाइक अ सीक्वल ऑफ OMG. OMG बहुत बढ़िया मूवी थी. OMG 2 इतनी नहीं चली बिकॉज उसमें वही लोगों को कंसेप्ट ही नहीं समझा कि भाई इसमें भगवान का क्या काम है, जो कंसेप्ट वो लेकर आए थे उसमें. बट एनी वे, मेकर्स का कोई और प्लान था एंड दे अप्रोच अक्षय कुमार. अक्षय कुमार बोले चलो डन. एंड देन स्क्रिप्ट में भी थोड़े बहुत चेंजेस हुए और फिर अक्षय कुमार ने अप्रोच भी किया परेश रावल को कि भाई चलो तो आप भी आ जाओ, थोड़ा ब्रांड OMG वाला मज़ा आएगा. बट परेश रावल बोले कि नहीं भाई, नॉट फॉर मी, क्योंकि ही डिडंट बिलीव इन द स्क्रिप्ट, ही डिडंट बिलीव इन द कंसेप्ट जो अपडेटेड था. ये इन्होंने अभी शेयर किया है.

0: हम फिजी कीर्तन संग्रह की अपार सफलता के बाद भजन प्रेमियों के लिए पेश है हम फिजी भजन। प्रसिद्ध कलाकारों से फिजी भजन का मजा लीजिए कभी भी कहीं भी। हम फिजी भजन्स दुनिया का पहला 24/7 एक्सक्लूसिव एंड फ्री फिजी भजन प्लेटफॉर्म। डाउनलोड करें रोवा ऐप या hum.rova.nz पर सुने हम फिजी भजन्स।
1: Accurate traffic.
2: Kitchen mania. 17th birthday.
3: A bit cloudy. Fine spells increasing. 16 hour high today. Into the city, a fairly calm drive on all motorways at the moment. Not really slowing down much at all. Northern, just a bit of traffic here and there. 17 minutes in from Constellation Drive is speeding. Northwestern, 18 in from Massey. Again, a pretty quick drive the whole way in. Southern, building south of Monaco as it normally does. 22 minutes Monaco to town.
2: You could win 10k when you order your new Kitchen Mania kitchen. T's and C's apply.
4: Professional financials has saath aapke. लोन और इंश्योरेंस एक छत के नीचे नो ब्रोकर चार्ज बस ट्रस्टेड एडवाइस हर डील बनाए परफेक्ट राइट
5: रीफाइनेंस के लिए कंपेयर करें डिफरेंट बैंक्स लोन प्रोसेस हो सिंपल एंड फ्रैंक
4: बिजनेस फाइनेंस या इनकम प्रोटेक्शन हो हर स्टेप पर गाइडेंस परफेक्ट हो सब कुछ मिलेगा यही अपना फ्यूचर सिक्योर बनाए
5: प्रोफेशनल फाइनेंशियल सॉल्यूशंस योर फ्यूचर आवर प्रायोरिटी कॉल 09846-9934 और सर्च PFSL T's and C's लेंडिंग एंड क्रेडिट क्राइटेरिया अप्लाई.
6: Parents, I see you. You need to make a quick pop to the shops. Then boom! One kid has a last minute birthday invite, another kid has gum in their hair, and you've got work calls up the wazoo. That quick trip to the shops? Not happening. Don't go out. Tap in. Get prezzies, cards and hair stuff from the warehouse, and dinner from your local, delivered to your door with DoorDash. Now that's a good call.
7: Dash!
5: Trivision Entertainment and Ashik Homes Limited in association with Mega Finance, Mortgages and More and Peace of Mind Insurance presents The Great Indian

थ्रोबैक में आपके लिए एक मस्त सा गाना लेकर आऊंगा, और आज जो गाना आपके लिए थ्रोबैक में लेकर आ रहा हूँ, ये आर्टिस्ट मुझे लगता है मेरे मतलब वन ऑफ द वो क्या बोलते हैं उसको, गिल्टी प्लेजर्स या बिकॉज मतलब ही इज़ एडिक्टिव, दिस लाइक आर्टिस्ट इज़ वेरी एडिक्टिव इनके गाने, बट फिर आपको क्रिंज भी लगते हैं काफ़ी बार, बट मज़ेदार है। एनीवे कल रेडी हो जाइए हंसने के लिए, क्योंकि कल यहाँ पे हम विटनेस करने वाले हैं वन ऑफ द बिगेस्ट कॉमेडी इवेंट्स, द ग्रेट कॉमेडी नाइट। कृष्ण अभिषेक और राजीव ठाकुर ऑलरेडी हमारे सुपर सिटी में आ गए हैं, उनकी स्टोरी देख ली मैंने, एंड दे आर सुपर एक्साइटेड टू एंटरटेन यू। अगर आपने टिकट्स अब तक नहीं लिए तो टिकट्स ले लीजिए, कल ही होने वाला है शो। आई एम नॉट इवन श्योर कितने टिकट्स अभी बाकी होंगे, बहुत कम टिकट बाकी होंगे, बट या यू कैन चेक इट आउट, bookmyevent.co.nz पे जाके आपको डिटेल्स मिल जाएंगे। टुमारो सैटरडे 18 जुलाई विक्ट्री कन्वेंशन सेंटर में ये शो होने वाला है, एंड देयर इज आफ्टर पे ऑप्शन ऑल्सो अवेलेबल। अगर आपको टिकट्स चाहिए लेकिन पेमेंट बाद में करना है, आप वो भी कर सकते हो। बढ़िया नॉन स्टॉप लाफ्टर और हिलेरियस लाइव परफॉर्मेंसेस के लिए आप तैयार हो जाइए, रेडी हो जाइए, बिकॉज इट्स गोइंग टू बी अ फन नाइट। सो या टुमारो इट्स एट विक्ट्री कन्वेंशन सेंटर। इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं कि करण औजला के अगर पासेस आपको जीतने हैं तो कभी भी बच सकता है करण औजला का गाना, आपको बस सुनते रहना है, बिकॉज जैसे ही उनका गाना बजता है आपने यहाँ पे के ए कीवर्ड के साथ कौन सा गाना आपने सुना उनका, और वो 5599 पे भेजना है, एंड योर नेम विल बी इन द ड्रॉ टू विन अ डबल पास फॉर करण औजला, जो कॉन्सर्ट होने वाला है 25 अगस्त को स्पार्क अरीना में। बट अभी के लिए इट्स टाइम फॉर नन अदर देन हमारे 2000s के लेजेंड, यस इट इज़ हिमेश रेशमिया। और आज मैं और भी ज़्यादा हिमेश रेशमिया को याद कर रहा हूँ, क्योंकि आज मेरा भी आवाज़ काफ़ी नाक से आ रहा है, थोड़ी हालत थोड़ी पतली है आज, सो दैट्स वाई इन दैट मेमोरी इट्स हिमेश रेशमिया सॉन्ग फॉर यू।

By the way, 7 बजे के बाद आपके लिए यहाँ पे राशि वाइब्स भी ले आऊंगा, और अगर आज आपका बर्थडे है, एनिवर्सरी, कोई खास दिन, तो मुझे बताइएगा जरूर, आपके लिए वो विशेस भी यहाँ पे लेकर आऊंगा मैं। राशि वाइब्स में कौन सी ऐसी राशि है जिसका आपको एकदम डिटेल में थोड़ा एक्स्ट्रा चाहिए, बताइए मुझे 5599 पे BF कीवर्ड के साथ। होपफुली मैं कोशिश करूंगा कि आपके लिए थोड़ी और मेहनत और जान डालूं।

0: accurate traffic.
1: Wardrobes Direct, great value wardrobes.
2: Fine today with cloud burning off, more sunshine through the day, 16-hour high. No delays for flights at the airport, no fog this morning to do that like the last couple of days. And driving is totally fine so far this morning. All motorways very quick into the city. Just got a slow patch at Manurewa and Papatoetoe on the southern and southwestern. Little slow northbound through Whitty.
1: Wardrobes and sliding doors for all budgets. Visit Wardrobes Direct, Mount Wellington and Silverdale showrooms.
3: आजकल लीगल इन्फॉर्मेशन पर सब ज्ञान देते हैं जैसे खुद कोई गूगल हो
4: मगर सही गाइडेंस विद करेक्ट लीगल प्रोसेसेस तो एक ही है सुपर जोड़ी ऑफ राजन आशिमा फ्रॉम लीगल एसोसिएट्स नोटरी पब्लिक बैरिस्टर्स एंड सॉलिसिटर्स
5: लीगल एसोसिएट्स लॉ फर्म बेस्ड इन साउथ ऑकलैंड डील्स इन सेल एंड परचेज ऑफ बिजनेस एंड प्रॉपर्टी लीजेस सब डिविजन इमिग्रेशन एंड क्रिमिनल लॉ नोटरी सर्विसेज एंड पावर ऑफ अटर्नी फॉर अपॉइंटमेंट्स विद राजा आशिमा कॉल ऑन 09279439 और विजिट legalassociates.co.nz
6: Everyday burn hazards are hotter than they look. Act fast. Cool burns under running water for 20 minutes. And for serious or large burns, always call 111. Brought to you by the Burn Support Group and the MediaWorks Foundation.
7: Ski-gi. Yeah, it's a real word now. Verb. To stop in Fiji before you hit the slopes. Because why fly straight to the snow when your island paradise is on the way? Land in paradise, soak up the sun, and then go shred Japan. Or hit the slopes in Vancouver. Rather unwind a pre-ski, relax and recover in Fiji on your way back home. This winter, don't just ski, ski-gi. Check out fijiairways.com/ski-gi.
8: Please use your imagination for the following ad.
9: If I won Powerball, I'd do some spending. Yep, I'd spend some time with... And we'd enjoy a whole lot of...
8: Imagine winning $30 million this Saturday. Play in store or online.
10: सुनो बिल्स बढ़ते जा रहे हैं और महंगाई भी
11: हाँ मॉर्गेज भरना भी मुश्किल हो रहा है सोच रहा हूँ घर बेच के छोटा घर ले लें
10: घर बेचने से पहले NZPMI की पॉल से बात कीजिए मेरे दोस्त ने भी की थी अपनी जमीन पर नया घर और दो और घर बनवाए अब रेंट भी आ रहा है
11: पर डेवलपमेंट के पैसे
10: आपको नहीं लगाने NZPMI सब संभाल लेगा NZPMI योर लोकल डेवलपमेंट एक्सपर्ट फ्री साइट असेसमेंट के लिए विजिट nzpmi.co.nz या कॉल 0800-4NZPMI
12: Time check. Hum News. Brought to you by Logic Finance Limited. Changing lives with Logic.
13: Morning, I'm Grace Cocker with the latest at 7. Southland residents will be inspecting their properties this morning after the region was rocked by a 5.9 quake. It was felt by more than 18,000 people last night and prompted a tsunami evacuation, which was later cancelled. Mayor Rob Scott says minor damage has been reported.
14: Cracks and the likes in some people's houses, but I think the day breaks, people will be able to have a good assessment.
13: The Justice Committee will hear from Retail NZ this morning about the controversial move on orders for rough sleepers. Chief Executive Carolyn Young says it needs to strike a balance.
15: It's a complex space and this is quite a blunt instrument to think about one group of people rather than what does a broader community need.
13: Switzerland has agreed to start talks with New Zealand about a possible free trade agreement. Officials will hold their first meeting in September. Residents in Gisborne are being asked to look out for dangerous driving around Churchill Park. The council says the lawn has been getting repeatedly damaged by drivers doing donuts. A former CEO has been sentenced to 12 years jail for his role in the deadly collapse of a bridge in the Italian city of Genoa. 43 people were killed when a section of the motorway gave way in a rainstorm 8 years ago. Another top official was jailed for 11 years. In sport, rugby with shift four, Josh Morby will make his first start for the All Blacks against Ireland at Eden Park tomorrow night. The Hurricanes outside back is on the left wing ahead of Caleb Clark, who's on the bench. Coach Dave Rennie explains why Morby got the nod.
16: Josh is very good defensively. He's really good high ball. He's got a massive work rate and he's on both sides of the park.
13: And the Broncos have snapped an 8-game NRL losing streak with an upset 14-12 win over the Panthers.
12: Sports News. Brought to you by Sona Sansar, Papatoi and Mount Roskill. Weather update. Brought to you by Go Bananas Childcare, where learning is fun. Call 0800 462626.
17: Weather ka hal aaj kafi kamal feels like 12 degrees. Overnight temperature is going to be as low as 11, but during the day temperature is going to go as high as 16 degrees. Southwesterlies ka saath rahega. Ek hal morning mein aur shower ho sakta hai, but after that it's going to be quite fine. 7:30 a.m. ko hoga sunrise.
12: Bollywood ke sabse bade hit gaane. Zara le le tu maza. Hum playing Bollywood's biggest hits. Yeah. The Breakfast Club. Breakfast Show with Vijay and Pooja.
0: Brought to you by Fortune. With whole grains and essential vitamins, Fortune fuels every win, big or small. Bring home the fortune. And Harrington Living at Bedzaras, Monaco. English heritage inspired furniture for everyday luxury living.
12: Get up, get up. Good morning. Morning Madness.
17: गुड मॉर्निंग, मॉर्निंग मैडनेस में आपका स्वागत है। 7:02। हाय, मेरा नाम है रुजबे और मैं हूँ आपके साथ यहाँ पे 10 बजे तक ब्रेकफास्ट शो में, बिकॉज विजय एंड पूजा आर अवे दिस वीक एंड इट इज फ्राइडे। व्हाट अ वीक इट हैज बीन यार, मतलब पूरा फॉगी वीक रहा। आज का दिन काफ़ी क्लियर है, मोटरवेज भी काफ़ी क्लियर है। आज फ्राइडे का दिन, स्कूल हॉलीडेज का लास्ट डे। व्हाट्स इन स्टोर फॉर यू टुडे? वेल, राशि वाइब्स में आपको थोड़ा बहुत आइडिया आ जाएगा कि कैसा आपका आज का दिन गुजरने वाला है। एक छोटा सा एंटरटेनिंग सेक्शन होता है ये, जहाँ पे हम आपको एक अंदाज़ा देते हैं कि आपका आपके राशि के अकॉर्डिंग, आपके स्टार साइन या सन साइन के अकॉर्डिंग आपका दिन कैसा गुजरने वाला है। उसके बाद आपके लिए बर्थडे ग्रीटिंग्स ले आऊँगा इस घंटे। और आपको बता दूँ, बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स हो रहे हैं जिसके में पार्ट लेने का मौका भी आपको मिलेगा और जिसमें आप इंटरेक्ट भी हमारे साथ यहाँ पे कर सकते हैं 5599 पे मैसेज करके या फिर 0800 004866 पे कॉल करके। यार देखो, मेरे आवाज़ सुन के आपको ऐसा लग रहा होगा कि यार ये क्या हो गया, इसकी आवाज़ को थोड़ा सा ऑफ चल रहा है। अगर आप सुन रहे हो पिछले 2-3 दिनों से तो आपको पता है ये थोड़ा हालत पतली है, बट इट इज़ आई थिंक इन दी एयर। हम लोग पता नहीं यार ये बार बार बीमार हो रहे हैं इस सीज़न। मैंने नोटिस किया है, क्या आपने भी ये नोटिस किया है कि पहले होता था ऐसा ना कि एक बार तुम बीमार हो गए फिर वो चला गया, फिर वो सीज़न के लिए तुमने टिक ऑफ कर लिया कि हाँ हो गए भाई बीमार एक बार। ये बार ऐसा हो रहा है कि बार बार बीमार पड़ रहे हैं यार। और ये सिर्फ मेरे साथ नहीं हो रहा है, ये मैं काफ़ी लोगों के साथ ये ट्रेंड देख रहा हूँ कि एक महीने में बीमार हुए फिर वापस एक और महीने बीमार हो रहे हैं। क्या आपके साथ भी ऐसा कुछ हुआ है? अगर हुआ है तो कॉल करके बताइए मुझे यहाँ पे यार 0800 004866 कि क्या तरकीबें आपने अपनाई जिससे आपने ये सबको दूर कर दिया आपसे बीमारियों को, बताइए मुझे ज़रूर। 5599 पे मैसेज करके भी आप बता सकते हैं। लेकिन अभी के लिए गाने सुनते हैं। गाने सुनने के बाद आपके लिए सीधे लेकर आऊँगा मैं राशि वाइब्स। क्या कहती है आपकी राशि आज आपके लिए?

0: राशि वाइब्स।
1: राशि वाइब्स आपके लिए यहाँ पे लेकर आते हैं, जहाँ पे आज आपकी राशि आपके लिए क्या कह रही है इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। क्या आप है तैयार? वेल, मैं तो हूँ तैयार। तो चलो शुरू करते हैं। एरीज यानी कि मेष राशि, आपसे आज मर्क्यूरी रेट्रोग्रेड पुराने प्रोजेक्ट्स खत्म करने का इशारा दे रहा है। बॉस बनने की कोशिश मत करना, नहीं तो कलीग्स तुम्हारे हॉर्न्स तोड़ देंगे। फोकस ऑन योर वर्क और आज चिल्ड आउट रहो। तो आपके लिए एरीज कहा गया है कि पुराने काम खत्म करो लेकिन बॉस मत बनो। टॉरस यानी कि वृषभ राशि, आपके लिए कहा है क्रिएटिविटी एकदम पीक पर है, कुछ नया ट्राई करो, लेकिन ध्यान रखना वॉलेट पर कंट्रोल रखना जरूरी है। ऑनलाइन शॉपिंग के चक्कर में बजट का कचरा मत कर देना। पता नहीं टॉरस को हमेशा कंजूसी बनाते हैं यार। जेमिनी मिथुन राशि, आपको कहते हैं, आपके लिए कहा है आज मार्स तुम्हारे साइन में बैठा है, एनर्जी फुल हाई है, पुरानी पेंडिंग्स निपटाने के लिए अच्छा दिन है। बस ईमेल सेंड करने से पहले डबल चेक कर लेना, वरना ब्लंडर पक्का है। आज आप अटेंशन टू डिटेल पे फोकस कीजिए जेमिनी। कैंसर यानी कि कर्क राशि, आपके लिए कहा है आज तो फुल स्मूथिंग चलेगी, सबसे बातें करने का मन करेगा, वर्क पर परफॉर्मेंस बढ़िया रहेगी, बस चुगलियों से थोड़ा दूर रहे, बाकी दिन सॉलिड है आपका। चुगली से दूर रहना ही तो मुश्किल है ना भाई। चुगली एक चीज है जो हमें मोटिवेट रखती है हमेशा, काम पे जाने का मन करता है। लियो सिंह राशि, आपके लिए जुपिटर तुम्हारे साइन में है तो अबंडेंस अट्रैक्ट हो रही है, सुंदर चीजें खरीदने का मन करेगा, पर शौक बड़ी चीज है, इसके चक्कर में अकाउंट खाली मत करना। लेट योर वर्क स्पीक टूडे, आज आप मत ज़्यादा बात करना, अपने काम को बात करने देना। वर्गो कन्या राशि, आपके लिए कहा है मून और वीनस का कॉम्बिनेशन तुम्हारे साइन में है, तुम तो बिल्कुल गुलाब जामुन बने हुए हो, मीठा मीठे और सबके फेवरेट, सोशलाइजिंग के लिए टॉप डे है, नए कपड़े खरीद लो। क्या बात है वर्गो, आज आपके तो मजे ही है। लीब्रा तुला राशि, आपके लिए कहा है कॉस्मिक कॉन्ट्रडिक्शंस चल रहे हैं, एक तरफ अटेंशन मिल रही है और जिम्मेदारियां बढ़ रही है, दूसरी तरफ मन चद्दर तानकर सोने का है, मतलब आपका जो मन है वो चद्दर तानकर सोने का है। लेकिन आज आपके लिए एडवाइस ये दे रहे हैं कि लो की रहो और कोई फोर्स नहीं है, मतलब आज आप सुमड़ी में रहो आज, मतलब आज चुपचाप शांत रहो। स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि, आपके लिए कहा है फ्रेंडशिप्स पर ध्यान रहेगा, हो सकता है कोई पुराना दोस्त थोड़ा ज्यादा स्पेशल लगने लगे, प्रोफेशनल साइड पर धमाल मचाने का टाइम है, बस थोड़ा पेशेंस मेंटेन रखना। सेजिटेरियस धनु राशि, आपके लिए कहा है लोग तुम्हारी प्राइवेट लाइफ में बड़ा इंटरेस्टेड है आज, गॉसिप चल रही है, डैमेज कंट्रोल के लिए रेडी रहो, कुछ नया सीखने को मिले तो मौका मत छोड़ना। कैप्रिकॉन मकर राशि, आपके लिए कहा है डेली रूटीन से पक चुके हो और अब भागने का मन है, अगर लंबा ट्रैवल नहीं हो सकता तो किसी नए कैफे में ही चले जाओ, कंसिस्टेंसी तुम्हारी ताकत है, धीरे धीरे ही सही तुम आगे बढ़ रहे हो। क्या बात है मकर राशि कैप्रिकॉन, आपके लिए काफी मोटिवेटिंग है आज का दिन। एक्वेरियस कुंभ राशि, आपके लिए कहा है मर्क्यूरी रेट्रोग्रेड की वजह से काम में छोटी मोटी सिली मिस्टेक्स हो सकती है, पर टेंशन नहीं लेने का, पुराने फाइनेंशियल्स मामले या उधारी निपटाने के लिए आज का दिन बेस्ट है। तो हाँ, जो भी कर्जा है आज निपटा दो, सारे अपने क्रेडिट कार्ड बिल्स आज क्लियर करने का दिन है। पाइसेस यानी कि मीन राशि, आपके लिए कहा है घर पर थोड़ी हलचल और क्योस हो सकता है, शायद कोई पुराना गेस्ट या ओल्ड फ्लेम टपक पड़े, अपने करियर को लेकर थोड़ा लॉन्ग टर्म सोचो, शॉर्टकट्स आज काम नहीं आएंगे, तो नो शॉर्टकट्स टुडे, टुडे ओनली लॉन्ग टर्न्स। वेल, ये थे आज आपके राशि फल, राशि वाइब्स। बताइए आपको, अब आपने कल जो सुना था, क्या आपको लगा कि कुछ रेलेवेंट था? मतलब कल का दिन बीता, अभी आज का दिन आया है, तो क्या आपको लग रहा है कि जो ये यहाँ पे जो हो रहा है, आ रहा है, पढ़ रहा हूँ मैं, वो कुछ रेलेवेंस भी है कि नहीं है? ये भी बताइए यार यहाँ पे 5599 पे मैसेज करके, इम्पॉर्टेंट है ये। देखो मेरा तो सिंपल है, खर्चा मत करो, यही बोला है रोज, मैं तो खुश हूँ वो चीज़ के साथ। आप बताइए आपका कितना सही जा रहा है, 5599 पे मैसेज करके बता सकते हो, या फिर कॉल भी कर सकते हो आप यहाँ पे 0800-004-866 पे। Keep calm because Punjabi swag is on.

0: dear.
1: Streaming on Rover.
2: पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हो या आप फ्यूचर की तरफ शिफ्ट कर रहे हो, स्मार्ट चॉइस अब सिंपल है. वे सिटी GWM हैवल. हैवल का हाइब्रिड और प्लग इन हाइब्रिड रेंज पे डिस्काउंट्स और सिर्फ 4.95% फाइनेंस ऑफर्स. आज ही वे सिटी ऑटो ग्रुप पहुँचे और जिमी टेलर और उनकी टीम से मिले. लिमिटेड टाइम ऑफर. टीज एंड सीज अप्लाई. फॉर मोर इन्फो विजिट वे सिटी ऑटो ग्रुप .nz और सर्च फॉर वे सिटी ऑटो ग्रुप ऑन सोशल्स.
3: Your local board does all sorts of things in your community. That local event you love, the playground down the road, the park where you spend time with family and friends. And every 3 years they plan what to do next. Now's the time to let them know what you think is important where you live. Visit akhaveyoursay.nz/localboardplans. Tell us by 23 July. Local voices, local choices. Tāmaki Tūriki. All together, Auckland.
4: MediaVox complaints. How can I help?
5: My kids won't shut up.
4: I'm not sure that's our problem.
5: They keep reciting lines from one of your radio ads.
4: Aw, cute.
5: Yeah, well, it was cute initially, but after 27 times.
6: What do you want, son?
7: I want me some of that real southern chicken.
5: 28 times.
4: So where are you now?
5: Eating chicken.
8: Advertise with MediaWorks. New Zealand listens to us.
2: क्या बात है उस खाने में जो पूरे घर को डाइनिंग टेबल पर ले आए. वो खुशबू और वो असली मसालों का स्वाद. Bring home everyone's favorite Shan Foods recipe mixes. Bombay biryani हो या butter chicken, korma या chana masala. Recipes चाहे vegetarian हो या non-vegetarian. Shan recipe mixes हर dish को बिल्कुल घर जैसा बनाती हैं. तो इंतजार किस बात का? आज ही अपने नजदीकी सुपरमार्केट से Shan recipe mixes खरीदिए. Shan Foods, असली स्वाद हर घर के लिए.
9: The Breakfast Show with Vijay and Pooja.
10: Brought to you by Fortune. With whole grains and essential vitamins, Fortune fuels every win, big or small. Bring home the fortune. And Harrington Living at Bedzaras Manco. English heritage-inspired furniture for everyday luxury living.
11: Hollywood's most wanted.
12: Kundi kharda. Ya seedha andar aao.
13: Main laun apna A game.
9: Brought to you by Indelible Homes. Build your dreams.
14: गुड मॉर्निंग, आप सुन रहे हैं ब्रेकफास्ट शो. वैसे राशि वाइब्स आपके लिए अभी लेकर आया था और आज फिर से मैसेज आया कि लियो मिस आउट हो गया उनसे. तो चलो लियो का फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ. लियो यानी कि सिंह राशि, आपके लिए कहा है जुपिटर तुम्हारे साइन में है, मतलब अबंडेंस अट्रैक्ट हो रही है. सुंदर चीज़ें खरीदने का मन करेगा लेकिन शौक बड़ी चीज़ है, तो इस चक्कर में अपने अकाउंट को खाली मत कर लेना. और आज के दिन आप थोड़ा कम बोलिए, अपने काम को ज़्यादा बोलने दीजिए. ये था आपके लिए. थोड़ी देर में आपके लिए सेलिब्रिटी अलार्म यहाँ पे लेकर आऊंगा, एक सेलिब्रिटी की आवाज सुनाऊंगा. आपने यहाँ पे कॉल करके गेस करना है और बताना है कौन है ये सेलिब्रिटी. क्या लगता है आपको? बस इस गाने के बाद

0: अलार्म
1: सेलिब्रिटी अलार्म में आपके लिए हम यहाँ पे एक सेलिब्रिटी की आवाज यहाँ पे प्ले करते हैं और आपको गेस करना है कि ये सेलिब्रिटी कौन है। आज के जो सेलिब्रिटी है ये बहुत रेलिवेंट है जी, हमारे लिए तो काफ़ी ज़्यादा रेलिवेंट है, तो बताते हैं क्यों। इनकी आवाज़ सुनिए, फिर आप यहाँ पे मुझे कॉल कीजिए 0800-004866 पे और आप मुझे यहाँ पे कॉल करके हिंट दीजिए कि क्या लगता है आपको कौन है ये सेलिब्रिटी। आपको हिंट्स देने, आपको बताना नहीं है, नाम नहीं बताना है डायरेक्टली, ठीक है? तो लेट्स हियर हिम आउट।
2: वो कितना पिक्चर आया, एनिमल पिक्चर मेरे पास आए थे, मैंने बोला पिक्चर में अन्ना है क्या? नहीं है ना, मैं नहीं करूँगा। फिर ये नेटफ्लिक्स वाले ज्वेल थीफ पिक्चर, ये लोग मेरे पास है, पीछे पड़े करो करो, मैंने बोला अन्ना है क्या फिल्म में? नहीं है ना, मैं नहीं करूँगा।
3: हाउसफुल फाइव,
1: तो बताइए कौन है ये सेलिब्रिटी जिनके अभी हम लोग अभी आवाज सुन रहे हैं, कौन है ये सेलिब्रिटी, क्या लगता है आपको? थोड़ा सा वॉइस में थोड़ा सा वो इफेक्ट्स ऐड किए हैं, तो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है, मैं अंडरस्टैंड कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी आप गेस तो कर सकते हैं। विकास, बढ़िया, आपका सही जवाब यहाँ पे आ गया है। तो या इट इज़ क्वाइट ईजी दैट वे। अगर आप कॉल करके यहाँ पे कोई हिंट देना चाहते हैं, मज़ा करना चाहते हैं कोई, तो वो भी कर सकते हो ना, ऐसे मज़ेदार हिंट भी दे सकते हो आप। सो या यू कैन गिव मी अ कॉल ओवर 0800-004866। बट अभी के लिए एक और बार आपको सुना देता हूँ।
2: वो कितना पिक्चर आया, एनिमल पिक्चर मेरे पास आए थे, मैंने बोला पिक्चर में अन्ना है क्या? नहीं है ना, मैं नहीं करूँगा। फिर ये नेटफ्लिक्स,
1: अच्छा तो अरे कॉल आ रहा था लेकिन अभी रह गया, बट एनीवे अंकुर, शायद अंकुर आपका भी आ गया। वासु, आपने जो भेजा है आंसर वो नहीं है सही, बट कोई बात नहीं। हाय, आपका भी स्वागत है।
4: क्या बीड़ू, कैसा है रे?
1: एक नंबर, आप क्या बोलते हैं?
4: वही अपना बीड़ू।
1: बीड़ू है क्या, ऐसा बोलते क्या?
4: yeah.
1: अच्छा ठीक है, ओके क्या नाम है आपका?
4: मीत बोल रहा हूँ।
1: मीत, थैंक यू मीत, थैंक्स फॉर योर कॉल। अच्छा ठीक है, चलो ठीक है, आप भी बताइए यहाँ पे, गेस कीजिए। 5599 पे इज द नंबर वेयर यू कैन सेंड अस योर मैसेज और आप हमें यहाँ पे बता सकते हो कि क्या लगता है आपको कौन है ये सेलिब्रिटी जिनकी आवाज़ मैंने आपको सुनाई। ये एक कॉमेडी इनकी स्पेशलिटी है, और अगर मैं हिंट दूँ तो ये करेंटली न्यूजीलैंड में है। यस, करेंटली ये न्यूजीलैंड में है। तो बताइए कौन है ये सेलिब्रिटी, अभी तो बहुत हिंट दे दिए मैंने, बताइए फटाफट 5599 पे। वेल एक मिनट, ये सुनने से पहले आपको मैं ये सुनाता हूँ, पहले आप ये सुन लीजिए फिर उसके बाद ये गाना सुनना।

0: हेडलाइंस।
1: आज सुबह के हेडलाइंस में फॉरेन स्टूडेंट वीजा पर नया रूल यूनाइटेड स्टेट्स ने इशू किया है। अब इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को मैक्सिमम 4 साल का फिक्स टर्म स्टे मिलने वाला है। ईरान में अभी भी काफ़ी स्ट्राइक्स हो रहे हैं, यूएस की मिसाइल स्ट्राइक्स प्रोजेक्टाइल हो रहे हैं ऑन

0: सीड डिस्ट्रीब्यूट किए हैं। स्पोर्ट्स में फीफा के अराउंड काफ़ी अब डिस्प्यूट चल रहा है, न्यूट्रलिटी डिस्प्यूट। अर्जेंटीना के विक्ट्री के बाद फीफा प्रेसिडेंट गियानी इन्फेंटिनो के खिलाफ आईओसी में पॉलिटिकल न्यूट्रलिटी ब्रीच करने की कंप्लेंट दर्ज हुई है। टी20 वर्ल्ड कप 2028 का नया जो फॉर्मेट है ये अनाउंस किया गया है, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड को होस्ट करेगा टी20 वर्ल्ड कप 2028।
1: The Breakfast Show with Vijay and Pooja.
2: Hey, dekho maa aa gaye.
1: Hum, accurate traffic.
3: Fly Solomon Airlines.
4: Plenty of cloud, but still mainly fine. A high of 16. One issue going on State Highway 20B. It's as you get off the southwestern at Puanui and travel towards the airport, got a crash blocking one lane each way around Prices, so slowing your journey to the airport a little bit. Southern Motorway, we're 32 minutes in from Manukau, just slow patches Manukau to the city. Pretty good otherwise. Northern, northwestern are fine.
3: Auckland direct to Vanuatu from $860 return. Selected dates, conditions apply. FlySolomons.com.
5: क्या बात है उस खाने में जो पूरे घर को डाइनिंग टेबल पर ले आए, वो खुशबू और वो असली मसालों का स्वाद। Bring home everyone's favorite Shan Foods recipe mixes. Bombay biryani हो या butter chicken, korma या chana masala. Recipes चाहे vegetarian हो या non-vegetarian. Shan recipe mixes हर dish को बिल्कुल घर जैसा बनाती हैं। तो इंतजार किस बात का? आज ही अपने नजदीकी सुपरमार्केट से Shan recipe mixes खरीदिए। Shan Foods, असली स्वाद हर घर के लिए।
6: Every single item in store nationwide is half price at Briscoe's half price sale. So honk for half price off the entire store. All stores open till 9 tonight. Ends Monday at Briscoe's. See online for TCs and exclusions.
7: Cancer touches almost all of us in some way. This Feel Better Month at Farmers, buy a participating beauty product or make a donation in store. At a time when cancer can leave people feeling overwhelmed and uncertain, you're helping provide practical support. Support Feel Better Month at Farmers.
8: Hey, the boss shouted us coffees this morning from BP.
9: No way. We in trouble?
8: Nah, it's BP Plus.
9: What is that?
8: A fuel card that saves a business on BP fuel. Plus, we get free coffees.
10: Sweet! Fuel you and your crew with 14 cents off every litre of eligible fuel for 6 months, plus 25 free Wild Bean Cafe coffees through BP Me. Apply for a BP Plus fuel card today at bp.co.nz. T's and C's apply. New customers only for a limited time.
11: Big Points Blitz is back. Get big bonus points at Woolworths, Fresh Choice, Gas and Milk Run with Everyday Rewards. Boost the offers in your Everyday Rewards app, shop and collect up to $15 worth of vouchers. Offer ends 19th of July. T's and C's apply.
12: Up new winter, go warm up heater with hot deals at Lifestyle Furniture. Sofas, recliners, dining or living room furniture par paye massive savings. Visit kijiye unke 3 Auckland stores, Manukau, Westgate ya Mount Wellington. Lifestyle Furniture, stay in style.
1: Playing Bollywood's biggest hits.
13: The Breakfast Show with Vijay and Pooja.
14: Brought to you by Fortune. With whole grains and essential vitamins, Fortune fuels every win. Big or small, bring home the fortune. And Harrington Living at Bedzaras, Manukau. English heritage inspired furniture for everyday luxury living.
13: Birthday greetings.
15: Iska birthday bhai?
16: Mera hi birthday hai, chalo line mein aa jao.
15: Happy birthday to you.
0: आज है 17 जुलाई और आज के दिन सिक्स बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं शनिला फ्रॉम अवेंडेल। आपको बहुत बहुत बधाइयाँ आज के दिन की। विश यू अ वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे। लॉट्स ऑफ लव फ्रॉम पापा, मम एंड ब्रदर। ब्लेसिंग्स फ्रॉम ग्रैंड पेरेंट्स एंड ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स एंड ऑल फैमिलीज। हैप्पी बर्थडे टू यू शनिला। इसके साथ साथ आज 15वां बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं एन अमेजिंग सन। उन्होंने लिखा है, वॉचिंग यू ग्रो इनटू द काइंड, केयरिंग एंड स्ट्रॉन्ग यंग मैन यू आर टुडे फिल्स माय हार्ट विद प्राइड। आई होप दिस ईयर ब्रिंग्स यू हैप्पीनेस, सक्सेस, अनफॉरगेटेबल मेमोरीज एंड ऑल द थिंग्स दैट मेक यू स्माइल। कीप बिलीविंग इन योर सेल्फ, यू कैन अचीव एनीथिंग यू सेट योर माइंड टू। वॉचिंग यू ग्रो हैज बीन द ग्रेटेस्ट ब्लेसिंग। वी आर सो प्राउड ऑफ द यंग मैन यू आर बिकमिंग। वी लव यू सो मच। हैव द बेस्ट बर्थडे एवर। We love you from mom, dad and Hyan. Happy 15th birthday, amazing son. Sorry, आपका नाम यहाँ पे नहीं लिखा है उन्होंने, but आपको पता है आप कौन है। तो happy birthday to you. Hope आपका ये जो साल है वो बहुत ही बढ़िया गुजरे।
1: Straight from the heart. Brought to you by NZ PMI.
14: unlock your property's true sale value with NZ PMI.

0: RNZ.
1: The Breakfast Show with Vijay and Pooja.
0: Brought to you by Fortune. With whole grains and essential vitamins, Fortune fuels every win, big or small. Bring home the fortune. And Harrington Living at Bedzaras Manco. English heritage inspired furniture for everyday luxury living.
1: Throwback.
2: You're listening to Humbling Bollywood's Biggest Hits. आपके लिए यहाँ पे मैंने एक सेलिब्रिटी अलार्म सेगमेंट में आपको एक क्लिप सुनाई थी जो मैं आपको सुनाता हूँ फिर से.
3: वो कितना पिक्चर आया, एनिमल पिक्चर मेरे पास आई थी. मैंने बोला पिक्चर में अन्ना है क्या? नहीं है ना, मैं नहीं करूँगा. फिर ये नेटफ्लिक्स वाले ज्वेल थी पिक्चर, ये लोग मेरे पास आए, पीछे पड़ गए, करो करो. मैंने बोला अन्ना है क्या फिल्म में? नहीं है ना, मैं नहीं करूँगा.
2: सो ये बेसिकली मैंने आपको लिए प्ले किया था और यहाँ पे काफी लोगों ने सही गेस किया है. यस, दैट इज कृष्ण अभिषेक जो अभी करंटली ऑकलैंड में भी है और कल यहाँ पे परफॉर्म करने वाले हैं विक्ट्री कन्वेंशन सेंटर में राजीव ठाकुर के साथ. सो जिन जिन लोगों ने यहाँ पे सही आंसर भेजा है, थैंक यू सो मच. भक्तियार, आपका भी आंसर यहाँ पे आ गया. निलेशनी ने जैकी श्रॉफ लिखा है. जी, वो जैकी श्रॉफ की मिमिक्री कर रहे हैं और वो इतनी अच्छी मिमिक्री कर रहे हैं कि ऐसा लग रहा है कि जैकी श्रॉफ है, लेकिन नहीं, वो एक्चुअली कृष्ण अभिषेक है. और भी काफ़ी यहाँ पे मैसेजेस आए हैं. थैंक यू सो मच फॉर ऑल ऑफ यू जिन्होंने यहाँ पे सही मैसेजेस भेजे. इसके साथ साथ मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पे और भी इवेंट्स हो रहे हैं. 1 अगस्त को यहाँ पे गरबा नाइट विथ राज गढ़वी होने वाली है महात्मा गांधी सेंटर में, तो इसके टिकट्स भी आप बुक कर लीजिए. स्वप्निल शाह को आप कॉल कर सकते हो 022-439-4736 पे या eventtickets.co.nz पे आप इसके जाके टिकट्स ले सकते हो. गरबा सीजन इज ऑन, गरबा विद राज गढ़वी ऑन सैटरडे 1 अगस्त. टिकट्स ले लीजिए फटाफट eventtickets.co.nz से.

0: You're listening to Humbling Bollywood's biggest hits. Breakfast show jari hai aapke liye. Main hu Rusbe aapke saath aaj because Vijay and Pooja are away. Aur aaj ka jo topic hai wo main Friday type topic lekar aa raha hu. Ekdam hi light topic hai. Aur ye mera personal experience wala topic hai. Mere saath ye hamesha hota hai. You know, aapke saath bhi shayad ye ho raha hoga. Main aapko batata hu kissa kya hai. So basically, काफ़ी बार ऐसे होता है कि मुझे ना मीठा बहुत पसंद है और काफ़ी बार ऐसे होता है कि मिडनाइट रात को मुझे सडनली ना ऐसे क्रेविंग्स होते हैं कि यार कुछ मीठा हो जाए. बहुत गलत बात है ये होना, लेकिन होता है. अब उस टाइम पे मैं जाता हूँ, फ्रिज खोलता हूँ, कुछ दिखता नहीं है. फिर फ्रीज़र खोलता हूँ, फिर फ्रीज़र में मुझे दिखता है एक बढ़िया सा 2 लीटर का आइसक्रीम का डब्बा. मैं हो जाता हूँ बहुत खुश कि भाई आज तो आइसक्रीम के ऊपर फीस्ट करेंगे. तो मैं उसको बहुत ही मुश्किल से, क्योंकि वो ना नीचे से अंदर है, एकदम ही फ्रोज़न सब कुछ है, तो धीरे धीरे वो निकाल रहा हूँ मैं आइसक्रीम का डब्बा. सारी 2-3 चीज़ें ऊपर है, उसको निकाल के फिर आइसक्रीम का डब्बा निकाल रहा हूँ. और मैं फिर वो उसको एक्साइटमेंट में खोल रहा हूँ. और मैंने जैसे ही खोला, मैंने देखा कि अल्लाह, ये तो फ्रोज़न चिकन है अंदर. और जो मेरे मूड का भाजीपाला हो गया. ओहो हो, क्या आपके साथ भी ऐसा कभी हुआ है? आपने फुल एंटिसिपेट किया है कि यार कुछ बहुत ही बढ़िया आज खाने का मन कर रहा है, डब्बा भी दिख गया आपको उसका, आपने डब्बा खोला और फिर पता चला अंदर कुछ और ही है. आई एम वेरी श्योर ये हमारे देसी हाउस होल्ड का बहुत ही कॉमन फीचर है. मुझे आपसे जानना है आज आपकी ये डिसअपॉइंटिंग कहानी. 0800-004-866 कॉल कीजिए, शेयर कीजिए. आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ है जब आपने एकदम ही एंटिसिपेट किया है कि यार ये बहुत ही बढ़िया होगा, इसको खाएंगे आज, मज़ा ही आ जाएगा, लेकिन फिर वो उसमें वो निकला ही नहीं है. इससे ज़्यादा बुरा मुझे लगता है क्या लगता है, जब ये मेरे साथ पहले होता था कि मैं कोई चीज़ लेने जा रहा हूँ, पैंट्री में भी हो या फ्रिज में हो, और मैं जब उसको खोलता हूँ तो मैं देखता हूँ कि वो खाली है डब्बा. और मुझे इतना गुस्सा आता है कि भाई खाली है तो अंदर क्यों है. और मैं तभी मतलब इट वॉज़ वेरी इजी ना, मैं अपने फ्लैटमेट्स को ब्लेम कर देता था कि ये मेरे फ्लैटमेट्स ऐसा कर रहे हैं. बट एनीवे, आप अगर कोई आपके पास ऐसी कहानी है, अगर आप किसी को ब्लेम करना चाहते हो, 0800-004-866 इज़ द नंबर. गिव मी अ कॉल ओवर हियर एंड शेयर योर स्टोरी. कि आपके साथ कब ऐसा हुआ है जहाँ पे क्या वो देखा पहाड़ निकला चूहा, ऐसा कुछ तो भी होता है ना, ऐसा टाइप का सीन अगर आपके साथ हुआ तो आप ज़रूर यहाँ पे शेयर कीजिए. 0800-004-866 इज़ द नंबर. मैं गाना सुनाता हूँ आपको और आपके पास थोड़ा टाइम है यहाँ पे कॉल करने का, तो गिव मी अ कॉल. चलो यार आज सुबह क्या हो रहा है यार, ब्रेकफास्ट शो में कॉल नहीं आ रहा है. अच्छा अभी आया फाइनली. हाय, आपका स्वागत है, गुड मॉर्निंग.
1: नमस्कार ओमकार.
0: अरे ओमकार, क्या बात है यार. बोलो.
1: अच्छा भाई, ये मेरे साथ बहुत बार हुआ.
0: अच्छा क्या, कोई किस्सा बताओ.
1: अच्छा, अपना वन ऑफ द बड़ा शॉप है अपने अपने घर के पास, तो उनका एक बॉक्स होता है, उस बॉक्स में ना पर्सन बहुत रहता है, मतलब सावरी बहुत सा आइटम ऐसे रहते हैं, बहुत बॉक्स बहुत सही है, मतलब.
0: अच्छा.
1: तो मुझे लगा एक बार मैंने वो बॉक्स रखा था हमारे घर में, तो मुझे लगा यार वही रहेगा उसके अंदर.
0: हाँ.
1: तो मैं खोल के देख रहा हूँ यार, और ही सामान निकला. मैंने बोला यार ये तो बहुत डिसअपॉइंटिंग, मुझे बहुत भूख लगी थी,
0: तो फरसान के बदले कुछ और ही निकला वहाँ पे.
1: और ही निकला यार, मतलब मैं पागल हो गया. ये क्या है, मतलब रवा रखा है उसमें, उसमें थोड़ा सा कुछ और, मतलब रॉ चीजें रखी है, तो खाने
0: yeah.
1: तो बहुत कॉमेडी हो गया वो यार. और ये बहुत बार हुआ है मेरे साथ.
0: और हमेशा हम वही उम्मीद के साथ खोलते हैं ना कि यार कुछ तो मिल जाएगा, बढ़िया मिल जाएगा, लेकिन मिलता ही नहीं कभी फिर कुछ.
1: एब्सोल्युटली भाई, ये बहुत बार हुआ
0: है. कूल, नहीं थैंक यू.
1: बोलो.
0: थैंक्स ओमकार यार, थैंक्स फॉर शेयरिंग मैन, थैंक यू.
1: गुड मॉर्निंग,
0: थैंक यू. वेल, अभी यहाँ पे मैसेज करके शेयर कर सकते हो 5599 पे.

0: You're listening to Humpling, Bollywood's biggest hits. आपके लिए ब्रेकफास्ट शो में आज मैं हूँ और मेरा नाम है रुजबे और मेरे साथ यहाँ पे अभी ज्वाइन इन कर लिए हैं हमारे जो फाइनेंस के गुरु है. गुरु, वेलकम टू द शो. कैसे हो आप?
1: थैंक यू रुजबे. मैं बढ़िया, आप बताओ कैसे हो?
0: मैं बहुत बढ़िया हूँ. वेदर बहुत ही बढ़िया चल रहा है एंड आज फ्राइडे भी है, तो बताइए क्या चल रहा है मार्केट में और कैसे आप मदद कर सकते हो हमारे लिसनर्स की जो अब चढ़ना चाहते हैं प्रॉपर्टी के लैडर पर.
1: डेफिनेटली रुजबे, देखो प्रॉपर्टी मार्केट जो हमारा फर्स्ट होम बायर्स हैं या इन्वेस्टर्स हैं, अभी मार्केट की जो परचेजिंग है वो काफी लोअर लेवल बैठी हुई है. तो परचेज जो प्राइस चल रहे हैं अभी, इट्स लाइक आप अगर मार्केट में भी जाके देखोगे, इट्स जस्ट लाइक इट्स ब्रिलियंट काइंड ऑफ डील्स कमिंग आउट फॉर द फर्स्ट होम बायर्स एंड फॉर द इन्वेस्टर्स एज वेल. तो उस अपॉर्चुनिटी में डेफिनेटली जो फर्स्ट होम बायर्स हैं, दे कमिंग अप विद यू नो इवन विद अ डिपॉजिट ऑफ 5% और 10%. जो 5% डिपॉजिट है उसमें काफी अभी एक मिथ है कि बेसिकली अगर आपका इनकम 150 से ऊपर है तो आप नहीं उसमें क्वालिफाई नहीं कर सकते. बट इट इज नॉट लाइक दैट कि आप उसमें क्वालिफाई नहीं कर सकते. डेफिनेटली यू कैन स्टिल क्वालिफाई टू गेट इनटू 5%. इट इज डेल्ट विद द काइंगोरा. तो काइंगोरा एक जो गवर्नमेंट एजेंसी है उसके थ्रू किया जा सकता है, इंक्लूडिंग द बैंक. फिर अगर विदाउट काइंगोरा जाना है, देयर इज ऑप्शन अगेन एज वेल विद द 5% वेयर कि वो काइंगोरा के विदाउट भी जाया जा सकता है. तो वो एक जो 5% जो डिपॉजिट है उसमें काफी बढ़िया अपॉर्चुनिटी है, बिकॉज उसमें आपको यू गेट रियली गुड रेट एज वेल एंड यू गेट अ रियली गुड कैशबैक एज वेल. और अगर आप ब्रांड न्यू घर ले रहे हो, देन अगेन सम बैंक्स आर ऑफरिंग प्रीटी गुड कैशबैक इवन विद द लो डिपॉजिट्स. सो देयर इज लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज इन टर्म्स ऑफ आउट इन द मार्केट जहाँ पे ब्रांड न्यू घर बने हुए हैं. लाइक देयर इज क्वाइट अ फ्यू ब्रांड न्यू हाउसेज बहुत अच्छे बनाए हुए हैं और उनका जो प्राइस रेंज है, इट्स यू नो दोज डेवलपर्स आर जस्ट गेटिंग इट आउट सेइंग कि ये आप ये लो, इतना उन्होंने एफर्ट लगाया उसको बनाने में एंड दे गिविंग दी हाउसेज इन अ रियली रियली बार्गेन डील्स राइट नाउ. तो आई वुड से कि मार्केट की जो एक्टिविटी है प्रॉपर्टी साइड में, इट इज बेस्ट टाइम टू गेट इन टू इट. इन टर्म्स ऑफ द फाइनेंसेस आप अगर देखोगे तो जो बैंक्स का अभी अगर OCR उन्होंने बढ़ाया भी है 0.25, रेट्स यू वुडंट सी कि रेट्स बहुत ज्यादा हाई चल दिए हैं. तो अभी भी अगर आप रेट्स देखोगे तो यू नो वन ईयर रेट सेटिंग समवेयर अराउंड 4.59 4.69, इवन थ्री ईयर रेट सेटिंग समवेयर क्लोज टू अर्ली फाइव लाइक 5.19 5.29. तो दैट्स नॉट अ बैड रेट. और अगर आप मॉर्गेज को कैलकुलेट करके देखोगे उसकी रीपेमेंट्स for 30 years loan, you will see ki it is still a best idea to buy the house, kyunki agle 3 saal mein market kahan jayegi no one knows. But only way to go is upwards. Isse niche to ja nahi sakti, it has to go upwards. So agar aap us soch ke sath chal rahe ho to definitely I think it's an opportunity to get into the market. Aur agar aapko kuch discuss karna hai finances, aapko lag raha hai ki this is the right time, am I ये मेरा लोन हो सकता है कि नहीं हो सकता, जो सबसे बड़ी बात तो वो चीज है कि बैंक आपको पैसा देगा कि नहीं देगा. तो उसके लिए यू नीड टू हैव समवन रियली क्वालिफाइड एक्सपीरियंस और जो दिल से आपके लिए काम करे, तो डेफिनेटली गिव अस अ कॉल.
0: That's awesome, गुरु यार. एंड नहीं, हमने सुना भी आपके कस्टमर्स से भी हमने सुना है कि जब बात आती है इंटरेक्शंस करने की या किसी को गाइड करने की तो आप एक नंबर हो वहाँ पे. लाइक यू नो यू आर ऑलवेज देयर. सो डेफिनेटली डेफिनेटली गेट इन टच विद गुरु कंडोला. आप गूगल पे भी इनको सर्च कर सकते हैं, सर्च में ये नंबर वन पे आ जाते हैं वहाँ पे भी. बट यस, लॉजिक फाइनेंस के गुरु कंडोला से हम बात कर रहे थे अभी और आप इनको कॉन्टैक्ट कर सकते हैं. गुरु, आपका नंबर एक बार क्विकली बता दीजिए प्लीज.
1: It's Rizbe 0800 Logic G. अगर आप 0800 Logic G type करते हो, it comes to me, which is 0800-564-424. 0800-564-424 is the number to get in touch with me.
0: Awesome. Thank you so much, Guru, and have a great day today.
1: Thank you. Thank you, Rizbe. Same to you. Cheers.

0: Breakfast Show with VJ and Pooja.
1: Chubo jao, papi ho. Chubo jao.
2: Hum. Accurate traffic.
3: Century Batteries, New Zealand's trusted battery.
4: Cloud burning off, mostly fine today, 16-hour high. Southwestern motorway looking okay both ways, and a crash on 20B just off the Southwestern has been cleared as well around Prices Road, so should be a little bit faster going through there. Southern, 33 minutes, Manukau to town, slow from Otahuhu, heavy patches frequent. Northwestern, Finder Point Chief, slow from there, 21 in from Massey. The Northern looking pretty good.
3: As the cold mornings roll in, be ready with New Zealand's trusted battery, Century Batteries.
5: Bro, तू वेस्ट सिटी GWM हैवेल गया था क्या?
6: हाँ भाई, जिमी टेलर और टीम ने फुल रॉयल ट्रीटमेंट दिया. जूलियन हाइब्रिड, क्लासी, H6 हाइब्रिड, बॉस लेवल और टैंक 300, टोटल बीस्ट. डील क्या मिला? 4.95% फाइनेंस डील और वो भी सिर्फ वेस्ट सिटी GWM हैवेल में.
7: जिमी टेलर और टीम के साथ पाओ अपनी नेक्स्ट एडवेंचर मशीन. विजिट वेस्टगेट या हेंडरसन शोरूम या चेक आउट westcityautogroup.nz. वेस्ट सिटी GWM हैवेल, वेयर योर नेक्स्ट एडवेंचर बिगिंस.
8: Jen didn't think she needed a DVS system.
9: Oh, I've got insulation in that.
8: But Jen had forgotten about the mould on her walls and curtains.
9: Ah, yeah.
8: So Jen got DVS home ventilation, and its fresh air in, stale air out technology went to work, making her rooms drier, healthier, plus mould and mildew free. Say yes to DVS. Your healthy home isn't complete without it.
10: HBO Max is the all-killer, no filler.
11: So wait, a streaming service that's full of the good stuff and no boring filler?
10: Exactly.
11: Right, we'll see. What are they called?
10: There's HBO original series The White Lotus, House of the Dragon, Euphoria, The Last of Us, The Sopranos, hit movies like Wuthering Heights, Superman, One Battle After Another, and then there's Friends, The Big Bang Theory.
11: Whoa, okay, I get it. Fair call.
10: HBO Max, all-killer, no filler. Stream now.
12: क्रेविंग हो रही है उस थिक और क्रीमी दही की जैसे घर पर मिलती थी, तो मिलवाते हैं आपको कशिश नेचुरल योगर्ट से, जिसका हर स्पून है एकदम डिलाइटफुल, 100% वेजिटेरियन, जेलेटिन एंड ग्लूटेन फ्री, परफेक्ट है स्मूदीज बनाने के लिए, टैंगी टिप्स बनाने के लिए, पनीर या चिकन मैरिनेट करने के लिए, या बस सीधा टब से खाने के लिए, क्योंकि ये है नेचुरली डिलीशियस, ऑलवेज देसी. अवेलेबल नाउ एट योर फेवरेट इंडियन सुपरमार्केट अक्रॉस न्यूजीलैंड. ब्रिंग होम द टेस्ट ऑफ ट्रेडिशन. कशिश नेचुरल योगर्ट.
0: Non-stop Bollywood.
13: जो भी करते हैं शिद्दत के साथ करते हैं.
0: हम playing Bollywood's biggest hits. The Breakfast Show with VJ and Pooja.
14: Brought to you by Fortune with whole grains and essential vitamins. Fortune fuels every win, big or small. Bring home the fortune. And Harrington Living at Bedzaras, Manukau. English heritage inspired furniture for everyday luxury living.
0: The Rush Hour. Brought to you by Rajan Ashima of Legal Associates, Barristers and Solicitors, Papatoy and Hamilton.
15: 104.2 FM या फिर रोआ ऐप के जरिए आप सुन रहे हैं हम. वैसे अगर आप सिटी के अंदर है तो 87.7 FM भी आपको सुनाई देगा हम, तो ज़रूर सुनिएगा. वेल, थोड़ी देर में आपके लिए बॉलीवुड की खबरें भी यहाँ पे लेकर आऊँगा और प्लस इधर उधर की बातें भी करेंगे हम थोड़ी बहुत. 9 बजे के बाद भी ढेर सारी चीज़ें हैं आपके लिए, जहाँ पे कम्युनिटी इवेंट्स आप तक पहुँचाऊँगा और फिर एक वियर्ड एंड अनबिलीवेबल स्टोरी आपके लिए लेकर आऊँगा मैं. बट अगर आप विजय और पूजा की आवाज़ मिस कर रहे हो और आप सोच रहे हो कि यार ये कौन पका रहा है हमको सुबह सुबह,

प्यारा सा वीडियो है. आई थिंक इट्स द वीडियो कंप्राइजेस ऑफ ब्यूटीफुल साइट्स ऑफ न्यूजीलैंड. और केतन जो एक अमेजिंग वीडियोग्राफर और एडिटर है ही, उन्होंने बहुत ही बढ़िया जस्टिस भी किया है इस वीडियो के साथ. गाना तो है ही कमाल, जैसे गाना तो बढ़िया ही है. सफ़ायर 2.0 ज़रूर सुनिएगा. वेल, इसी के साथ अब मैं आपके लिए एक एल्बम गाना लेकर आ रहा हूँ, ये भी एंजॉय कीजिए.

0: You're listening to Humpling, Bollywood's biggest hits. आपके लिए बॉलीवुड की खबरें भी हम यहाँ पे लेकर आते हैं. बॉलीवुड में यार अभी बॉलीवुड को तो नहीं पता, लेकिन रियलिटी शोज का एक अलग ही ट्रेंड चल रहा है. लॉकअप नेटफ्लिक्स पे चल रहा है, प्राइम पे अलायंस चल रहा है, और दोनों ही शोज धूम मचा रहे हैं. वैसे सोहेल खान एक शो में है जिसका नाम है अलायंस, और इन्होंने एक बहुत ही हार्ट फेल्ट रेवलेशन किया है यहाँ पे शो पे. उन्होंने बात की है अबाउट हिज ट्रॉमेटिक चाइल्डहुड एक्सपीरियंस, जहाँ पे उनके साथ कुछ अब्यूज़ हुआ था, और उन्होंने फिर बाद में जाके उनके पिताजी से भी कहा था, और इसके बारे में इन्होंने बहुत ही एक इमोशनल हार्ट फेल्ट खुलासा किया है. एंड दैट्स जस्ट शोज की ये जो अब्यूज़ है, इट्स नॉट जस्ट लिमिटेड टू अ सर्टन सेक्ट ऑफ सोसाइटी, ये हर जगह प्रिवेलेंट है. और इसलिए यहाँ पे मुझे लगता है एजुकेशन में वो सिखाते भी है अबाउट गुड टच एंड बैड टच, एंड आई थिंक इट्स सो इम्पॉर्टेंट टू हैव दैट कॉन्वर्जेशंस विद आवर चिल्ड्रन ऑल द टाइम, कि क्या क्या सही है, क्या गलत है. और ऐसे ज़रूरी नहीं है कि जो गलत है उसके ऊपर बात करना सही नहीं है. आई थिंक जो गलत है उसके ऊपर और बात करना ज़रूरी है, ताकि हमें पता चले कि क्या सही है और क्या गलत है. सो या आई थिंक एंड दैट्स व्हाट आई एम सीइंग द ट्रेंड नाउ इन अ लॉट ऑफ पेरेंट्स, जो अपने बच्चों के साथ कॉन्वर्जेशन करने में बिलीव करते हैं. हमारे टाइम पे अलग था, हमारे टाइम पे इतना नहीं था अवेयरनेस, इतना ये भी नहीं था, इतनी बातें भी नहीं होती थी, इतना इन्फॉर्मेशन नहीं था अराउंड, तो शायद हमारे टाइम पे वो बातें करना ही मना था. बट अब वक्त बदल चुका है, टाइम चेंज हो गया है, एंड नाउ आई थिंक पीपल बिलीव इन हैविंग ओपन एंड ऑनेस्ट कॉन्वर्जेशंस, भले ही वो काफ़ी वल्नरेबल भी हो अगर कॉन्वर्जेशंस, बट फिर भी लोग काफ़ी कॉन्फिडेंट होते हैं वो करने में. एंड आई थिंक दैट इज़ द चेंज दैट वी आर नोटिसिंग इन द सोसाइटी. सो या फील फ्री टू हैव कॉन्वर्जेशंस विद योर चिल्ड्रन, विद योर पेरेंट्स, विद एवरीवन अराउंड.
1: ड्राइविंग यू होम, The Drive Show with Sandy and Rusby.
0: तो फिर सरिता के चप्पल का साइज क्या था?
2: सरिता ने जाके मैडम को बोल दिया कि हाँ जी मेरे को जहाज मारा किसी ने,
3: वो भी आई लव यू वाला.
2: मैडम ने पकड़ लिया, अभी यहाँ पे किसने बनाया, वो एक लड़की थी, वो बोलती जहाज तो दिलजीत बना रहा था बेटा.
3: अच्छा आप दिलजीत हो?
2: आए आए बताओगे यार.
1: Drive Show with Sandy and Rusby, brought to you by Beds R Us. Sleep easy for less at Beds R Us Manukau and Pukekohe. Sleepyhead Sleep Easy Queen Beds from only $7.99 on sale now. And Jimmy Taylor and team from West City Auto Group, the home of GWM Havel and Omura Jaku. Hum, accurate traffic.
4: Elite Bathroom Wears Midwinter Reno Sale.
5: Cloud burning off, fine spells increasing, a high of 16. Northern Motorway coming in, a very quick drive, 20 minutes in from Constellation, just a bit slow there to Milford. Northwestern, 20 minutes in from Mersey, slow. Going close to the city, otherwise fine. Southern, slow from Otahu, got heavy patches frequent from there, 35 minutes in from Manukau, but still a pretty decent drive. Any other issues we had, including on State Highway 20B, have been sorted.
4: Elite Bathroom Wear's midwinter Reno sale starts Monday next week. Allens Road, East Tamaki.
6: Ma, it's already your dinner? Ha, it's the
7: button. Jab Kashish Desi Ghee se khana banega, to yahi to hoga. New Zealand mein most advanced technology se bana. Grass-fed danedar cow ghee. जब खाने में होगी इतनी शुद्धता, इतना स्वाद, तो आपको भी किचन में कुछ ऐसा सुनाई देगा.
6: मुझे भी।
7: कशिश प्योर देसी घी, अवेलेबल एट ऑल लीडिंग स्टोर्स इन न्यूजीलैंड. खुशियाँ पकाएं, खुशियाँ खिलाएं.
8: Why did I join People's Panel? Because this is the city I live in, so I care about it, and I wanted my voice to be heard.
9: Search and join the online People's Panel. Complete surveys, win prizes. Tāmaki Turiki, all together Auckland.
10: Everyday burn hazards are hotter than they look. Act fast. Cool burns under running water for 20 minutes. And for serious or large burns, always call 111. Brought to you by the Burn Support Group and the MediaWorks Foundation.
11: Thinking about your next phone? You could already be closer than you think. Open your One Wallet to see how many phone dollars you have. One phone dollar equals $1 off your next interest-free phone. How wonderful. One New Zealand. Let's get connected.
12: The Breakfast Show with Weejay and Pooja.
1: Brought to you by Fortune. With whole grains and essential vitamins, Fortune fuels every win, big or small. Bring home the fortune. And Harrington Living at Beds R Us Manukau. English heritage-inspired furniture for everyday luxury living.
12: Throwback.
0: You're listening to Humpling Bollywood's biggest hits 104.2 FM और 702 AM पे आप 702 AM पे नहीं होता है अभी sorry 87.7 FM पे भी सिटी के अंदर अगर आप सुन रहे हैं तो आप हमें सुन सकते हैं 9 बजे के बाद आपके लिए एक बहुत ही weird unbelievable story लेकर आ रहा हूँ लेकिन आज की story जो है ये बहुत ही cute लगेगी आपको if you are a pet lover अगर आपको dogs पसंद है तो आपको ये story बहुत अच्छी लगेगी अगर आपको dogs नहीं पसंद तो आप ज़रूर सुनिएगा ये स्टोरी क्योंकि शायद इस स्टोरी के बाद आपको डॉग्स शायद पसंद आने लग जाए हु नोस बट 9 बजे के बाद आपके लिए ये कहानी होगी बट इन द मीनवाइल मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि हमारा एक पॉडकास्ट है शनील लाल के साथ जो हमने रिलीज़ किया है इट्स अबाउट LGBTQ+ राइट्स एंड रिजर्वेशंस एंड यू नो अबाउट हाउ कन्वर्जन थेरेपी क्या होता है कैसे उसको स्टॉप करा गया है ये सारी चीज़ों के बारे में हमने शनील लाल के साथ बात की है ज़रूर सुनिएगा ये एपिसोड बहुत ही इंसाइटफुल ये एपिसोड रहा है और हमें कुछ बहुत ही बढ़िया से फीडबैक भी मिले हैं इस एपिसोड के लिए तो इसको ज़रूर सुनिएगा ड्राइव लिखकर भेजिए 5599 पे एंड यूल गेट द लिंक अलॉन्ग साइड यूल ऑल्सो गेट द लिंक फॉर रजिस्टरिंग योर इंटरेस्ट अगर आपको हमारे साथ ट्रैवल करना है टू बाली एंड बैंकॉक तो उसका रजिस्टर करने के लिए इंटरेस्ट उसके लिए भी आप वो लिंक को चेकआउट कर सकते हैं तो ड्राइव लिखकर भेजिए ऑन 5599

0: Weather update brought to you by Go Bananas Childcare, where learning is fun. Call 0800 462626.
1: वेदर का हाल काफी कमाल. सुपर सिटी में थोड़ी बहुत शावर्स हो सकते हैं, लेकिन उसके बाद फाइन रहने वाला है. साउथ वेस्टर्लीज का साथ रहेगा और सनसेट होगा 5:26 पे. कल का दिन बहुत ही ब्राइट ब्यूटीफुल सनी रहेगा. आज का हाई रहेगा एज हाई 16 degrees. अभी आप महसूस कर रहे हैं अराउंड 11.5 degrees.
0: द ब्रेकफास्ट शो विद वीजे एंड पूजा,
2: ब्रॉट टू यू बाय फॉर्च्यून, विद होल ग्रेन्स एंड एसेंशियल विटामिंस. फॉर्च्यून फ्यूल्स एवरीवन, बिग और स्मॉल, ब्रिंग होम द फॉर्च्यून. एंड हैरिंगटन लिविंग एट बेजरस मनको, English heritage inspired furniture for everyday luxury living.
3: What's going on? Kya bakte ho?
4: Are kehna kya chahte ho?
1: Good morning, you're listening to the breakfast show. Hi, mera naam hai Ruzbe. Main hu aapke sath yahan pe 10 baje tak. Aur breakfast show mein is time pe main aapke liye yahan pe lekar aata hu ek weird story. Ye jo weird story hai, ye bahut hi heartwarming story hai, and I think this is starting to be my another favorite segment, जहाँ पे मुझे ना ऐसे अलग अलग कहानियों के बारे में पता चलता है और कभी कभार बहुत ही beautiful फील होता है. कल की कहानी भी बहुत inspiring, बहुत motivating थी. आज की बहुत ही cute कहानी है. Well, if you are a dog lover, if you love pets, then this story is for you. I think it's going to ring a different kind of a bell आपके दिल में, है ना, दिल में घंटी बजती है वैसे ही. So, ये कहानी है एक dog की जो सिएटल वाशिंगटन में थे, और एक ब्लैक लैब्राडोर मैस्टिफ मिक्स, इनका नाम था इक्लिप्स. अब इक्लिप्स एक लोकल लेजेंड बन गए इनके एरिया में. और ये क्यों बने? क्योंकि ये सिटी के पब्लिक ट्रांजिट सिस्टम में अकेले खुद ट्रैवल करते थे. तो बेसिकली हुआ इनके साथ ये कि एक ये पहली बार 2015 में अपने जो ओनर है जेफ यंग, इनके साथ एक बस स्टॉप के यहाँ पर रुके थे. और उनके जो ओनर थे वो आई थिंक थोड़े बातों में बिजी हो गए थे. तो वो बस आई, दरवाज़ा खुला, वो ओनर नहीं चढ़े, लेकिन ये जो इक्लिप्स है, इक्लिप्स चढ़ गए बस के ऊपर और वो बैठ के चले भी गए. वो जा रहे थे एक डॉग पार्क की तरफ, पार्क में खेलने के लिए. जो ओनर है जेफ यंग, इन्होंने देखा बस को जाते हुए और उसमें उन्होंने इक्लिप्स को भी देखा. तो इन्होंने बोला कि अरे बाप रे, ये तो चले गए. तो उन्होंने नेक्स्ट बस पकड़ी, ये गए वो वही पार्क पे. तो वहाँ पे देखते हैं कि इक्लिप्स उनका इंतज़ार कर रहे हैं पार्क के बाहर बैठ के. एंड फ्रॉम देयर ऑन वो सिलसिला कंटिन्यू हो गया, बिकॉज नाउ इक्लिप्स ऑल्सो रियलाइज कि यार मैं तो मुझे ज़रूरत नहीं है अभी, मैं अकेले इंडिपेंडेंट हूँ, मैं अकेले ट्रैवल कर सकती हूँ. और इक्लिप्स उस तरीके से पब्लिक ट्रांसपोर्ट में अकेले ट्रैवल करना इन्होंने शुरू कर दिया. इतना लोगों ने उन्हें पसंद किया और लोग नहीं डरते थे उनसे, क्योंकि लैब्राडोर से कौन ही डरता है यार, मतलब इतने क्यूट होते हैं वो वैसे भी. इनके लिए एक्चुअली में जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट अथॉरिटीज़ है, इन्होंने एक स्पेशल से इनके लिए पास भी बनाया कि ये इनके लिए है. और बस यही नहीं, इनफैक्ट इनको इन्होंने एडवर्टिजमेंट्स में भी यूज़ किया. सो जो एडवर्ट्स इन्होंने बनाए पब्लिक ट्रांसपोर्ट को लेकर, उसमें इक्लिप्स को फीचर किया और बताया कि देखो कैसे कितना बढ़िया होता है पब्लिक में, पब्लिक ट्रांसपोर्ट में ट्रैवल करना. यू गेट सो मच लव फ्रॉम लाइक अ लैब्राडोर एज वेल. सो या, दिस वॉज अ वियर्ड बट अ क्यूट स्टोरी. नाउ टेल मी दिस, आर यू अ डॉग लवर? लाइक नॉट अ डॉग लवर, बट आर यू, वुड यू बी कम्फर्टेबल अगर आपके बस में आपके साथ एक डॉग ट्रैवल कर रहा है? वुड यू बी कम्फर्टेबल? आई एम वेरी श्योर अ लॉट ऑफ पीपल विल नॉट बी कम्फर्टेबल, क्योंकि एक डर होता है काफ़ी लोगों में, फोबिया होता है डॉग्स को लेकर, विच इज़ अंडरस्टैंडेबल एज वेल. बट या, अ क्यूट लैब्राडोर इन योर बस, हाउ कम्फर्टेबल वुड यू बी? 5599 पर मैसेज करके आप मुझे यहाँ पर शेयर कर सकते हो आपके थॉट्स इसके अराउंड.

0: What's up, Auckland?
1: आप सुन रहे हैं हम प्लेइंग बॉलीवुड बिगेस्ट हिट्स कम्युनिटी में जो खबर मतलब न्यूज़ हो रही है जो इवेंट्स हो रहे हैं इसके डिटेल्स भी आपके साथ हम शेयर करते हैं। 22nd-23rd August नेक्स्ट मंथ बर्कनहेड स्काउट्स हॉल में हो रहा है 4th न्यूजीलैंड नेशनल कैरम टूर्नामेंट। इसका हिस्सा अगर आपको भी बनना है तो आप रजिस्टर कर सकते हैं और न्यूजीलैंड कैरम एसोसिएशन का फेसबुक पेज आप चेकआउट कर सकते हैं या फिर आप कॉल या मैसेज कर सकते हैं NZCA के प्रेसिडेंट पंकज मोंगा को ऑन 021-090-85067 पे। इसके साथ साथ हेल्थ एंड वेलबींग एक्सपो हो रहा है 2026 और ये फ्री है सभी के लिए ऑन नेक्स्ट संडे 26 जुलाई एट A1 इवेंट सेंटर सुबह 10 बजे से लेकर 3 बजे तक आप यहाँ पे जा सकते हैं फॉर हेल्थ एंड वेलबींग एक्सपो। एक फैमिली इवेंट है तो आप आपके फैमिली मेम्बर्स को पेरेंट्स को चिल्ड्रन को सबको लेकर जा सकते हैं वहाँ पे। तो जरूर जाइएगा एट A1 इवेंट सेंटर 731 ग्रेट साउथ रोड पापा टोटोई।
0: मॉर्निंग्स मेड बेटर
2: दो फ्राइंडा चार टोस्ट बटर जैम और एक स्पेशल चाय
0: द ब्रेकफास्ट शो विद विजय एंड पूजा। द ब्रेकफास्ट शो विद विजय एंड पूजा
3: पूरी प्लानिंग से आए हैं, 100% तुमको सुबह यहाँ से ले जाएंगे।
4: Those people who live around the Hunua area, वहाँ पर 1 degree है temperature।
5: जितने भी लोग इस इलाके में हैं, enjoy करते रहे आप। West side है ना, west side of Auckland है ये। I have lots of fun basically with the cold weather।
4: कौन है?
5: Hunua और Waitakere।
4: अच्छा Hunua west में?
5: किधर है Hunua?
0: The Breakfast Show with Vijay and Pooja।

0: Karan Aujla brings his P-pop culture world tour to New Zealand. Auckland, Spark Arena, this August. Tickets at livenation.co.nz. Don't miss Karan Aujla Live.
1: Give your place a winter glow-up for less with Mitre 10. Light the way with 20% off Vectral solar lighting. And save $100 on a 60cm Robin Hood stainless steel dishwasher, now $499. T's and C's apply. Shop these great deals and more at Mitre 10.
2: Trade Depot brings you New Zealand's lowest prices in home improvement. Midea 16-litre dehumidifiers, $219. Espresso machines, $109. Cordless stick vacuums, $99. Air fryers, $79. Save hundreds on beautiful home improvement products. Only at Trade Depot in Onehunga. Or shop online.
3: Being fussy is just knowing what you want, so be more fussy. Celebrate the fussiness of every individual cat. Share in the unspoken language of leg rubs and scratches, because your cat deserves meals created just for them. Meow! Fussy Cat is made with the meaty taste cats love, delivering quality nutrition with delicious variety across every meal. Available at your local supermarket. Well, if they're fussy enough, serve up the meaty taste cats crave. Fussy Cat, be more fussy.
4: And फिर मिसेस सिंह से मैंने पूछा इतना अच्छा खाने के साथ किचन में रील्स और टिकटॉक कैसे बना लेती हो बोली बस मेरा फोकस है
5: हाँ. अच्छा
4: बताओ तुम्हारा फोकस फोकस साडा कुछ नहीं
5: मिसेस सिंह
6: अरे पम्मी जी मेरा फोकस मींस मेरे घर का किचन जिसको डिजाइन किया है फोकस किचन्स ने
7: मॉडर्न क्लासिक शेक स्टाइल किचन्स फोकस किचन्स यूनिट के 33 वॉन्सली रोड ओटाहुहु कॉल 09281 3050 और विजिट focuskitchens.co.nz.
8: The Breakfast Show with Vijay and Pooja.
9: Brought to you by Fortune. With whole grains and essential vitamins, Fortune fuels every win. Big or small, bring home the fortune. And Harrington Living at Bedzaras Manuko. English heritage inspired furniture for everyday luxury living.
10: What's going on?
11: आप सुन रहे हैं हम ब्लिंग बॉलीवुड बिगेस्ट हिट्स. वैसे कृष्ण अभिषेक और राजीव ठाकुर कल सेट हो रहे हैं टू टेक स्टेज एट विक्ट्री कन्वेंशन सेंटर. कल इनका शो होने वाला है और आप बहुत ही कम टिकट्स बाकी है, आप ले सकते हैं अभी भी. आई थिंक इट्स नॉट सोल्ड आउट येट, बट फ्यू टिकट्स लेफ्ट. सो 0210432720 पे आप कॉल कर सकते हो या फिर आप bookmyevent.co.nz पे जाके इसके टिकट्स भी बुक कर सकते हो. सैटरडे 18 जुलाई यानी कि कल ये शो होने वाला है आपके लिए एट विक्ट्री कन्वेंशन सेंटर, तो वहाँ पे पहुँचेगा ज़रूर. वेल, गानों का सिलसिला भी जारी है आपके लिए और भी इवेंट्स हो रहे हैं हमारे सुपर सिटी में जिसके डिटेल्स आप तक मैं पहुँचाऊँगा बस थोड़ी देर में. बॉलीवुड में क्या हो रहा है इसके अपडेट्स भी आपके लिए, सुनते रहिए हम.
12: Bollywood's most wanted.
13: Gundi khad jao ya seedha andar aao.
14: Main laun apna A game.
12: Brought to you by Indelible Homes. Build your dreams.

You're listening to Hum Playing Bollywood's Biggest Hits. Bollywood की खबरें भी आप तक यहाँ पे हम पहुँचाते हैं. Bollywood finally जाग उठा है, ऐसा लग रहा है. At least part of Bollywood जाग उठा है, जिनके पास काम नहीं है शायद. See, it's not fair to say that. But anyway, we have Sonakshi Sinha, who has come out and posted about Sonam Wangchuk. Sonam Wangchuk, इनके बारे में मैं काफ़ी समय से ये कह रहा हूँ कि वो एक हंगर स्ट्राइक पे है. And I think I've even lost count of days, yeah. I think it's almost reached 20 days now. 20 days se insaan ne khana nahi khaya hai, kuch bhi nahi, matlab, you know, sirf pani piya hai. And unki 9 se 10 kgs to unhone lose kiya hai, muscle weight bhi lose kiya hai. Doctors keh rahe hai ki it's not safe for him. But Sonam Wangchuk keh rahe hai ki aap mujhe mat convince karo bhookh hartal todne ke liye. Aap government ko convince karo ek dialogue ke liye. And that's what people are doing now. काफ़ी celebrities आए हैं बाहर और उन्होंने अब post करना शुरू कर दिया है कि please एक conversation तो कीजिए. And the demand is for धर्मेंद्र प्रधान to resign, जो education minister है. Anyway, पता नहीं उसमें कहाँ तक क्या success होने वाला है, but what everyone's demanding now is at least for a dialogue, for government to acknowledge कि हाँ भाई ऐसा कुछ हो रहा है और इसके बारे में बात करना ज़रूरी है. अब थोड़ा बहुत बॉलीवुड से सपोर्ट मिल रहा है, बट लेट्स सी इफ दैट गोज़ ऑन और नॉट. एंड सॉरी, बॉलीवुड न्यूज़ में ये न्यूज़ कवर करना पड़ रहा है, बट आई थिंक इट्स एन इम्पॉर्टेंट न्यूज़. जहाँ पे हम दूसरी चीज़ें कवर करते हैं बॉलीवुड के अराउंड, आई थिंक दिस इज़ समथिंग दैट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टू कवर एंड टू टॉक अबाउट. सो या मूवीज़ के बारे में भी बात करेंगे थोड़े टाइम में, बट अभी के लिए सोनम वांगचुक इज ग्रैबिंग ऑल द आई बॉल्स.

0: चाहे आप हम के दें चैट 20 को चाहते हो या ब्रीज मोर एज रॉक या माई एफएम के वाइब्स, मीडिया वर्क्स के पास हर प्लेटफॉर्म का मैजिक है और आउटडोर एडवर्टाइजिंग का भी, बसेस बिलबोर्ड ट्रेन स्टेशन स्ट्रीट फर्नीचर, डिजिटल हो या स्टैटिक, वीव कॉट द स्पॉटलाइट फॉर योर ब्रांड। कॉल मी कशिका ऑन 021-769-755। मीडिया वर्क्स, मीडिया दैट वर्क्स।
1: रिलायंस वेंटिलेशन सिस्टम।
2: हाय, मेरे घर में बहुत प्रॉब्लम्स हो रही है, जैसे कि क्राइंग विंडोज, सीलन आ गई है और खाने की बदबू तो जाती ही नहीं है।
1: मॉइस्चर और वेंटिलेशन का प्रॉब्लम लगता है।
2: और पता है, मेरे बच्चों को एस्मा और एलर्जी भी हो गई है।
1: और दैट्स नॉट गुड। हम आपके सभी प्रॉब्लम्स रिलायंस वेंटिलेशन सिस्टम से सॉल्व कर सकते हैं। इससे आपका घर रहेगा वार्म इन विंटर एंड कूल इन समर।

You're listening to Humpling Bollywood's biggest hits. Good morning breakfast show. आप सुन रहे थे और देखो देखते ही देखते it's time for me to say bye bye. मेरे कल्टी वारने का time यहाँ पे आ गया है. लेकिन thank you so much आपके साथ के लिए, आपके प्यार के लिए. Have a wonderful rest of your Friday and weekend. मैं आपको मिलूंगा मंडे को. अभी breakfast show में ही आऊँगा मैं, क्योंकि मंडे और ट्यूजडे भी विजयन पूजा रवे. So मैं आपके साथ रहूँगा यहाँ पे. But have a wonderful weekend. Stay safe. गेम्स हो रहे हैं इस बार वीकेंड पे हमारे ऑकलैंड में, तो काफ़ी जगहों पे ट्रैफिक हो सकता है, पुलिस हो सकती है काफ़ी जगहों पे. तो अपना ख्याल रखिएगा और ध्यान से आप अपना जो वीकेंड है इसको गुजारिए. दिस इज मी रुस्बे साइनिंग ऑफ फॉर नाउ. आई विल सी यू वेरी सून. बाय.

कहां से कहां जाऊं, कहां मैं छुप जाऊं, ये आधा सा दिल मैं कैसे लगाऊं, हूं खुद से जुदा।

बीते लम्हों को अब हर पल जिए हम रिवाइंड के साथ। एक ऐसा सफर जहां हर गाना एक याद है, हर सुर एक कहानी। हम रिवाइंड, जहां संगीत सिर्फ सुनाई नहीं देता।

0: eat better, live better.
1: Ladies and gentlemen, dil thaam ke baithi, kyunki aa rahi hai
2: My Time with Kashika.
3: Kia ora and namaskaram to all of you who have tuned in right now. 17 July ka din hai aur 2:10 ho chuke hain. Aapka saath nibhane ke liye main aapki reminder clock aa chuki hu studios mein 12 baje tak aapka mera saath bana rahega. वैसे कशिश फूड्स के सौजन्य से आपके लिए ये चीज़ मुमकिन हो जाती है, जहाँ आप और मैं मिलकर ढेर सारी बातें करते हैं, अपना दिल हल्का करते हैं, कुछ ना कुछ ऐसी बातें शेयर करते हैं जो फिर कई बार ऐसा होता है जो हमें ऑन एयर भी शेयर करना पड़ता है. जैसे कि आपकी ड्रीम्स, जैसे कि आपकी कोई कॉन्टेस्ट, जैसे कि आपकी 6-word story, कुछ भी हो सकता है, या फिर आपका ऑफिस शाउट आउट. इन सभी चीज़ों को मैं बहुत बहुत बेताबी के साथ इंतज़ार करती हूँ कि मैं वेट करूँ और कब आप लोगों के साथ बातचीत करूँ और ये सब आपके लिए मुमकिन हो जाता है. आज फ्राइडे है एंड ऐसे में मौसम आई थिंक बहुत ज़्यादा ख़राब था कल रात को. एंड आई होप यू आर सेफ. आप कहीं से भी साउथ आइलैंड में मुझे सुन रहे हैं, आई होप यू आर सेफ. मैं इतना पूछना चाहती हूँ, प्लीज़ अगर आप लिख सकें तो लिख के भेजिए दैट यू आर फाइन एब्सोल्युटली. ऑलराइट, मैं प्रोग्राम की शुरुआत करती हूँ एक रिमाइंडर के साथ दैट करण औजला जो है अगले महीने आने वाले हैं अपना पी पॉप कल्चर वर्ल्ड टूर लेकर स्पार्क अरीना में. और ऐसे में अगर आप यहाँ जाना चाहते हैं तो मैं आपको बता देती हूँ, बहुत सिंपल तरीका है. मैं कभी भी इनका एक गाना बजाऊंगी और आपको उस समय गेस करना है कि ये गाना है, कौन सा गाना है, और 5599 पे आपको टेक्स्ट करना है. ठीक है, ये सब तो चलता रहेगा, लेकिन इसके साथ साथ आज मैं बात करने वाली हूँ सौंफ के बारे में. अब ये सौंफ एक ऐसी चीज़ है, इस पर बहुत डिबेट हो रहा है, लेकिन वो क्या चीज़ है, क्या बात है. कई सालों से हम जानते हैं कि हमारे लिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट है. क्यों इम्पॉर्टेंट है, चलो इसके बारे में कुछ बातचीत करेंगे इन अ बिट. लेकिन अभी के लिए बचाऊं क्या,
0: बचाओ क्या.
3: एक बहुत ही ब्यूटीफुल एक्ट्रेस जिसने हमें ग्लोबल रिकॉग्निशन दिया, प्रियंका चोपड़ा कल अपना बर्थडे मनाने वाली हैं. दिस इज डेडिकेटेड टू हर.

0: व्हाट्स अड्डा
1: भाई, माय बैड, मैंने सौंफ बोल दिया, बट एक्चुअली आई हैड मेथी इन माय माइंड. तो सॉरी, कभी कभी ऐसा होता है कि यू नो, आप सौंफ खा के घर से आते हो लेकिन बाद में आपने मेथी के लिए प्रेप किया होता है, तो सॉरी फॉर दैट. अच्छा, एक चीज़ है, एक डिबेट है जो मैं डेफिनेटली आपके सामने रखना चाहती हूँ. और कहा जाता है कि मेथी दाना जो होता है ये बालों के लिए बहुत अच्छा होता है, क्योंकि इसके अंदर बहुत प्रोटीन और आयरन होती है और कुछ एंटीऑक्सीडेंट्स भी होते हैं और कुछ प्लांट बेस्ड इसमें कंपाउंड्स होते हैं जो बहुत अच्छा रहता है. बहुत अच्छा रहता है अगर आपका जो एक बालों का जो बॉल्डनेस की तरफ जा रहा होता है, इट्स सपोज टू बी वेरी गुड. सो एक कुछ DIY रेमेडीज़ भी होती हैं, लेकिन क्वेश्चन ये होता है कि मेथी दाने का पानी या मेथी दाने का पेस्ट क्या बेटर रहेगा. तो एक स्टडी की गई थी और ये पूछा गया था कि कैसा मेथी दाना आपके लिए फ़र्क पड़ सकता है. तो इस स्टडी के ज़रिए पता चला कि ये स्कैल्प के बालों के लिए बहुत अच्छा माना जाता है, रिच इन प्रोटीन है और एक स्ट्रेंथ आपके बालों को देते हैं, जबकि आयरन सपोर्ट जो है ये भी मिल जाती है और टू डिफरेंट हेयर फॉलिकल्स ऑक्सीजन तक भी पहुंचने लगता है, विच मीन्स आपके बालों में एक हेल्थी ग्रोथ होनी शुरू हो जाती है. बिकॉज मेथी दाना जो है ये ब्रिम करता है विद, मतलब इसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो हमारे बालों की जो एजिंग है उसको प्रोटेक्ट करती है और साथ साथ बालों की एक प्री कंडीशन होती है उसको भी इम्प्रूव करती है. इसके साथ साथ ये एंटी इन्फ्लेमेटरी भी होती है, एंटी माइक्रोबायल क्वालिटीज़ भी होती हैं जो एक स्कैल्प की इरिटेशन और डैंड्रफ से भी आपको बचा सकती है. अब बात चलती है जब के मेथी दाने का पानी, ये पानी आप कैसे, हो सकता है ओवरनाइट आप इसको भिगो लेते हैं, इसका पानी आप ड्रेन कर लेते हैं और उसके बाद आप यू नो, ये ग्रीस फ्री होता है, इसके अंदर मॉइस्चराइजिंग प्रॉपर्टीज़ होती है, नेचुरल शाइन होती है, आपके ऑयली स्कैल्प में काफ़ी फ़र्क लेकर आ सकती है. अब ये ज़रूर है दैट इसको अगर आप इस्तेमाल करें, आप इसको इसका पानी अपने यू नो स्कैल्प पे स्प्रे भी करें, इट्स लाइट, ग्रीस फ्री भी है, आप इसको इस्तेमाल भी कर सकते हो. लेकिन कभी कभी ऐसा होता है क्योंकि डज नॉट हैव इनफ मॉइस्चर, बट इट हैज़ ऑल दोज क्वालिटीज़. नाउ टॉकिंग अबाउट मेथी दाने का पेस्ट, तो ये जो पेस्ट होता है दरअसल आप ये रात को आपने दोबारा मेथी दाना को आपने भिगो लिया और फिर उसको एक पेस्ट बना दिया. कभी कभी लोग इसमें एलोवेरा या दही या कोकोनट मिल्क इसमें ऐड करते हैं, या जैसे मैंने आपको बताया दही ऐड करते हैं और इसका एक मिक्सचर बना लेते हैं. अब क्योंकि सीड्स इसकी जो हैं बहुत अच्छी हमारे स्कैल्प के लिए रहती हैं, तो ये आपके ड्राई हेयर के लिए बहुत अच्छी कंडीशनिंग होती है, ये आपका फ्रिज कंट्रोल करती है, आपके जो बाल हो उनको सॉफ्ट और स्मूथ मेंटेन करने में हेल्प करती है, जो डैंड्रफ की फ्लेक्स आपके स्कैल्प पे होती हैं उनको हटाने की भी कोशिश करती है. कभी कभी ओवर यूज़ जो होता है इसका अच्छा नहीं रहता, इसीलिए एक ये फेंट हर्बल स्मेल जो है वो ज़रूर छोड़ देती है, कभी कभी वॉश करने में भी मुश्किल हो जाती है. सो इफ़ यू हैव टू कंपेयर द टू, क्या एक मेथड है जिसको हम कह सकते हैं कि बालों के लिए अच्छा रहता है, इसका पेस्ट इसके अलग बेनिफिट्स लेकर आता है जहाँ पे इसके सीड्स जो हैं इसका कॉन्टैक्ट आपकी स्कैल्प को हो जाता है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है. ये एक DIY ट्रीटमेंट आपके लिए है जो आपके हेयर लॉस में हेल्प कर सकती है, बालों को बढ़ाने के लिए, न्यूट्रिशन हार्मोन्स देने के लिए, आपके स्ट्रेस लेवल्स, आपके स्कैल्प की जो हेल्थ है उसको हटाने के लिए और स्कैल्प हेल्थ को बढ़ाने के लिए, माफ़ कीजिएगा, आपके पॉसिबल जो कोई यू नो इवन मैं कह सकती हूँ शुगर, डायबिटीज़, उसको भी हटाने के लिए मेथी दाने का पानी काफ़ी अच्छा रहता है. तो अब आपके पास दोनों ऑल्टरनेट्स हैं, आप जो भी इनमें से चाहें तो ट्राई कर सकते हैं. सिक्स वर्ड स्टोरी आने वाली है बहुत जल्द, लेकिन ऑफिस शाउट आउट का वक्त भी हो रहा है. कहाँ से सुन रहे हैं बताइए.
0: My Time with Kashika, brought to you by Kashish Foods. Eat better, live better.
2: 80s ke retro gaane.

0: disco ho ya rock and roll. Download Rova to listen Hum 80s Jukebox.
1: हाँ, सोना संसार पापा टोटो के गहनों के साथ आप भी चमक जाएंगे।
2: चूड़ी, कंगन, पायल, बाली, झुमके और चोकर, ये सोना वही सोना संसार है जहाँ दिल्ली से लेकर दुबई तक के सभी गोल्ड ज्वेलरी डिजाइन्स मिलते हैं, समझे?
1: सोना संसार पापा टोटो, जहाँ था वहाँ अभी भी है। शॉप इनसाइड विद आजा डिजाइन स्टूडियो, कॉर्नर ऑफ ग्रेट साउथ रोड एंड ईस्ट तमाकी लाइट्स, पापा टोटो।
3: सोना संसार, 138 ग्रेट साउथ रोड, पापा टोटो। सोना संसार, यू आर नेवर टू ओल्ड फॉर गोल्ड।
4: When City Rail Link arrives soon, it's going to give us all more time. From Papa Toy Toy, you'll be able to go from instant noodles for one in the library to... Hey, hey! Noodles with friends on Karanga Hape Road! In just 29 minutes. Auckland Transport and City Rail Link. More connections that'll take you from a night in to a night out.
5: Stuck for dinner ideas? Faro Kitchen has you covered with fresh, chef-created meals that are ready in no time. Dive into rich chicken tikka with creamy, tangy sauce and aromatic spices. Or classic smoked fish pie. Tender, flaky fish, buttery bechamel and a golden kumara mash. Faro Kitchen's oven-ready meals make wholesome dinners quick and stress-free. Available online or at your local Faro store. Just pop it in the oven and relax. Faro Kitchen, dinner made deliciously easy.
6: होम लोन के साथ थोड़ा कैश भी पाना चाहते हैं? नया होम लोन लेना हो या मौजूदा लोन का रिव्यू करवाना हो, स्क्विरल आपको दिलाएगा एक ऐसी जबरदस्त डील कि आपकी हो जाएगी बल्ले बल्ले। जानिए पावर ऑफ द स्क्विरल इफेक्ट, squirrel.co.in से।
7: At Bunnings, you can make cleaning up your home easy with Sally's 750ml Rapid Mold Killer, only $9.90. Or an all-set 50-litre clear storage container, just $8.99. Bunnings makes cleaning easy. Lowest prices are just the beginning.
8: आपके सामने एक रेड बटन है।
9: दबा दिया।
8: नहीं दबाना था।
10: The madness is back. Dhamaal 4.
11: गुलाबी साड़ी में तू लग रहा।
10: Starring Ajay Devgan, Arshad Varsi, Ritesh Deshmukh and Javed Jafri. Return in Dhamaal 4. Directed by Indra Kumar.
12: गुलाड़ी बिना चटनी कैसे बनी?
10: Watch the biggest family entertainer, Dhamaal 4, in cinemas now.
13: पता नहीं ऐसे dangerous situation में मैं automatically आगे कैसे आ जाता।

0: My Time with Kashika. Brought to you by Kashish Foods. Eat better, live better.
1: Office shout out.
2: So, ऑफिस शाउट आउट का वक्त आ रहा है एंड मेरे पास दो मैसेजेस हैं आज. एक पहला मैसेज जो आया है वो आया है माउंट रॉस्कल से. आप वघार क्वीन हैं मीनाक्षी पांड्या, आपका मैसेज आया है मेरे पास. थैंक यू सो मच. एंड आप मुझे ध्यान से सुन रही हैं और खाना बना रही हैं. आज क्या पका रही हैं भाई? चलिए चलिए एक साथ मिलकर हम लोग पकाते हैं और लोगों को नहीं खाना पकाते हैं, ठीक है? अगले घंटे पर कुछ अच्छी सी एक रेसिपी होगी रेस्क्यू मी रिसाइकल में. लेकिन अभी के लिए मैं बात कर रही हूँ फ्रॉम वेलिंगटन. आई हैव गॉट एश फ्रॉम सुशील मसल शेफ कैफे. देखो खाने पीने वाले लोग हमारे साथ हमेशा जुड़ते रहते हैं. वेरी सनी हेल्थी आयुर्वेदिक और मेथी दाने के नुस्खे बताने वाली. गुड मॉर्निंग कशिका जी. एश फ्रॉम सुशील मसल शेफ कैफे वेलिंगटन. थैंक यू एंड आई होप यू आर सेफ देयर सुशील एंड जितने भी लोग मुझे साउथ आइलैंड में सुन रहे हैं. थैंक यू सो मच एश फ्रॉम सुशील मसल शेफ कैफे. एंड ऑल्सो बिग थैंक यू टू आर वगार क्वीन मीनाक्षी पांड्या फ्रॉम माउंट रॉस्किल. तो चलो भाई आगे बढ़ते हैं इस गाने के लिए.
0: Top hit of the hour, brought to you by Indelible Homes. Build your dreams.

I just love this one. Okay. Achha, dekho, Queenstown ke baare mein aapko batane wali hoon. It's going to become Netflix ka naya leading character. ये एक प्रोडक्शन अंडरवे है ऑन क्वींसटाउन और ये जो है ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड में ये सीरीज जो है ये फिल्म की जाने वाली है स्पेशली इन न्यूजीलैंड बट इट्स गॉट मी थिंकिंग कि नेटफ्लिक्स जो है एक कोई और कीवी टाउन ढूंढ रहे हैं फॉर देयर ड्रामा एंड व्हाट शुड दैट प्लेस बी 8 part का ड्रामा है विच इज गोइंग टू बी Beneath the glamour of Queenstown ka lovely ski scene. Ab ye jo family jo privilege hone wali hai, ye jo kuch pata nahi kya kahani hai, but it stars Emmy Award nominated actors Rufus Sewell alongside Frances O'Connor or Alicia Debenham Carey and New Zealand ke actor Tekoe Tuhaka. To ye sab jo hai, of course ye ek प्रोडक्शन जो है विच इज़ अराउंड $40 million एंड ये हमारी इकोनॉमी में फ़ायदा करने वाली है एक कास्ट है विच इज़ अ 450 की कास्ट एंड क्रू 5 महीने तक ये काम करने वाले मेजॉरिटी ऑफ द रोल्स न्यूजीलैंडर्स को ही भरने पड़ेंगे 120 लोकल क्रू जो है दे आर ऑलरेडी वर्किंग फॉर द प्रोडक्शन तो नेटफ्लिक्स ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड के कॉन्टेंट डायरेक्टर अमांडा इन्होंने बताया कि क्वींसटाउन का एक ड्रामेटिक बैकड्रॉप जो है इसको इस्तेमाल किया जाने वाला है इट्स एन आइडियल प्लेस फॉर द सीरीज इट्स गोइंग टू बी अ बोल्ड स्टोरी ऑफ पावर क्लास एंड फैमिली जो एक यू नो लग्जरी स्की टाउन यानी कि क्वींसटाउन में रहते हैं और कुछ मेंबर्स जो हैं जो इसमें काम करने वाले हैं काफ़ी एग्रेसिव होंगे काफ़ी बढ़िया एक्टर्स होंगे एंड कमाल होने वाला है सो द न्यूजीलैंड फिल्म कमीशन ने बताया है कि ये इस तरह की लोकल स्क्रीनिंग के साथ और जॉब्स बढ़ रही हैं इंटर्नशिप्स बढ़ रही हैं नए टैलेंट को फ़ायदा मिल रहा है एंड न्यूजीलैंड इज़ गोइंग प्लेसेस जहाँ पे ये टेलीविज़न पर भी नज़र आने वाली है

Eat better, live better. और बॉलीवुड में क्या हो रहा है? वैसे द मेकर्स ऑफ बटवारा 1947, इन्होंने एक 12 सिटी का प्रमोशनल टूर, काश ये यहाँ पर भी हो, लेकिन यहाँ नहीं है. लेकिन ये कास्ट एंड क्रू जो है ये मल्टीपल सिटीज़ में जाने वाली है. और अकॉर्डिंग टू मेकर्स, ये नेशन वाइड कैंपेन जो है ये स्टोरी अपने आप में ही दर्शाने वाली है. सो बंटवारा में आप शबाना आज़मी, सनी देओल, प्रीति जिंटा, करण देओल, अली फाजल, अभिमन्यु सिंह को देखने वाले हैं. राजकुमार संतोषी और सनी देओल 30 साल के बाद एक साथ आने वाले हैं. इट्स बैक

0: Headline with Kashika. Brought to you by Kashish Foods. Eat better, live better.
1: Eat better, live better and laugh better मैं कहना चाहती हूँ because laughter is the best medicine. और कल ये होने वाला है, कृष्णाभिषेक राजीव ठाकुर लैंड हो चुके हैं ऑलरेडी ग्रेट कॉमेडी नाइट के लिए, जो कि आपके लिए पहले टीवी पर नजर आते थे लेकिन अब ये आपको नजर आने वाले हैं नन अदर देन सामने आमने. और ये होने वाला है कल एट द विक्ट्री कन्वेंशन सेंटर. बुक माई टिकट डॉट को डॉट एन जेड के जरिए जाइए, टिकट खरीद लीजिए. आई थिंक हार्डली 150-200 टिकट्स ही बची हुई हैं. सो ये नॉन स्टॉप लाफ्टर के लिए, ये फन के लिए, जल्दी से जल्दी आप टिकट बुक कर सकते हैं.
0: ड्रीम डायरी.

ड्रीम डायरी में मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मैं एक बहुत ही असमंजस में पड़ गई थी, जहाँ पे एक पर्टिकुलर टाइप का जो कलर है वो कितना चैलेंज कर सकता है। कल आपका टेक्स्ट आया, आई स्टार्टेड लुकिंग फॉर इट कि क्या है। तो ये ब्लू कलर आपने देखा, ब्लू कलर रिप्रेजेंट करता है आपकी फीलिंग्स अबाउट पॉजिटिविटी, थॉटफुलनेस, द ट्रूथ एंड सेंसिटिविटी, काइंडनेस एंड नॉट टू बी मीन। ये फीलिंग एक सिचुएशन आपकी लाइफ में अगर आ रही है, ये थॉट्स और इमोशंस आपके बिहेवियर के पैटर्न में कहीं पे है, तो ये जेन्युइन है, ये ऑनेस्ट है, ये फीलिंग बहुत पॉजिटिव है और ये सिचुएशन पॉजिटिव हो सकती है, ये पॉजिटिव चॉइस आपकी हो सकती है। सो ये इसी तरह से अगर आपको कभी इस तरह का सपना आए तो समझ लीजिए कि आपके लिए ये अच्छा रहता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपको लगता है कहीं किसी एक स्केरी बेसमेंट पे आप गिर रहे हैं एंड आपको वहाँ पे एक ब्लू लाइट दिख रही है, तो एक बेसिकली इट्स अ वेकिंग लाइफ, जहाँ पे कोई प्रॉब्लम्स जो आप जिनमें डील कर रहे थे वो आपको ब्लू लाइट दिख रही है एंड उसके बाद आप उसमें पहुँच रहे पॉजिटिविटी की कलर में। ये जो कलर है पॉजिटिव चेंज लेकर आता है, बिहेवियर और न्यू फाउंड काइंडनेस एंड सेंसिटिविटी लेकर आता है।

थ्रोबैक में तो मैं पहुंच रही हूं, लेकिन आप लोगों के लिए हर साल इस टाइम के टाइम डेफिनेटली गरबा शुरू हो जाता है और लोटस प्रोडक्शन श्री इवेंट न्यूजीलैंड विनय मेहता प्रांशी ग्रुप आपके लिए कल्चरल सेलिब्रेशन लेकर आ रहे हैं गरबा विद राज गढ़वी लाइव, और ये 1 अगस्त के दिन सैटरडे को महात्मा गांधी सेंटर में होने वाला है और टिकट्स आपको events.tickets.co.nz के जरिए मिल सकता है। स्वप्निल शाह से बातें करें 02243947 के जरिए और ये बहुत ही अमेजिंग रहने वाला है। वैसे इस तरह की गरबा नाइट्स जो हैं, बस धीरे धीरे ये सीज़न आने वाला है जहां आप इनको सेलिब्रेट करेंगे। याद रहे करण औजला का गाना कभी भी बच सकता है, KA लिखना है आपने और उसके बाद आपको लिखना है कौन सा गाना आइडेंटिफाई करना है टू विन अ डबल पास।

0: Rory and Ben didn't think they needed a DVS system.
1: We've got double glazing.
0: Have you still got that cold, damp feeling?
2: Yeah, we do.
0: So Tori and Ben got DVS home ventilation and its fresh air in, stale air out technology went to work, making their rooms drier and healthier. Say no to that cold, damp feeling. Say yes to DVS. Your healthy home isn't complete without it.
3: Spark Satellite, powered by Starlink's satellite-to-mobile technology, is officially live. With an eligible phone and line of sight to the sky, you can now send texts and use data on select satellite-ready apps while you're out exploring off the beaten path. With Spark Satellite, the best coverage just got better. Go to Spark to find out more. As awarded by Open Signal, requires eligible phone, SIM and plan. T's and C's apply.
4: Mobile Express is here. Our new self-service stations are your own pit stop, so you can fuel up without slowing your day down and still earn Smiles points on every fill. Mobile Express, let's go.
5: Feed the faith with the 1NZ Warriors range, exclusively at Wendy's. Try the new signature burgers, salted caramel frosty and cookie dough bites. Order on the Wendy's NZ app to win weekly prizes and lunch with the players. Only at Wendy's. T's and C's apply.
6: सुनो, बिल्स बढ़ते जा रहे हैं और महंगाई भी।
7: हाँ, मॉर्गेज भरना भी मुश्किल हो रहा है। सोच रहा हूँ घर बेच के छोटा कर लें।
6: घर बेचने से पहले NZPMI के पॉल से बात कीजिए। मेरे दोस्त ने भी की थी, अपनी जमीन पर नया घर और दो और घर बनवाए। अब रेंट भी आ रहा है।
7: पर डेवलपमेंट के पैसे
6: आपको नहीं लगाने, NZPMI सब संभाल लेगा। NZPMI, योर लोकल डेवलपमेंट एक्सपर्ट। फ्री साइट असेसमेंट के लिए विजिट nzpmi.co.nz या कॉल 0800 4NZPMI।
8: Rebel's end of season sale is on now. Score up to 50% on selected big brand clothing, footwear and more. There's adults hoodies and sweats from $49, kids hoodies and sweats from $35. End of season sale is on now, only at Rebel Sport. See you tonight for T's and C's.
9: अपनी विंटर को वार्म अप कीजिए विद हॉट डील्स एट लाइफस्टाइल फर्नीचर. सोफास, रिक्लाइनर्स, डाइनिंग और लिविंग रूम फर्नीचर पर पाइए मैसिव सेविंग्स. विजिट कीजिए उनके तीन ऑकलैंड स्टोर्स, मनुकाओ, वेस्टगेट या माउंट वेलिंगटन. लाइफस्टाइल फर्नीचर, स्टे इन स्टाइल.
10: हम टाइम चेक. हम न्यूज़ ब्रॉट टू यू बाय लॉजिक फाइनेंस लिमिटेड, चेंजिंग लाइव्स विद लॉजिक.
11: Morning, I'm Grace Cocker with the latest at 11. A man and a woman have been arrested after a serious assault in Christchurch. The victim was attacked yesterday at a Merrington Crescent address before being found 20 minutes later at a home on Orpower Road around noon. Police are seeking witnesses. Submissions on the controversial move-on bill reflect concerns about its effectiveness. Community Housing Aotearoa says it will address the symptoms but not the causes of rough sleeping. Chief Executive Paul Gilbert says there's a fundamental lack of places to go.
12: Our 26,000 homes across the country, they're all full of people. So it's not as if we have spare vacant capacity in our system.
11: Hauraki District Council is determined to reverse the contamination of its recycling. They are introducing a four-strike approach. Deputy Mayor Paul Milner says the issue escalated since the pandemic.
13: It's got a little bit worse each month and each year as we've gone on, and it's got to a point we need to draw a line in the sand and get people back on track doing the right things.
11: The US military will begin testing testosterone levels in its troops. Defence Secretary Pete Hegseth says it's about maximising performance.
14: This initiative, it's not about artificial enhancement. It's about restoring and optimising your natural capabilities.
11: In sport, Jackson Suber is the surprise leader after the first round of the Open Championship at Royal Birkdale. Before this week, the American golfer had never played a links course before and had never stepped foot in Europe.
15: Monday was my first round of links golf, so I've played 27 holes before I played the first round today.
11: And the Black Caps are chasing 141 to win the third ODI against the West Indies in Guyana. A short time ago, they were 51-2 after 16 overs.
10: Sports News. Brought to you by Sona Sansar, Papa Toy and Mount Roskill.
16: हम पर शोक सूचनाएं आप तक लाते हैं. Anne's Funeral Home and On-Site Cremations.
17: सूचित किया जाता है कि मांगरे के जयचंद्र की पत्नी वैलालिया बा के राम अवतार पाछू की बहू पिंकी जैलेन शर्मिला रत्नेश वर्षा की माँ अजय ज्योति जय पूनम वरुण की सास सावित्री या श्रीमती का निधन हो गया है. अंतिम संस्कार आज दोपहर 1 बजे मेनकाओ मेमोरियल गार्डन में किया जाएगा। ज्यादा जानकारी के लिए 0272386305 पर आप संपर्क कर सकते हैं। सूचना दोबारा सुने, मांगरे के जयचंद्र की पत्नी वायलालिया बा के राम अवतार पाचू की बहू पिंकी जैलेन शर्मिला रत्नेश वर्षा की माँ अजय ज्योति जय पूनम अवरुण की सास सावित्री या श्रीमती की का निधन हो गया है। अंतिम संस्कार सिंह्स फ्यूनरल सर्विस में मेनका मेमोरियल गार्डन में किया जाएगा आज दोपहर 1 बजे। ज़्यादा जानकारी के लिए 0272386305 पर आप संपर्क कर सकते हैं। सूचित किया जाता है कि अविनेश शैलेश रविनेश और दिनेश लाल के पिता सविता देवी लाल के पति एल्फ्रिस्टन के मोतीलाल की मृत्यु मिडलमोर हॉस्पिटल में हो गई। अंतिम संस्कार आज दोपहर 1 बजे एंथ फ्यूनरल होम में किया जाएगा। ज़्यादा जानकारी के लिए 0220875234 पर आप संपर्क कर सकते हैं। सूचना दोबारा सुने, अविनेश शैलेश रविनेश और दिनेश लाल के पिता सविता देवी लाल के पति एल्फ्रिस्टन के मोतीलाल की मृत्यु मिडलमोर हॉस्पिटल में हो गई। अंतिम संस्कार आज दोपहर 1 बजे एंस फ्यूनरल होम एंड ऑनसाइट क्रिमेशंस में किया जाएगा। ज़्यादा जानकारी के लिए 0220875234 पर आप संपर्क कर सकते हैं। सूचित किया जाता है कि स्वर्गीय विष्णुदेव शर्मा और सुमित्रा राज के भाई स्वागिता राकेश और अकेशनी के पिता स्वर्गीय चंद्र प्रभा के पति मानुरीवा ऑकलैंड के प्रेम नारायण की मृत्यु हो गई है। अंतिम संस्कार कल 3 बजे ऑकलैंड इंडियन फ्यूनरल होम एंड ऑनसाइट क्रिमेशंस में किया जाएगा। ज़्यादा जानकारी के लिए 0223224133 पर आप संपर्क कर सकते हैं। सूचना दोबारा सुने, स्वर्गीय विष्णुदेव शर्मा और सुमित्रा राज के भाई स्वागिता राकेश आकेशनी के पिता स्वर्गीय चंद्रप्रभा के पति मानुरीवा के प्रेम नारायण की मृत्यु ऑकलैंड में हो गई। अंतिम संस्कार कल 3 बजे ऑकलैंड इंडियन फ्यूनरल होम एंड ऑनसाइट क्रिमेशंस में किया जाएगा। ज़्यादा जानकारी के लिए 0223224133 पर आप संपर्क कर सकते हैं।
16: शोक सूचनाएं वीकडेज पर सुबह 6 तथा 11 बजे शाम 6 बजे और वीकेंड्स पर दोपहर 12 बजे पर प्रसारित की जाएगी।
10: बॉलीवुड का असली ब्लॉकबस्टर
2: पूरे शहर पे कब्जा होगा, राज होगा।
10: प्लेइंग बॉलीवुड्स बिगेस्ट हिट्स। वेदर अपडेट ब्रॉट टू यू बाय गो बनानास चाइल्ड केयर वेयर लर्निंग इज फन। कॉल 0800 462626।
17: The highs of 16 overnight, temperature of 11. आज का फॉरकास्ट बताया जा रहा है क्लाउडी डे रहेगा, कुछ शावर शायद दोपहर के समय पड़ सकती हैं साउथ वेस्ट की हवाओं के साथ साथ। इस समय आप 15 डिग्री टेम्परेचर महसूस कर पा रहे हैं। 5:26 पर सनसेट बताया गया है।

0: क्योंकि आ रही है
1: माय टाइम विद काशिका।
2: नमस्कार एंड अ वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू यू पीपल। 17 जुलाई का दिन है, आपका बर्थडे एनिवर्सरी है, तो वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे, हैप्पी एनिवर्सरी टू यू। और ऐसे में आपका साथ तो मैं निभा रही हूँ, कुछ आपके साथ बहुत इम्पोर्टेंट बात भी करना चाहती हूँ। अब ये जो इम्पोर्टेंट बात है कि कौन सा एक तरीका है दैट अगर आप एक पार्किंग टिकट से अपने आप को हटाना चाहते हैं, कोशिश कर रही हूँ, कुछ जानकारी आई है तो मैंने कहा भाई सबसे पहले मैं अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करूँगी। तो भाई तैयार रहिएगा, थोड़ी देर बाद आपके लिए ये मुमकिन होने वाला है। कुछ इंसाइट्स मैं लेकर आ रही हूँ, लेकिन इसके साथ भाई बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, कशिश फूड्स के सौजन्य से आपके लिए माय टाइम लेकर मैं 10 से 12 बजे तक मंडे टू फ्राइडे आ जाती हूँ। आज मेरी आवाज़ में खनक इसीलिए है क्योंकि छुट्टी, भाई 3 दिन काम किया है, वेडनेसडे को आ गई थी मैं छुट्टी से और उसके बाद अब 3 दिन काम किया है, उसके बाद मंडे को वापस मुलाकात होगी। ना ना ना, वेट, यहाँ ट्विस्ट है। अब ये मंडे को तो काम मुलाकात होगी, लेकिन जितने लोग नॉर्थ शोर की तरफ रह रहे हैं, आपको बताना चाहती हूँ नमस्ते इंडियन सुपरमार्केट जो वायरो रोड वायरो वैली पे है, कल मैं वहाँ सुबह 10 बजे होने वाली हूँ क्योंकि कशिश फूड्स की वहाँ पे कमाल की फूड टेस्टिंग होने वाली है। तो डेफिनेटली मैं चाहूँगी कि आप आइएगा 10 से 12 बजे के दरमियान और मुझसे मुलाकात ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि मैं चाहूँगी कि आपके साथ एक अच्छे बहाने के साथ मैं मिल लूँ। ठीक है, चलो ये आपका मेरा एक प्रोग्राम सेट हो चुका, नॉट श्योर एट नमस्ते इंडियन सुपरमार्केट में कशिश फूड्स की फूड टेस्टिंग होने वाली है, आपकी मेरी 10 से 12 के बीच में मुलाकात होगी। लेकिन अभी के लिए मैं एक ऐसी लेडी एंड लेडी के बारे में बात कर रही हूँ जिनका नाम है प्रियंका चोपड़ा, इनसे मुलाकात हुई, इनके साथ इंटरव्यू किया, इनके साथ मेरी लगता है कई सालों से ताल्लुकात चल रहे, जब जब मिलती हैं बहुत प्यार से मिलती हैं और ये अपना बर्थडे कल सेलिब्रेट करने वाली हैं। तो इनका एक बहुत ही खूबसूरत गाना जिसके लॉन्च पर आईफा में मैं सिंगापुर में अवेलेबल थी, तो उस समय इनका ये गाना बजा था और इन्होंने हल्का सा डांस किया था। बजाओ
3: बजाओ क्या

0: मिड मॉर्निंग मजा में आज वो बात करने वाली हूँ जिसके लिए हम सब भयभीत हो जाते हैं। ये बात इम्पॉर्टेंट है कि कई बार हम किस तरह काम करते हैं, लेकिन एक वेलिंगटन सिटी काउंसिल ने एक चीज़ रिलीज़ की है, एक इन्फॉर्मेशन। थाउजेंड्स ऑफ वेलिंगटोनियंस जो हैं, इनको अपना बहुत बार इनको टिकट वगैरह भी मिलता है, कुछ नंबर्स जो हैं वो भी पता चलते हैं कि पार्किंग टिकट है, कि काउंसिल की स्पेस में आपने पार्क कर दिया है, कहीं पार्किंग की गलती हो गई है। अब ये क्या होता है, 60% ऑफ द टाइम ये अकॉर्डिंग टू द डेटा ये रेजिडेंट्स के लिए इमरजेंसी रीज़न हो सकता है, उनको लगता है उन्होंने पे कर दिया है, या फिर कोई रोड की मार्किंग या साइनेज देखी नहीं है, कोई दूसरा व्हीकल नहीं हटाया जा रहा तो उन्होंने अपना व्हीकल लगा दिया, अनअवेयर ऑफ द ऑफेंस, कुछ फाइनेंशियल रीजंस की वजह से कांट अफोर्ड, या रेजिडेंट का कोई साइन लगा है, कोई कूपन या कोई परमिट है उस पर आपने लगा दिया है। बस ऐसे में मीटर पार्किंग की जो कॉस्टिंग होती है $5 AM to 8 PM मोस्टली सेंट्रल वेलिंगटन में पाई जाती है, विच इज़ गॉट अ लिमिट ऑफ 120 मिनट्स, 8 बजे सुबह से लेकर शाम 5 बजे तक, 180 मिनट्स जो है फ्रॉम 5 PM to 8 PM। अब ये वीकेंड पे रेट जो है ड्रॉप हो जाता है $3 पर आवर के हिसाब से। ये चैलेंजिंग फैक्ट्स जो कई बार जो मैंने आपको बताए हैं कि पार्किंग टिकट का इशू जो चल रहा होता है कि 2 घंटे की पार्किंग के बाद क्या होता है, उसके बाद एक $70 का टिकट आपको लग जाता है। तो इफ़ यू आर पार्किंग एट द सेम स्पॉट लेकिन आपने उस गार को थोड़ा आगे पीछे कर लिया, दैट्स ऑल यू नीड टू डू, ही सेड। उन्होंने एक अपील की थी और उनकी अपील से उन्होंने जीत गए थे। कहीं एक इंस्टेंस ऐसा हुआ था, उन्होंने कहा कि उन्होंने टिकट को चैलेंज किया जहाँ पे वो अपने एक फ्रेंड को विजिट कर रहे थे हॉस्पिटल में, जहाँ पे उनको एक 10 मिनट्स की पार्किंग में उन्होंने गाड़ी लगाई थी। अब ऐसी कितनी अपील्स आती हुई होंगी, यहाँ पे भी आती होंगी डेफिनेटली, लेकिन काउंसिल उन्हें किस तरह से अप्रोच करता है, काउंसिल किस तरह से उन्हें एक्सेप्ट करता है। ये अपील जो होती है, ये टिकट को आप चैलेंज कर रहे होते हैं और कभी वेव करने कर देते हैं, कैंसिल कर देते हैं इन्फ्रिंजमेंट बेस्ड ऑन द सर्कमस्टांसेस, और ये कैटेगरी जो है फिर उसके बाद रिकॉर्ड कर ली जाती है। पेड एंड टाइम रिस्ट्रिक्टेड जो ऑन स्ट्रीट पार्किंग होती है बहुत ज़्यादा डिमांड में होती है, और ये पार्किंग किस तरह से आप मैनेज करते हैं। मोस्ट पॉपुलरली जो एक जो एक एक्सक्यूज आता है या लोग जो फाइट करते हैं वो है ऑन अ बरीवमेंट, अ कार क्रैश और समथिंग, या फिर वो किसी और की गाड़ी पार्क है गलत जगह पे, इसी तरह से। सो 25% ऑफ द टाइम इट हेल्प्स, इट वर्क्स। लेकिन अगर आपको कुछ इशू है, जैसे सपोज करो आपको लूजीज हो गए हैं या कुछ हो सकता है, या आप अपने बच्चे को ब्रेस्ट फीड कर रहे हैं, तो ये सब चीज़ों के लिए यू हैव टू स्टॉप इमरजेंसी में, यू कांट बी फाइंड कैन यू। तो इस तरह की कुछ अपील्स जो है आई हैं और इस तरह से उनकी टिकट्स वेव ऑफ भी हुए हैं। इफ़ यू आर नॉट अवेयर ऑफ द ब्रेकिंग ऑफ द रूल्स, आपको पता है कि आपके पास शायद पैसे नहीं है, एटलीस्ट वर्क टूवर्ड्स इट। जब आपको ऐसे सर्कमस्टांसेस पता चल जाते हैं और आपको लगता है कि काउंसिल को सिंपथाइज करना चाहिए, लेकिन काउंसिल को दरअसल वो पूरे के पूरे पता होने चाहिए एक्सक्यूजेस क्या है। काउंसिल को इट ऑलवेज प्रोवाइड्स यू अ 6 मिनट्स का ग्रेस, और ये आपके लिए 6 मिनट्स का ग्रेस काफ़ी रहता है वैसे तो। कभी कभी आपको पता नहीं चलता, ये टिकट इशू हो जाती है, एंड दैट्स हाउ यू स्टार्ट गेटिंग द चैलेंज। किसी एक बंदे के बारे में RNZ में लिख कर आए, इन्हें 30 टिकट्स मिले हैं, पार्किंग टिकट्स, एंड दिस इज़ हैपेंड ओवर 45 डेज। ओ माई गुडनेस। लेकिन एक के पास एक टिकट आया और कोई शायद आई थिंक लॉ स्टूडेंट थे, एंड उन्हें लगा कि उन्होंने एक मेल भेज दी है, उन्होंने उस चीज़ को ठीक से फाइट नहीं किया। लेकिन ये कभी कभी भ्रम होता है हमारा, और उसे बहुत इम्पोर्टेंट है क्लियर करना। 6 वर्ड स्टोरी कमिंग अप नेक्स्ट।
1: जगत में कैसा रहता रे, मन फूला फूला फिरे, जगत में कैसा रहता रे।
2: हर दिन की भाग दौड़ में आप अपनी पसंद की चीजें नहीं कर पाते। आपको फीजी कीर्तन पसंद है लेकिन पता नहीं कब और कैसे सुने। हम फीजी कीर्तन संग्रह पर आप जब चाहे तब अपने फेवरेट कीर्तन का मजा ले सकते हैं। हम फीजी कीर्तन संग्रह, दुनिया का पहला 24/7 फीजी कीर्तन प्लेटफॉर्म। डाउनलोड करें रोवा ऐप या hum.rova.nz पर सुने।
3: What if your next holiday wasn't just a holiday,
4: but the adventure everyone talks about?
3: Imagine chasing waterfalls,
4: wandering lush rice terraces,
3: catching unforgettable sunsets,
4: and relaxing at iconic beach clubs.
3: Then racing through the buzzing streets in a tuk-tuk,
4: discovering incredible temples,
3: tasting world-famous street food.
4: Travel with Sandy and Rusby as they explore the best of Bali and Bangkok with an amazing group of listeners. Text DRIVE to 5599 for the all-inclusive tour price.
5: Okay, let's run through this. You've set up a coffee group, a mum's group, a connect group, and you've adopted group fitness like a religion. Face it, you're good in groups. So why not turn your superpower into getting a group of blood buddies together? This winter, with all the dreaded lurgies around, NZ Blood needs blood and plasma more than ever, and your donations could save lots of lives. Friends, whānau, workmates, get your blood buddies together, then book a time to donate at nzblood.co.nz. Give blood. Give plasma. Save lives.
6: आजकल लीगल इन्फॉर्मेशन पर सब ज्ञान देते हैं, जैसे खुद कोई गूगल हो।
7: मगर सही गाइडेंस विद करेक्ट लीगल प्रोसेसेस तो एक ही है, सुपर जोड़ी ऑफ राजन आशिमा फ्रॉम लीगल एसोसिएट्स, नोटरी पब्लिक, बैरिस्टर्स एंड सॉलिसिटर्स।
8: लीगल एसोसिएट्स लॉ फर्म बेस्ड इन साउथ ऑकलैंड डील्स इन सेल एंड परचेज ऑफ बिजनेस एंड प्रॉपर्टी, लीजेस, सब डिविजन, इमिग्रेशन एंड क्रिमिनल लॉ, नोटरी सर्विसेज एंड पावर ऑफ अटर्नी। फॉर अपॉइंटमेंट्स विद राजा आशिमा कॉल ऑन 09279439 और विजिट legalassociates.co.nz।
9: आपके सामने एक रेड बटन है,
10: दबा दिया।
9: नहीं दबाना था।
11: The madness is back, धमाल 4।
12: गुलाबी साड़ी में तू लग रहा।
11: Starring अजय देवगन, अर्शद वारसी, रितेश देशमुख एंड जावेद जाफरी। Return in धमाल 4, directed by इंदिरा कुमार।
13: गुलाड़ी बिना चटनी कैसे बनी?
11: Watch the biggest family entertainer, धमाल 4, in cinemas now.
14: पता नहीं ऐसे dangerous situation में मैं automatically आगे कैसे आ जाता।
15: Everyday burn hazards are hotter than they look. Act fast. Cool burns under running water for 20 minutes. And for serious or large burns, always call 111. Brought to you by the Burn Support Group and the MediaWorks Foundation.
16: And now the latest in sport. Teams are gearing up this week for $10 deals on Uber Eats. Holy... And now time for a break, I think. Find Ding Dong Deals on Uber Eats.
17: Contact supportive promo not applied. T's and C's and fees apply.
18: My Time with Kashika. Brought to you by Kashish Foods. Eat better, live better.
19: Mid-morning Maza.
20: Six-word story.
0: Six-word story ki taraf main pahunch gayi hoon. And unhone kaha, never met you, but love you. Oh, wow. Thank you. Never met you, but love you. Thank you so much. भाई कौन है आप? आपके last digits मुझे दिख नहीं रहे हैं. एक second ठहरिए, मैं ढूंढती हूँ. 2173 कौन हो? बताओ भाई. 2173. Never met you, love you. Okay, I love you too. पता नहीं कौन हो. थोड़ा tension में आ गई मैं. Okay, कोई बात नहीं. मैं tension में नहीं आती हूँ क्योंकि मैं हंस पड़ी हूँ. हंस इसलिए पड़ी हूँ क्योंकि कल के दिन कृष्णा अभिषेक एंड राजीव ठाकुर हमारी सुपर सिटी में परफॉर्म करने वाले हैं. ये लैंड हो चुके हैं एंड द ग्रेट कॉमेडी नाइट में आपका साथ देने वाले हैं एट विक्ट्री कन्वेंशन सेंटर कल 18 जुलाई को. भाई आई थिंक 100-150 टिकट ही अब बची हैं लगता है. बुक माई इवेंट .co.nz के जरिए आप जाइए, फटाफट टिकट बुक कीजिए. ट्राई विजन एंटरटेनमेंट आपके लिए ये खूबसूरत मौका ला रहा है. और अगर आपको टिकट्स खरीदने में कुछ हेल्प चाहिए तो धर्मेंद्र शाम से बातें करें ऑन 0210432720 के जरिए. और कल डेफिनेटली आपसे यहाँ पर मुलाकात तो होगी. हंसने के इस माहौल में बहुत इस समय टेंशन का काम है ना भाई, चाहिए चाहिए हंसना हंसाना चाहिए.
20: Top hit of the hour, brought to you by Indelible Homes. Build your dreams.
0: I somehow liked the movie Cocktail 2 and my performances bhi bahut achhi rahi. I think I loved Kriti Sanon and Shahid Kapoor. They were amazing. And Rashmika Mandanna, of course, definitely very seasoned actress.

0: बड़ा माहौल बना दे।
1: तो करण औजला के लिए मेरे पास केवल शीतल पाठक, अजय, नीलेश, अंतराप्रीत, कृणाल, आपके टेक्स्ट आ गए। आपका नाम मैंने ड्रॉ में ऐड कर लिया है। एंड द नेक्स्ट सॉन्ग इज डेडिकेटेड टू यू।

0: और साथ साथ प्रैक्टिकल लर्निंग ऑफ CPR, मेंटल हेल्थ वेलबींग, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन जो है आपके साथ शेयर की जाने वाली है. तो ये हेल्थ एक्सपो में आप डेफिनेटली साथ ज़रूर दीजिएगा. और इसके साथ 1 और 2 अगस्त के दिन श्री राम मंदिर हेंडरसन में अखंड रामायण पाठ भी होने वाला है. और इसके अलावा न्यूजीलैंड आर्ट एंड कल्चरल चैरिटेबल ट्रस्ट आपके लिए श्री राम लीला लेकर आने वाले हैं 8 अगस्त के दिन. सेव द डेट ऑलरेडी क्योंकि दिस इज़ गोइंग टू बी रियली रियली एक्साइटिंग.
1: Ladies and gentlemen,
2: unfiltered with Sandy and Rusby. क्योंकि दुनिया में already बहुत सारे perfect, polished, Instagram friendly stories हैं और उनका हमसे कोई लेना देना नहीं. यहाँ कहानियाँ होती हैं raw, emotions होते हैं real और conversations होते हैं बिना mask के.
3: राजा, मंत्री, चोर, सिपाही सब यहाँ आते हैं.
2: Unfiltered with Sandy and Rusby on Rowa, Spotify or anywhere you get your podcast.
4: अरे बबीता, thank you so much for giving me गुरुज नंबर यार.
5: क्यों, क्या हुआ?
4: मुझे अर्जेंट काम से फीजी जाना था, $20,000 चाहिए थे. बैंक गई तो इतने डॉक्यूमेंट्स मांगे कि बस पूछो ही मत. एक हफ्ता हो गया, नो रेस्पॉन्स. फिर तुमने गुरु का नंबर दिया और बस अगले दिन पैसे मेरे अकाउंट में. गुरु तो हो जा शुरू वाला काम है.
6: गुरु कैंडोला ऑफ लॉजिक फाइनेंस, अ हाउसहोल्ड नेम इन फाइनेंस एंड इंश्योरेंस इंडस्ट्री. कॉल 0800 LOGIC G, दैट्स 0800 564 424.
7: विद सिटी ऑटो ग्रुप में आपको मिलेगा द स्टनिंग ओमुडा Z5, ऑल इलेक्ट्रिक ओमुडा E5 और एडवेंचरस जेकू J7 सुपर हाइब्रिड, अ लाइनअप बिल्ट फॉर द फ्यूचर. जिमी टेलर और टीम से मिलो विद सिटी ऑटो ग्रुप में एंड एक्सपीरियंस कटिंग एज डिजाइन, एडवांस टेक एंड नेक्स्ट लेवल परफॉर्मेंस. गेट $2,000 ऑफ प्लस फ्री ऑन रोड कॉस्ट अक्रॉस द ओमुडा जेकू रेंज. चेक विद सिटी ऑटो ग्रुप .nz या आज ही विजिट करो वेस्ट गेट या हेंडरसन शोरूम. विद सिटी ओमुडा जेकू, रीडिफाइनिंग द वे यू ड्राइव.
8: Trades and business owners can now build big rewards with new PowerPass Pro Rewards by Bunnings. Earn Pro Reward dollars on eligible items to redeem off future purchases. The more you spend on qualifying items, the closer you get to that next level of rewards. Unlock tiered benefits to access fuel discounts with mobile card. Plus, get exclusive member gifts, offers and loads more. Minimum spend limits and exclusions apply. See website for eligibility and all T's and C's. Sign up to PowerPass Pro Rewards today.
9: G'day Kiwis, Kogan Mobile here. I'll be honest, we're Australian.
10: Sorry about that.
9: But it's about time you got a taste of Aussie-style pricing. Right now, get a yearly prepay plan from just $160. Crikey! I know what you're thinking. And no, I'm not joking. And no, it's not too good to be true, because it is true.
10: Kogan Mobile, true Aussie value.
9: Terms and conditions apply.
11: TradeDepot.co.nz. Shop now at Trade Depot, New Zealand's number one bathroom, kitchen and appliance online store. Vogue 442-litre side-by-side fridge freezers, $699. Midea heat pump dryers, $499. Comfy 12-place dishwashers, $299. Shop online or in store at Trade Depot, Nielsen Street, Onehunga. With minimum spends, you can get free home delivery anywhere in Auckland. T's and C's apply.
2: TradeDepot.co.nz.
12: Fresh or quality halal meat, unbeatable prices per Ali's Farm, Auckland. Aapka trusted licensed abattoir or butcher. Limited time offer. Whole goat carcass, sirf $15 per kilo. Spring lamb carcass, $17.50 per kilo. Or 30 kilo se zyada sheep carcass, sirf $12.50 per kilo. Halal certified, processed under MPI requirements or whole carcasses mein available hai. Curry pieces cutting bhi available hai. T's and C's apply. Ali's Farm, 1319 Alfriston Road, Alfriston. Call 027-530-1175.
2: My Time with Kashika, brought to you by Kashish Foods. Eat better, live better.

रेस्क्यू मी रिसाइकल मी में वैसे अभी मैं आजकल आई थिंक हर्ब्स के बारे में बहुत ज़्यादा बात कर रही हूँ, अब ये हर्ब आइस क्यूब्स के बारे में बात करना चाहती हूँ। कुछ चॉप किए हुए हर्ब्स आपके होते हैं जैसे कि हरा धनिया है, बेजल है, पुदीना है, पार्सले है, इस तरह की चीज़ें जो होती हैं आप इनको चॉप कर लीजिए, ठीक है, और उनको फ्रीज कर दीजिए इन ऑलिव ऑयल आइस क्यूब्स की, जब ये आइस क्यूब्स की तरह फॉर्म हो जाती हैं, और फिर इनको किसी भी फ्यूचर डिशेस में आप उस क्यूब को अगर आप ऐड कर देंगे तो समझ लीजिए आपके लिए बहुत बहुत ईजी हो जाएगा सब कुछ। अगर ऑलिव ऑयल के अंदर इन्हें डिप करके आप रख दीजिए, यू विल

गेट दैट फ्लेवर. कभी कभी पास्ता बनाते हैं, कभी कभी कोई सब्जी बनाते हैं, कभी कहीं पे भी. ये हर्ब आइस क्यूब्स आपके लिए काफी हेल्पफुल रह सकती हैं. दिल से

थ्रोबैक तक तो मैं पहुंच चुकी हूं, लेकिन मैं पहुंच रही हूं नॉर्थ शो में, वायरो वैली में, यानी कि कशिश फूड्स के 600 जने से, जहां पे मैं कशिका आपका साथ निभाती 10 से 12 बजे तक। अब इनके साथ मिलके फूड टेस्टिंग करने वाली हूं और आपको भी इनवाइट करना चाहती हूं इस फूड टेस्टिंग में। आप पहुंच सकते हैं एट कशिश फूड्स फूड टेस्टिंग, नमस्ते इंडियन सुपर मार्केट, 110 वायरो रोड, वायरो वैली में, कल सुबह 10 से 12 बजे के दरमियान। माई टाइम का जोन जो होता है, उसी टाइम आपसे फिर मेरी मुलाकात होगी। तो जरूर नॉर्थ शोर वालों, जल्दी जल्दी पहुंच जाना। तो कीजिए स्वीकार कशिका का नमस्कार। आज का दिन कहलाता है शुक्रवार। मेरी मुलाकात माय टाइम सुनने वालों आपके साथ होने वाली है मंडे की सुबह 10 बजे। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में सभी को याद रखिएगा। एंड ऑफकोर्स कल कॉमेडी नाइट्स में भी तो कृष्णा अभिषेक में मिलेंगे ना। अच्छा आना, आके एक जादू की झप्पी जरूर देंगे। ठीक है, टेक केयर, बाय।

0: Vino a ascungeri.
1: Lunchbox with Kaitan.
2: Kia ora, namaste, sasrikaal, assalamu alaikum, bulab ka swagat karte hain aaj ke is khoobsurat din ke khoobsurat show jiska naam hai Lunchbox Show. Well, yes, bane rahiye, aaj bahut sari baatein karni hai. Friday it is. Well, bahut hi khoobsurat din hai. Friday before weekend, alag hi pehchan leke aata hai. I don't know how much have you planned for this weekend, but maine bahut acche se plan kar rakha hai. I know ye weekend bhi mera busy jane wala hai. I have a show tomorrow. इन पानेल वहाँ पे भी परफॉर्मेंस है, उसके बाद कुछ रिकॉर्डिंग्स करनी है जो हम ओरिजिनल गानों पे काम कर रहे हैं, तो वो होपफुली आज अगर आज या कल में ख़त्म हो जाता है या मैक्स टू मैक्स संडे, तो गोना बी अ न्यू सिंगल फ्रॉम मी एंड माय वेरी फर्स्ट सिंगल फ्रॉम द बैंड. बट यस, मेरा नाम केतन है और आप बने रहिए बिकॉज बहुत सारी बातें आज करेंगे. वर्ल्ड कप के बारे में भी बात करेंगे. फीफा वर्ल्ड कप ऑलमोस्ट बस खत्म ही होने वाला, यानी कि हम जब मंडे को मिलेंगे